मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 8वीं तिथि तदानुसार 25 मई सन 2026 इस समय स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:58 और 42 सेकंड हुए हैं। अब आज के प्रसारण आरंभ होते हैं।

0: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। समाचारों के तुरंत बाद एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर विविध भारती के कार्यक्रमों का रिले होगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण है।

0: को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमरीका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम में गृहमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से किसी भी जनजातीय अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजातीय कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
2: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फलता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देबांशु पांडा को बधाई दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह फैसला किया गया है। आज उत्तर पुस्तिका की आखिरी स्कैन प्रति उपलब्ध करा दिए जाने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित हो जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। आईपीएल क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है आज का चिंतन। हमें हमेशा जीवन में कुछ नया सीखते रहना चाहिए और सभी कार्य धैर्य और शांतिपूर्वक करने चाहिए। ये था आज का चिंतन। अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम, पूर्ण समर्पण और निष्काम कर्म ही हमें करते रहना चाहिए। यह मन, वचन और कर्म से प्रभु के स्मरण का मार्ग है, जो सांसारिक मोह माया से मुक्त कर परम आनंद, शांति और माधव की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल और दिव्य माध्यम है।

अपनी सभी चिंताओं, अहंकार और इच्छाओं को ईश्वर के चरणों में अर्पित करना ही सच्ची शरणागति है।

माँ दुर्गा की भक्ति जीवन में असीम शक्ति, साहस और आंतरिक शांति लाती है। उनकी पूजा मात्र एक कर्मकांड नहीं, बल्कि बुराई पर अच्छाई की विजय और अपने भीतर छिपी दिव्यता को पहचानने का एक आध्यात्मिक विचार है। भले ही माँ का रूप महिषासुर मर्दिनी का है, पर वे जगत जननी हैं। उनकी शरण में आने वाले हर भक्त को माता की कृपा, वात्सल्य, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है।

अभी आप सुन रही थी कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान, स्वर है महेंद्र कपूर का।

श्री राम लक्ष्मण तथा सीता के गंगा तट पर स्थित श्रृंगवेरपुर के निकट पहुंचने का समाचार सुनकर निषाद राज गुह के हर्ष की सीमा न रही। अपने प्रियजनों तथा भाई बंधुओं को एकत्रित कर भेंट देने के लिए फल मूल आदि बहंगियों में भर भर कर वो सदल बल श्री राम से मिलने चला। राम ने उसे आत्मीय के भांति पास बिठाकर उसकी कुशलक्षेम पूछी। निषाद राज गदगद होकर बोला, नाथ आपके चरण कमलों के दर्शन से ही कुशल है। आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। यहां की धरती धन संपत्ति और घर अभी आपके हैं। मैं तो परिवार के साथ आपका सेवक मात्र हूं। अब कृपा कर हमारे पूर्वे में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए। श्री राम ने उत्तर दिया, हे सुजान सखा, तुमने जो कहा वो तुम्हारे स्नेह का द्योतक है, किंतु पिता ने मुझे कुछ और ही आज्ञा दी है। मुझे 14 वर्षों तक मुनिवेश और व्रत धारण करके उन्हीं सरीखा भोजन करते हुए वन में ही निवास करना है। एक तापस का गांव में रहना उचित नहीं है। श्री राम लक्ष्मण तथा सीता का तापस वेश देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम विह्वल हो रहे हैं। वो उन माता पिता की कठोरता से क्षुब्ध हैं जिन्होंने ऐसे सुकुमारों को वनवास दिया है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान स्वर्था महेंद्र कपूर का। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि की बातें।
1: किसान बहनो भाइयों, राम राम। कृषि की बातों में जिक्र करेंगे मधुमक्खी कॉलोनी की देखभाल। किसान भाइयों, हम खेती से जुड़े हुए हैं, सदियों से जुड़े हुए हैं, और खेती का तो जिस तरह आप देखो कि भाई इसका क्षेत्र बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन जो जितना है उसमें ही हमने सुधार करके ना हम उसमें अपनी आमदनी बढ़ा सका। साथ ही साथ में अपने वैज्ञानिकों ने ये कर लिया कि भाई जो खेती के साथ व्यवसाय हैं उनको अपना लिया जाए, किसान भाई की आमदनी बढ़ जाए। उसमें यह देखा गया है कि भाई जो खेती से संबंधित हैं काम वो जोड़ लिया जाए तो और भी बढ़िया हो जाए। तो इसमें जैसे मधुमक्खी पालन है, मुर्गी पालन है, शुक्र पालन है, डेयरी फार्मिंग है, मछली पालन है, यानी बहुत घने व्यवसाय हैं जिनने किसान भाई अपना कर अपनी अच्छी आमदनी ले सके हैं और ले भी रहे हैं भाई। और इसके लिए तो भाई सबसे बढ़िया तो ये रहे कि हमें प्रशिक्षण ले लें इस बार, और सरकार इसमें सहायता भी करती है और उसके लिए खूब फायदा उठा रहे हैं भाई, आमदनी खूब बढ़ रही है। तो इस ओर हमने पूरा ध्यान रखना चाहिए, यानी जो खेती से संबंधित हमें काम करा है उसकी ट्रेनिंग ले लें और फिर उसको मन लगा कर

0: काम करेंगे तो हमारे आमदनी वगैरह अच्छा गुजारा हो जाएगा। बात हमें मधुमक्खी क्यों की करा, ये हमने इसमें शहद में अच्छी आमदनी हो जाए, ये कॉलोनी ले रहे हैं भाई अपनी और बना रहे हैं और उसमें अच्छी आमदनी लेने लग रहे हैं, तो इसके लिए भैया ने प्रशिक्षण भी लिया है और सरकार द्वारा यूनिवर्सिटी द्वारा बार बार आयोजन कराया भी जाए। तो इसमें भैया हमने क्योंकि ये जो छोटे पक्षी हैं इनकी हमने देखभाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनने जब मान लिया फूल वगैरह मिल जाए तो रह ठीक है, और गर्मी के दिनों में तो हमने बहुत ज़्यादा इनकी देखभाल करनी पड़े, खासकर क्योंकि एक तो पानी भी बहुत दूर से जाके लेना पड़े हैं और जो ये फूल हैं कंद हैं वो इस टाइम पर बहुत ही कम हो जाए, बहुत कम हो जाए हैं, तो इनने अपना शहद बनाने के लिए फूल चाहिए, तो इसके लिए हमने खासकर गर्मियों में अपना विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी कॉलोनियों की ये देखना कि भाई उनको छाया में रखना पड़ेगा, और साथ में हमने इसमें जो मीठे की चाशनी भी बनानी पड़ेगी, पानी का भी इंतजाम नजदीक से नजदीक करना पड़ा ताकि हमारी जो मधुमक्खियां हैं वो ज्यादा दूर ना जाना पड़े पानी के लिए, उन्हें यहीं नजदीक उनका काम चल जाए, साथ में उसमें मीठे की जो चीनी की चाशनी बनाकर वो भी ध्यान रखना पड़े कि वह ज्यादा से ज्यादा ऐसे करें बनाकर रख दें ताकि अपने इन जो मधुमक्खियां ने ज्यादा दूर ना जाना पड़े, और इन दिनों में क्योंकि फूल तो मिलते नहीं है, बहुत कम हो जाए फूल, तो उसके लिए ये अपना जो भोजन है यहीं से तैयार कर। साथ ही हमने ये देखना है कि वह जो ज्यादा धूप पड़ने लग रही है अपने जितना, जैसे मान लिया किसी बाग में रख दी जाए या किसी वृक्षों के नीचे रख दिया जाए अपनी कॉलोनी, तो वो रहे उसमें ठीक भाई, अगर जब मान लिया खुले में धूप में रख दिया तो धूप में इनमें मुश्किल हो जाएगी, बेचैन हो जाएंगे और अपना जो काम है ये मधुमक्खियां वो नहीं कर पाऊंगी, तो बेहतर ये रहे कि हमने इनकी देखभाल सुनियोजित तरीके से करनी पड़ चाहिए ताकि हमारे जो इन दिनों में क्योंकि फूलों की कमी हो जाए भाई जो शहद की आमदनी है वो भी लगातार होती रहे, बराबर होती रहे, और ज्यादा से ज्यादा तो नहीं चलो कम तो हो जाएगी इसमें लेकिन होती रहे हमेशा, उस और हमने जरूर ध्यान देना पड़ेगा भाई, और वो तभी दिया जा सकता है जब हमें उनकी देखभाल सही तरीके से कर लेंगे, जैसे उनके लिए चाशनी बना के रख देना, पानी नजदीक रख देना, धूप में है उसमें उसको बचाना उसको, और बढ़िया तो ये रखो वृक्ष के नीचे या बाग में रख ले तो बहुत बढ़िया रहे, क्योंकि न तो ये अपना उसमें तंग होंगी, तंग ना होंगी तो अपना काम ये ठीक तरीके से कर दी जाएंगे, और उसमें जय मान लिया ये तंग नहीं हुई और ठीक तरीके से ये अपना काम करती रही तो पक्की बात है भाइयों कि ये शहद भी है हमें सही मात्रा में देंगे, बढ़िया मात्रा में देंगे, तो इसलिए हमने इनके लिए पूरा ये ध्यान रखना है कि भाई एक तो जो इनके खाने पीने का सामान है यानी चाशनी है मीठे की वो बना के रख देनी है, पानी नज़दीक से नज़दीक रखना है और जहाँ तक हो उसके से धूप से बचाना, इनको छाया वगैरह में रखना, तो भाई इन मोटी मोटी बातों हम ध्यान रखेंगे तो मधुमक्खी कॉलोनियों की देखभाल करके ने अच्छी पैदावार ले लेंगे।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम कृषि की बातें। इस कार्यक्रम में आपको मधुमक्खी कॉलोनियों की देखभाल विषय पर जानकारी दी गई। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत समाचार, इसके बाद 7 आप सुन सकते हैं हिंदी समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजाति समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने का विशेष प्रबंध किया है। इसका उद्देश्य

0: जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1 लाख से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा को बधाई दी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। NTA ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाएगा।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने खुद को प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताया और कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर 100% भरोसा कर सकता है। IPL क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। President Draupadi Murmu will present 66 Padma Awards at the first civil investiture ceremony for 2026 to be held at Rashtrapati Bhavan today. During the ceremony to be attended by Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah, among others, the President will confer 2 Padma Bhushan, 6 Padma Bhushan and 58 Padma Shri Awards. For the year 2026, the President has approved conferment of 131 Padma Awards, including 5 Padma Bhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. The remaining Padma awardees will be conferred in the second round of the ceremony to be held later. Union Home Minister Amit Shah has said that the government has made special provisions to exclude all tribal communities from the ambit of the Uniform Civil Code, UCC, ensuring that their rights are fully protected. Addressing the Janjatiya Sanskritik Samagam in New Delhi, Mr. Shah said the UCC will not infringe upon any tribal rights. External Affairs Mr. Dr. S. Jayashankar has said that India and the United States have a strong interest in combating terrorism in all its forms and manifestations. Addressing the gathering at the 250th Independence Day celebrations of the United States in New Delhi yesterday, Dr. Jayashankar said that India and US must always be clear about zero tolerance for terrorism, and that is why the counter-terrorism cooperation is

शाम 5 बजे सुनेंगे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में पद्म पुरस्कार वितरण व संबोधन का सीधा प्रसारण। पब्लिक स्पीक को सुन सकते हैं रात्रि 9:30 बजे। दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

प्रातः 7:35 पर समसामयिक चर्चा के साथ फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम रहेगा सुबह सवेरे। एनसीईआरटी द्वारा तैयार प्रायोजित कार्यक्रम को सुना जा सकता है दिन में 12:30 बजे।

दिन में 2:30 बजे खेत खलिहान कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा ग्रीष्मकालीन मूंग की काश्त। शाम 6:20 पर कृषि जगत कार्यक्रम में डॉक्टर राजू शर्मा से बातचीत होगी, जिसका विषय होगा गर्मी के मौसम में मुर्गी घरों की देखभाल।

ग्रामीण संसार कार्यक्रम में शाम 7 बजे चौपाल फोन इन कार्यक्रम को सुना जा सकता है। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में प्रातः 7:15 पर आप सुनेंगे आरएस बीट्स का गाया राग अहिर भैरव, और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत रात्रि 10 बजे आप सुन सकते हैं एसजी रॉय चौधरी का सरोद पर बजाया राग यमन।

पत्रों पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश। समय रहेगा प्रातः 9 बजे। दिन में 1:10 पर श्रोतागण सुनेंगे कार्यक्रम चित्रपट संगीत। देर शाम 7:30 बजे कार्यक्रम रहेगा फिल्म संगीत।

रात्रि 9:15 पर श्रोतागण सुनेंगे कार्यक्रम एक फिल्म से मन चाहे गीत कार्यक्रम सुना जा सकता है रात 10:00।

रात्रि 8:25 पर श्रोतागण सुन सकते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत को। प्रातः 8:30 लोक संगीत कार्यक्रम में हमारे कलाकार रहेंगे बालवीर सिंह नागर। श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे RS बीट्स का गाया राग अहिर भैरव।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपने सुना आरएस बीट्स का गाया राग अहिर भैरव। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सवेरे।

सुबह सवेरे कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत है। आप सभी को मंजू शर्मा का स्नेह भरा नमस्कार।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: श्रोताओ, विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में आज पूरे देश में, पूरे विश्व में 25 मई के दिन यह विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। दुनिया भर के फुटबॉल प्रशंसकों के पास अब हर साल दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल का जश्न बनाने के लिए एक दिन निश्चित हुआ है, जो है 25 मई। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रस्ताव के अनुसार यह दिन सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व वाले इतिहास के पहले अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट की 100वीं वर्षगांठ का प्रतीक है, जो 25 मई 1924 को पेरिस में ओलंपिक खेलों के दौरान आयोजित हुआ था। संयुक्त राष्ट्र की 193वीं सदस्यीय महासभा ने राजनयिकों की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस के मौजूदगी में आम सहमति से प्रस्ताव को अपनाया। इसे 160 से अधिक देशों द्वारा सह प्रायोजित किया गया था। यह दिन इतिहास में फुटबॉल से जुड़ी एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना की भी याद दिलाता है। 25 मई 1924 को पेरिस में हुए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के दौरान पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। इस टूर्नामेंट में दुनिया के सभी क्षेत्रों ने पहली बार एक साथ प्रतिनिधित्व किया, जिसे दुनिया का पहला वैश्विक फुटबॉल आयोजन माना जाता है। फुटबॉल को दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल माना जाता है, जो सीमाओं, संस्कृतियों और भाषाओं से परे लोगों को एकजुट करता है। यह दिन इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे फुटबॉल का उपयोग शांति, कूटनीति, युवा सशक्तिकरण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। इस अवसर पर फीफा व अन्य फुटबॉल संघ अक्सर विश्व फुटबॉल सप्ताह जैसे कार्यक्रमों का आयोजन भी करते हैं। फुटबॉल एक ऐसा खेल है दुनिया भर के अरबों लोगों को एक साथ लाता है और इसके वैश्विक प्रभाव को समझने में भी मदद करता है। कहने का तात्पर्य है, एक खेल है जो खेल की भावना से खेला जाता है और विश्व को साथ लाने का प्रयास अक्सर इस खेल के माध्यम से किया जाता है। बहुत सारे अवसर हैं, बहुत सारे संघ हैं जो फुटबॉल मैच के कॉम्पिटिशन रखते हैं।

श्रोता, वाणी हमारे व्यक्तित्व का आईना है। बोलचाल हमारी बुद्धि, विवेक और मन की दशा को दर्शाती है। शब्द बुद्धि, विवेक, मन और आत्मिक संग्रहित पूंजी से निकलते हैं। मन बुद्धि विवेक की आंतरिक अवस्था जैसी होती है, हम वैसे ही शब्दों को बोलते हैं। आप देखते होंगे कि मन में काफ़ी गुस्सा भरा हुआ है तो गुस्से वाले शब्द ही हमारे मुंह से निकलेंगे, और जब मन शांत है, प्रेम से भरा हुआ है, तो शब्दों का चयन भी हम चुन कर करेंगे, अर्थात प्रेम से पूर्ण शब्दों का ही हमारे मुंह से निकलना लाजमी होगा। दोष शब्दों में नहीं, हमारी सोच में होता है। यह ध्यान देना बेहद जरूरी है कि बिखरे हुए मन से बिखरे हुए शब्द ही निकलते हैं, और सधे हुए मन से सधे, सटीक और सार्थक शब्द ही उच्चारण होते हैं। सारा खेल शब्दों यानी वाणी का ही है। शब्दों से ही हम किसी को अपना बना लेते हैं, और कई बार शब्द इतने बेहद गुस्से से भरे हुए या कड़वे होते हैं कि अपनों को भी दुश्मन बना देते हैं। शेर की दहाड़ का मतलब होता है आपके व्यक्तित्व की गर्माहट आपके शब्दों के जरिए बाहर निकलती है। ऐसा नहीं है कि मधुर वाणी से पूर्वाग्रह और चातुर्य नहीं होता। कई बार कुछ लोग मधुर वाणी से भी दूसरों के जीवन में जहर घोल सकते हैं। कभी कभी परिमार्जित कठोर वाणी भी समय और परिस्थिति की मांग होती है। छल, प्रपंच और घात से सिक्त होकर दूसरे से हित साधने के लिए भी मीठे बोलों का प्रायोजित प्रयोग भी होता है। कहने का अर्थ है कि कई बार कड़वा बोल भी बहुत जरूरी होता है दूसरे व्यक्ति को सही मार्ग पर लाने के लिए, और कई बार कुछ लोग अपना काम निकालने के लिए मीठे शब्दों का चयन करते हैं, मीठी वाणी बोलते हैं, जबकि वास्तव में उनके मन में कुछ छल कपट भरा हुआ होता है। तो हमें अपने शब्दों का चयन काफ़ी सोच समझ कर करना चाहिए। शब्दों का चयन बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार यही शब्द किसी अपने को भी चोटिल कर सकते हैं। कहते हैं कि धनुष से निकला हुआ तीर, और कई बार मुंह से निकले हुए कड़वे बोल कभी वापस नहीं आते, और हम कितने भी माफ़ी मांग ले अपने कहे हुए कड़वे शब्दों की, परंतु दूसरों के मन को इतना वह घायल कर देते हैं या इतना उनको दुख पहुंचाते हैं कि उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। तो हमें हमेशा ही मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, मधुर शब्दों को बोलना चाहिए, और वह मधुर शब्द ही हमारे व्यवहार को दर्शाते हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 8 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार और 8:15 पर अंग्रेजी समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CET स्नातक परीक्षा 2026 से स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमरीका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से लड़ने के लिए तत्पर। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत उन पर विश्वास कर सकता है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के

0: ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जन सेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आकाशवाणी से पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। कार्यक्रम सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही।
2: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
1: गृह मंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने संदेश दिया था कि वन भूमि पर जनजाति समुदाय का स्वामित्व तो होना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण के लिए बजट बढ़ाने का काम किया है।
3: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर देवांशु पांडा को बधाई दी है। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में ये पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। NTA ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमरीका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद

0: कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा।
1: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त न करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमरीका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को ईरान के साथ किसी समझौते में जल्दबाजी नहीं करने को कहा है। 3 महीने से जारी संघर्ष में अमेरिकी प्रशासन ने फिलहाल किसी बड़े समझौते की संभावना से इनकार किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन के अंतर्गत ईरान के साथ किसी भी संभावित समझौते में कोई वित्तीय छूट नहीं दी जाएगी।
1: मीडिया के अनुसार विचाराधीन समझौते में 60 दिन के लिए युद्ध विराम बढ़ाना, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे की बातचीत शामिल है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में भी मतभेद हैं। कुछ का कहना है कि प्रस्ताव ईरान के प्रति बहुत नरम रुख अपनाता है। सीनेटर ट्रेड क्रूज ने इसे एक बड़ी गलती बताया है, जबकि सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष रोजर विकर ने कहा कि 60 दिन का युद्ध विराम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की उपलब्धियों को निरर्थक कर देगा। विदेश मामलों की समिति के प्रतिनिधि माइक लॉलर ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन ईरान को बातचीत करने के लिए विवश करने में सफल रहा है। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर व्यापक हमले शुरू किए थे। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरे विश्व से मुस्लिम समुदाय के 10,60,000 से अधिक लोग मक्का से हज यात्रा शुरू करेंगे और सऊदी अरब के मीना में एकत्र होंगे। इस वर्ष हज में भारत से लगभग 1,75,000 जायरीन भाग ले रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भी भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगी क्षेत्र में गर्मी और उमस रहेगी। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज के साथ आंधी और वर्षा का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता में कल दिल्ली कैपिटल्स के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 163 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। पहले क्वालिफायर मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, हॉर्मुज सबके लिए खुला रहे। विदेश मंत्री जयशंकर और मार्को रूबियो ने बैठक के बाद जताई सहमति। पत्र के अनुसार ईरान बोला, नियंत्रण हमारा ही रहेगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार कड़े वीजा नियम पर यूएस ने कहा, भारत टारगेट नहीं। जनसत्ता लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौता को जल्द अंतिम रूप मिलेगा। पंजाब केसरी ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से दिया है 60 दिन के सीज फायर पर लगभग सहमति हॉर्मुज जल डमरू मध्य खोला जाएगा ईरान यूरेनियम प्रोग्राम छोड़ने को तैयार फिजिशियन बोले हम परमाणु हथियार नहीं चाहते नवभारत टाइम्स ने सबसे बड़ी राहत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है अमरीका और ईरान के बीच हॉर्मुज खोलने के लिए सैद्धांतिक सहमति बनना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत है हालांकि ईरान के पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम समेत कुछ संवेदनशील मुद्दों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है फिर भी संकेत बताते हैं कि दोनों पक्ष इस बार मामले को सुलझाने के लिए गंभीर हैं लोकसत्ता ने ऐतिहासिक जीत शीर्षक से लिखा है पश्चिम बंगाल में ममता का आखिरी किला ढहा फालता में भाजपा की 100,000 वोटों से विजय दैनिक जागरण ने घुसपैठियों की वापसी शीर्षक से लिखा है ये अच्छा है कि पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार पहले दिन से ही राज्य के हालात सुधारने वाले ठोस फैसले लगातार ले रही है ऐसे समय की मांग भी है क्योंकि ममता बनर्जी ने 15 साल के शासन में राज्य को पटरी से उतारने का काम किया था देशबंधु की सुर्खी है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन विस्फोट 30 की मौत 100 से अधिक घायल प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन बीएलए ने ली हमले की जिम्मेदारी राजस्थान पत्रिका ने विडंबना शीर्षक से लिखा है फीस से ज्यादा स्कूल आने जाने और किताब यूनिफॉर्म का खर्च कई राज्यों में स्कूल ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा बोझ आंकड़े बता रहे हैं कहां है सुधार की जरूरत दैनिक भास्कर ने सीबीएसई द्वारा री एवल्यूशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 मई करने की खबर मुख्य पृष्ठ पर दी है पत्र के अनुसार स्कैन कॉपी आने के बाद 2 दिन और मिलेंगे अमर उजाला की सुर्खी है नॉर्थपा आज से शुरू कई राज्यों में पारा 46 डिग्री के पार शुक्रवार तक राहत नहीं उत्तर प्रदेश में लू और आंधी की दोहरी मार 46.8 डिग्री के साथ बांदा सबसे गर्म
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी गृह मंत्री अमित शाह ने कहा सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CUET स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से मुकाबले के लिए तत्पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक हैं और भारत उन पर पूरी तरह विश्वास कर सकता है और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ नमस्कार
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. President Draupadi Murmu to present Padma Awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. Union Home Minister Amit Shah says government has excluded all tribal communities from ambit of Uniform Civil Code. Petrol price hike by 2.61 rupees per litre while that of diesel by 2.71 rupees per litre. National Testing Agency postpones CUET UG 2026 examinations scheduled for the 28th of this month. External Affairs Minister S. Jaishankar says India and US have strong interest in combating terrorism in all its forms and manifestations. US President Donald Trump says India can trust on him, also says he's a big fan of Prime Minister Modi. And in IPL cricket, Delhi Capitals beat Kolkata Knight Riders by 40 runs at Eden Gardens in Kolkata. President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at the first civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories, Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. In the first civil investiture ceremony of 2026 today, the President will confer 66 Padma Awards, including 2 Padma Vibhushan, 6 Padma Bhushan and 58 Padma Shri. The remaining Padma Awards will be given in the second round of the civil investiture ceremony to be held later. We have a report.
4: This year, the government has announced a total of 131 Padma Awards. These include 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. Among the awardees, 19 are women, while 16 individuals will be awarded posthumously. The Padma Awards, namely Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri, are amongst the highest civilian awards of the country. Instituted in the year 1954, these awards are announced on the occasion of Republic Day every year. The award seeks to recognize work of distinction and is given for distinguished and exceptional achievements in

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: श्रोतो, आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत। कलाकार हैं बालवीर सिंह नागर।

भाजा व्यपता ओटे में सुने चांदी के लोटे में बरफोर कोका कोला

भर की दे दूं तेरे हाथ में ताली, रे ना से मेरी आत्मा काली, ना से मेरी आत्मा काली। ला

मरद दिन लिकड़े पहलम करत बाहर लिकड़ गे गोरे गोरे गात बदन की शोभा खून सूख के झड़ेंगे। एक दो दिन तस एर बाण सी पड़ गे धर्म जान के तज

भटके फिर बुला ले, फिर जा मेरे श्री कृष्ण की भक्ता ने पास बुला ले।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। हमारे कलाकार थे बालवीर सिंह नागर। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत है। आप सभी को मंजू शर्मा का स्नेह भरा नमस्कार। श्रोताओ, कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस गीत के साथ, जिसे लिया है फिल्म शागिर्द से। आवाज मोहम्मद रफी की है, गीतकार है मजरू और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फरमाइश इस गीत को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं ने भेजी है। भटिंडा रोड डबवाली से हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग। आप हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। ये पत्र आया है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही और मेहराज जहां। आप सभी ने सुनना चाहा है शागिर्द फिल्म से ये गीत। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की।

तू में हाथ डाल ए गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ए दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा, जा।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं गीत। आवाज है मोहम्मद रफी आश

भोसले की। फिल्म का नाम है एक मुसाफिर एक हसीना। राजा मेहंदी अली खान ने बोल लिखे हैं और धुन तैयार की है ओपी नैयर ने। फरमाइश आप सभी श्रोताओं की है। नया पारा भी रही से हैं बसंत कुमार सूर्यवंशी, सरोज सूर्यवंशी, ईशर राज सूर्यवंशी, चंद्रकांत सूर्यवंशी, प्राची सूर्यवंशी और टीयूषी सूर्यवंशी। आप है प्रमिलागंज अलोड जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पाया वर्मा, माफ़ कीजिएगा पायल वर्मा, प्रियांश और ऋषि वर्मा। नवागढ़ कटई से हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा। आप है छत्तीसगढ़ बेमेतरा से पूर्णिमा सारथी, पूजा आरती, भाव्या सारथी और सुषमा सारथी।

0: कार्यक्रम के अगले गीत के लिए फरमाइश आप सभी श्रोताओं ने पत्रों के माध्यम से भेजी है। भटिंडा रोड डब्वाली से हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग। आप हैं डीएलएफ कॉलोनी रोहतक से महेंद्र शाह, हरेंद्र शाह, जितेंद्र शाह, मानसी शाह। खुर्जा उत्तर प्रदेश से पत्र भेजा है तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा ने। अलीका डब्वाली से हैं बसंत सिंह चंद, राजकुमार, सुनीता, कुलदीप गांधी। आप सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है फिल्म कन्यादान से ये गीत। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है। हसरत जयपुरी ने बोल लिखे हैं और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।
1: उनकी जुल्फें उनके

श्रोताओ, अभी आपने सुना आशा भोसले महेंद्र कपूर के स्वर में हमसाया फिल्म से ये गीत। गीतकार थे हसरत जयपुरी, संगीतकार थे ओपी नैयर। कार्यक्रम का अगला गीत लिया है फिल्म आप आए दिन बहार के से। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है। आनंद बख्शी ने गीत को लिखा है और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और इन दोनों ही गीतों के लिए मिली जुली फरमाइश आप सभी श्रोताओं की है। बेड़ी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची करमरकर और तनु करमरकर। चकला बाजार सामाना से हैं पप्पू राजा खुशदिल, संगीता जिंदल, हसमुख जिंदल। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से पत्र भेजा है हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जेतेक बीरक और मीका बीरक ने। आप हैं मेहर नगर उमर खेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गंवानकर, सरिता गंवानकर, प्रिंस एकांश गंवानकर। बहादुरा नागपुर से पत्र आया है वैशाली शैलेश गंवानकर, श्वेता सुमित गंवानकर। और बदलापुर मुंबई से हैं सिद्धांत गंवानकर।

गवहानकर और प्रणीता गवहानकर। महादेव घाट अमलेश्वर से हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रेयांश ठाकुर।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोताओ, आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से आप सभी सुन रहे हैं फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं गीत। फिल्म का नाम है अनजाना। आवाज मोहम्मद रफी की है, गीतकार है आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फरमाइश आप सभी श्रोताओं की है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश। संबलपुर कांकेर से हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, ईशिका यादव, तेजल यादव। छत्तीसगढ़ भाटा पारा दतरेगी से पत्र भेजा है द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा ने। गांव कैरो जिला तरन तारण पंजाब से गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद,

0: अगले गीत के लिए फरमाइश आप सभी की है। लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से हैं विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, रेखा, गगन, सोनी, सीता और गीता। आप हैं गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष। पुणे से हैं पंकज वाड़ोदे, आर्या, प्रियंका, बीटी वाड़ोदे और चंद्र प्रभा वाड़ोदे। आप सभी ने सुनना चाहा है किशोर कुमार के स्वर में अनोखी अदा फिल्म से ये गीत। गीतकार हैं शकील बदायूनी, संगीतकार नौशाद।
1: दिलों का न पूछो सनम आपका।

0: आइए सुनते हैं ललकार फिल्म से ये गीत। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है। गीत लिखा है कुलवंत जैन ने और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। आप सभी श्रोताओं के द्वारा इस गीत को सुना जा रहा है। पटेल नगर मलोट पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया। सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से पत्र भेजा है प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्रकाश, प्राजक्ता प्रांजलि, सोहम बोरगांवकर ने। आप है जरूर वरुण महाराष्ट्र से बाबा साहेब वाडोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कार्तिक। पुणे से हैं पंकज वाडोदे और आर्या प्रियंका। मलोट पंजाब से राजकुमार इंदौरा, बिमला इंदौरा, गैरी इंदौरा, विकास इंदौरा, प्रियंका इंदौरा, रमन रितु, भविंश खन्ना, मिशेल खन्ना, किंशुक खन्ना और दीपांशी इंदौरा। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ललकार फिल्म से ये गीत।
1: ओए चन जी जरा मुड़ के तो दे।

जाते जाते ओ जरा जाते जाते जरा मुड़ के तो देख कुड़िए, जाते जाते ओ जरा जाते जाते।

मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर के स्वर में आई सुनते हैं जीने की राह फिल्म से ये गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत दिया है इस गीत को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फरमाइश आप सभी श्रोताओं की है गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित व मोहित। आप है राजनगर मधुबनी से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा गुप्ता, रंका रानी, मौसम गुप्ता, संगीता गुप्ता, रुद्र गुप्ता, रिद्धि गुप्ता। ऐशबाग पीली कॉलोनी लखनऊ से है मुकेश गुप्ता, रानी गुप्ता, कुसुम पलक, पंखुरी गुप्ता। यह पत्र आया है राजनगर गांधी चौक कांति निकेतन से। मंजीता गुप्ता, सोनाली गुप्ता, सूर्यांशी गुप्ता, कोमल गुप्ता, मेनका, माधवी, साध्वी, तन्मय, राज और गुनगुन का। आप हैं जिला आदर्श गांव जिला भिवानी से दर्शन लाल बंसल, सुदेश रानी बंसल, परवीन कुमार बंसल, ममता रानी बंसल, कमल कुमार बंसल, गर्वीश व तमन्ना बंसल। ये पत्र आया है धामनी मनोरा से पेंटर तुलसीराम डेरे, माया डेरे, संदेश पेंटर, सबीर भाई खान, अमोल डेरे, आदेश डेरे, किशन वायले, किरण डेरे, प्रंजल डेरे और दादुल्या डेरे का।

श्रोतो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में। आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी उषा टिमोथी की। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। फरमाइश आप सभी की है। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा। आदर्श नगर मलोट से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा, शाइना शर्मा, निवान शर्मा। मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिकलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंद संधु, महावीर संधु, गुरचरण गरोवर और रमेश मिकलानी।

0: इसी गीत के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 10 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार और 10:05 पर अंग्रेजी समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जन सेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही।
3: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यूसीसी की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। यूसीसी से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
1: पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की वृद्धि की गई। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा है कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। नवीनतम जानकारी के लिए विद्यार्थियों को एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट से संपर्क रखने को कहा गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये फैसला लिया गया है। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर

आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता में कल दिल्ली कैपिटल्स के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 18 ओवर और 4 गेंद में 163 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कामना की है कि प्रकृति की असीम कृपा, सूर्यदेव की ऊर्जा और वर्षा बूंदों के आशीर्वाद से हर एक का जीवन आनंद और सौभाग्य से भरपूर हो। संस्कृत की एक उक्ति साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि धरती सदा सर्वदा हरी भरी और समृद्ध बनी रहे। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी गर्मी और उमस रहेगी। वहीं मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज के साथ आंधी वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया गया है। वहीं केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 262.67 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज़ पर, डीटीएच और न्यूज़ ओन एआईआर पर। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। दिन के 12:30:25 हुए हैं। हमारे दूसरी सभा के कार्यक्रम अब शुरू होते हैं। आरंभ में सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार।
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल, गुरु शब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
3: जीवन में सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले मुश्किल से मिलते हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नज़रिए का इलाज आसान नहीं है।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले और श्रोताओं के नाम हैं।
3: खैरागढ़ राज लालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे जी ने लिखा है,
2: आपका उमंग कार्यक्रम मुझे बेहद उपयोगी, ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद लगता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से नई नई जानकारी मिलती है, जो काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है। साथ ही साथ गीत संगीत से कार्यक्रम की रोचकता बनी रहती है। आप सभी की अथक मेहनत, लगनशीलता और अनुपम प्रस्तुति को हम दिल से नमन करते हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण यूं ही बरकरार रहे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। गांव गणेश धाम परसूली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धर्मंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने लिखा है। सप्रेम अजीत साहेब और विमलेश मैडम जी, वंदगी जी। आगे लिखते हैं,
2: अजीत साहेब जी का कार्यक्रम आप दोनों के साथ शुरुआत होता है और बहुत शानदार रहता है। इस सप्ताह विमलेश मैडम कोई भी कार्यक्रम में नहीं आया। आप दोनों का वाणी विचार इस कार्यक्रम को और खूबसूरत बनाता है। आप दोनों का स्नेह श्रोताओं को मिलता रहे। 30 अप्रैल 2026 को एक टोकरी मिट्टी कहानी सुनने को मिला, बहुत प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद लगा। दिल से धन्यवाद।
3: आपको भी दिल से धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास जी का।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से साहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
3: और साथ ही साथ खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का संदेश हमें मिला है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, संदेश लगातार भेजने के लिए आपसे निवेदन है। इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे और आपके उमंग कार्यक्रम से। आइए अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है?
2: इसका उत्तर है, पीसा की मीनार इटली में स्थित है। इसकी नींव नरम और दलदली मिट्टी पर बनी हुई थी। इसकी मिट्टी कम गहरी है। जब इसे और ऊंचा बनाया गया तो ये धीरे धीरे तिरछी होनी शुरू हो गई।
3: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। अधिकांश वर्षा वन भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में गर्मी बहुत पड़ने की वजह से वर्षा भी खूब होती है।
3: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, अमेजन वर्षा वन के क्षेत्र में अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं?
2: अमेजन क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण अक्सर अमेजन नदी अपना तटबंध बदलती रहती है, इसलिए निश्चित करना बहुत कठिन हो जाता है कि पुल कहां से कहां तक बनाया जाए।
3: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, मातृवृक्ष किसे कहते हैं?
2: इसका उत्तर है साथियों, मातृवृक्ष उन पेड़ों को कहा जाता है जो बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें जमीन पर दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। वे छोटे पेड़ पौधों को अपनी जड़ों से पोषण देते हैं।
3: और श्रोताओं, अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों?
2: इसका उत्तर भी बड़ा अनोखा है साथियों। मैंग्रोव वनों के पेड़ों की पत्तियां खारे पानी के नमक को छानकर निकाल देती हैं और उन्हें मीठे पानी में बदल देती हैं, जिसके कारण

0: आम के पेड़ खारे पानी में भी जीवित रहते हैं, ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है।
1: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। जरूर बताइएगा कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है। तो आप सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है,
0: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
1: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: और श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है शेर और चूहे की दोस्ती।
2: शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी।

0: आप तो जंगल के राजा हैं, मुझे छोड़ दीजिए। देखना एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगा। हाँ, छोड़ दीजिए।
1: मेरे काम आओगे? ये छोटा सा चूहा ये भला मेरे क्या काम आएगा? ठीक है, जाओ, तुम्हें आजाद किया, जाओ।
0: धन्यवाद महाराज, पर एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हाँ, मदद करूंगा।
2: शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया।

एक दिन शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उस जाल में शेर फंस गया। वो जोर जोर से दहाड़ने लगा।

0: जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया।
1: ये कहां फंस गया मैं? अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं जाल में फंस गया हूं, निकालो मुझे यहां से।
0: हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया।
2: अरे महाराज, आप यहाँ? लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको अभी इस जाल से आजाद कर देता हूँ।
0: वो अपने पहने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया।
1: धन्यवाद, धन्यवाद मेरे नन्हे दोस्त, धन्यवाद
2: महाराज।
3: तो साथियों, सुना आपने? हम जिनसे आशा भी नहीं करते, वे भी हमारे बहुत बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं, है ना? तो इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार बाबला कोचर, मुइनुल हसन नियाजी और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है
2: अर्देशीर बुड़जोड़जी तारापुर। ये कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता भारतीय सेना के जांबाज कर्नल अर्देशीर बुड़जोड़जी तारापुर के जीवन और भारत पाक युद्ध के दौरान उनके अप्रतिम शौर्य और रण कौशल के प्रदर्शन की जानकारी देता है।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला वीर गाथा। इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर।
1: भारत भूमि की जितनी वंदना की जाए कम है। कुछ तो ऐसा जरूर है इसकी माटी में जो अनगिनत प्रतिभाओं, वीरांगनाओं, वीरों, कलाकारों, मेधावियों और योद्धाओं को पैदा करती है।
2: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत माता के सपूत और पराक्रमी सैन्य योद्धा अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर के बारे में, जिन्होंने सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने असीम शौर्य का परिचय दिया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में निर्णायक रूप से मोड़ दिया। अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर का जन्म 18 अगस्त 1923 को बंबई में हुआ था, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। अर्देशीर महान योद्धा रतनजीबा की वंश परंपरा में पैदा हुए थे। रतनजीबा महान राजा छत्रपति शिवाजी की सेना में सेनानायक थे।
1: उनके अतुल्य पराक्रम, शौर्य और श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन के सम्मान में स्वयं राजा शिवाजी द्वारा 100 गांवों की मनसबदारी दी गई थी। इन 100 गांवों में से एक था तारापोर, जहां रतनजीबा बस गए थे। इसी तारापोर गांव का नाम आगे चलकर उनके खानदान का उपनाम बन गया।
2: कालक्रम में तारापोर परिवार हैदराबाद में जा बसा। अर्देशीर यहीं बड़े हुए। सन 1940 में मैट्रिक पास करने के बाद वो हैदराबाद स्टेट आर्मी में शामिल हो गए। उन्हें प्यार से आदि पुकारा जाता था।
1: सेना में आते ही आदि ने अपूर्व साहस और निष्ठा का परिचय दिया। अपने सौम्य, मित्रवत और हंसमुख स्वभाव के कारण आदि समय के साथ साथ जवानों में बेहद लोकप्रिय थे। एक बार की बात है, उनकी यूनिट में हथगोला फेंकने का प्रशिक्षण चल रहा था।
3: जवानों,
4: जी सर।
3: हथगोला फेंकने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे, उतना ही सटीक आपका निशाना होगा।
4: जी सर, हमने सुना है कि यदि हथगोले को ठीक से नहीं फेंका गया तो।
3: तुमने ठीक सुना है, यदि इसे ठीक से नहीं फेंका गया तो यह जानलेवा हो सकता है। अच्छा चलो, अब अभ्यास शुरू करते हैं।
5: जी सर।
3: ध्यान रहे, जब आप गोला फेंकते समय अपने हाथ को घुमाते हैं तो गोले को सही समय पर फेंकिए। चलो राम सिंह, तुमसे शुरू करते हैं।
5: जी जनाब।
3: हाथ गोला हाथ में लो।
5: ले लिया जनाब।
3: अब पिन रिलीज करो।
6: फेंको।
5: फेंका जनाब।
6: अरे ये क्या हुआ?
5: ये क्या हुआ? अरे बचो बचो बचो,
6: फट जाओ, फट
5: जाओ, पीछे हटो, पीछे हटो, जमीन पर लेट जाओ,
6: धुआं निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, धुआं निकल रहा
2: है। साथियों, हुआ ये था कि वो सैनिक ग्रेनेड ठीक से नहीं फेंक सका और ग्रेनेड वापस अभ्यास स्थल पर ही आ गिरा।
1: कि तभी आदि तत्काल उठे, बिजली किसी गति से उस ग्रेनेड के पास पहुंचे।
5: ये आदि क्या कर रहा है?
1: और उसे उठाकर सुरक्षित दूरी पर फेंक दिया। हालांकि इसमें वो थोड़े घायल भी हुए।
7: वाह आदि, तुमने तो कमाल कर दिया।
5: तुमने साहस ना दिखाया होता तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती आदि।
8: सही में
5: बहादुर सैनिक हो तुम।
2: घटना स्थल पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज भी उपस्थित थे। वो आदि की सजगता, बहादुरी और निर्णय कुशलता से बहुत प्रभावित हुए। अभ्यास सत्र के समाप्त होने पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज ने आदि को अपने कार्यालय में बुलवाया।
9: May I come in, sir?
7: Yes, come in.
9: Sir.
7: जवान, मैं तुम्हारी बहादुरी पर तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। तुम एक सच्चे सिपाही हो।
9: सर।
7: वेल डन एडी, तुम बहुत आगे जाओगे। ट्रेनिंग में खूब मन लगाओ।
8: थैंक यू सर। सर, क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ?
7: हाँ हाँ, कहो।
8: मुझे लगता है कि किसी आर्मर्ड रेजिमेंट में मैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा।
7: ओके ओके, तुम हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स ज्वाइन करने की तैयारी करो। शाम तक तुम्हें ऑर्डर्स मिल जाएंगे।
8: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
7: गो अहेड यंग मैन।
8: सर,
2: दूसरे ही दिन आदि का तबादला हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स में हो गया। ये उनके लिए ऐसा था मानो कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। अपनी कर्मठता, अनुशासन प्रियता और विनम्रता के कारण वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंच गए। रेजिमेंट में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नाम से जाना जाता था।
1: भारत आजाद हो गया और हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर की पोस्टिंग पूना हॉर्स रेजिमेंट में हो गई। पूना हॉर्स रेजिमेंट को उसके रण कौशल और बहादुरी के लिए बड़े सम्मान से जाना जाता है।
2: और फिर आया सन 1965। भारत की पश्चिमी सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। 27 अगस्त 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। पूना हॉर्स रेजिमेंट को फौरन भारत पाकिस्तान सीमा की ओर कूच करने का आदेश दिया गया।
1: लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर को निर्देश दिया गया कि वो पंजाब के सियालकोट सेक्टर के चौविंडा इलाके पर नियंत्रण करें। 13 सितंबर 1965 को भीषण युद्ध शुरू हुआ।
5: साथियों, ये खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि इस युद्ध में हमारी ओर से जन सामान्य को किसी तरह की हानि न पहुंचे। ये युद्ध दो सेनाओं के बीच में है।
3: जी सर, हम पूरा ध्यान रखेंगे।
5: हमें अचानक हमला करना है ताकि दुश्मन को तैयार होने का भी मौका न मिले। आज रात होते ही हमारे सारे टैंक बिना कहीं रुके उनकी सीमा के अंदर घुसेंगे। और इस बीच याद रहे, इस बीच वायरलेस पर कोई मैसेज नहीं जाएगा।
9: जी जनाब।
4: सर, सुबह होने को है, जल्द ही उजाला हो जाएगा। हमारे सारे टैंक उन घने पेड़ों के पीछे पहुंच चुके हैं।
8: अब समय आ गया है हमला करने का। हमारे टैंक तीन दिशाओं से दुश्मन की ओर बढ़ेंगे ताकि उनका ध्यान बंट जाए, और मैं खुद अपने टैंक पर रहूंगा।
3: जी सर, हम आपके टैंक को खबर देंगे। सर, वो देखिए, सामने से दुश्मन के टैंक आ रहे हैं।
5: लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। टैंक को आगे बढ़ाओ प्रेमलाल, और जस्ट द गन, निशाना लगाओ उस तीसरे टैंक पर।
3: यस सर, वो टैंक निशाने पर आ गया है सर।
5: फायर।
3: सर, ये टैंक तो गया।
5: गुड, तो अब निशाना लगाओ उस टैंक पर, बहुत स्पीड में है। जल्दी करो प्रेमलाल, फायर, समय मत गवाओ, फायर।
3: सर, ये टैंक तो गया।
5: गुड, शाबाश शाबाश प्रेमलाल, अब हमें बिना रुके उन दो टैंकों पर फायर करना है। गो एंड सेंड देम टू हेल, फायर।
3: यस सर।
2: उस दिन टैंकों का भीषण युद्ध हुआ जिसमें दुश्मन के 13 टैंक ध्वस्त कर दिए गए, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना की आक्रमण करने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई और वो चौविंडा छोड़कर चली गई।
1: इस तरह चौविंडा क्षेत्र पर भारत का अधिकार हो गया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नेतृत्व में सेना बुटूर और डोगरांडी की ओर आगे बढ़ी। और अब समय आ गया था लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के शौर्य के चरमोत्कर्ष का। बुटूर और डोगरांडी के अलावा उन्हें वजीराली और जसोरन क्षेत्र पर भी कब्जा करना था ताकि पाकिस्तानी सेना को निर्णयात्मक रूप से पराजय दी जा सके।
2: सितंबर 1965 का दिन। उधर पाकिस्तानी सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जीवन मरण की स्थिति सामने थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने अपनी रेजिमेंट के साथ पूरी शक्ति से हमला किया और बहुत बहादुरी से लड़े। उस दिन उन्होंने दुश्मन के 60 पैटन टैंकों को ध्वस्त कर दिया। भारत के भी 9 टैंक ध्वस्त

0: युद्ध अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ चुका था।
1: कुछ देर युद्ध स्थल पर मानो शांति सी छा गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर अपने प्रिय टैंक खुशाब पर खड़े होकर चाय का घूंट ले रहे थे कि तभी
0: पेड़ों की झुरमुट में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके टैंक पर तोप से आक्रमण किया। इस टैंक पर पाकिस्तानी सेना की विशेष नजर थी। गोला लगते ही उनका टैंक खुशाब आग की लपटों से घिर गया। तारापोर को आग की लपटें निकल गईं और वो सदा के लिए चिर निद्रा में सो गए।
1: आंसुओं के साथ सैनिकों ने अपने नायक को विदाई दी।
0: मरणोपरांत उन्हें प्रदान किए गए प्रशस्ति पत्र में उनकी शौर्य गाथा के कुछ अंश इस प्रकार हैं।
1: युद्ध में आहत होने पर भी उन्होंने पीछे ले जाए जाने से इनकार कर दिया। घातक रूप से आहत होने पर भी उन्होंने अपनी चोटों की चिंता नहीं की। उनके टैंक पर अनेक वार हुए किंतु वो डटे रहे और केवल 9 टैंक खोकर दुश्मन के 60 टैंक ध्वस्त कर दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर द्वारा प्रदर्शित शौर्य भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप था।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्ध शौर्य पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कृतज्ञ राष्ट्र का उन्हें शत शत नमन।
2: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर। अकादमिक समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल। तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो। कलाकार बावला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, किशोर साहिजानी और असर नवाज उस्मानी। ध्वनियांकन मयंक कुमार। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्देशन विमलेश चौधरी। निर्माण कुसुमलता। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: आपने सुना ये प्रायोजित कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। दिन का 1 बजने वाला है। थोड़ी ही देर के बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। इसके बाद 1:05 पर प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। फिलहाल हिंदी समाचारों का वक्त है, तो चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि ये खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। न्यायाधीश पीएम नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से ज्यादा छात्रों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
1: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के क्वाड समूह का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम करना है। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 845 अंक की वृद्धि के साथ 76,260 जबकि निफ्टी 244 अंक

0: ईंधन बचत के लिए प्रयास शुरू किए हैं। श्री मनोहर लाल आज जींद जिले के गांव बीबीपुर स्थित सेल्फी विद डॉटर अभियान के जनक एवं पूर्व सरपंच सुनील जागलान के आवास पर उनके परिवार से शिष्टाचार भेंट के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। बिजली की बढ़ती मांग पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इस बार देश में 21 मई को 271 गीगावाट बिजली की मांग दर्ज की गई, जिसे लगभग पूरा किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने सुनील जागलान के सामाजिक अभियानों की खुलकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सुनील जागलान से उनका वर्षों पुराना संबंध।
1: सुनील जागलान जी से मेरा बहुत पुराना संबंध है। जब से इन्होंने इस अभियान को चलाया था सेल्फी विद डॉटर, उस समय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान भी मोदी जी की प्रेरणा से देश भर में पहले हरियाणा में शुरू हुआ, फिर देश भर में चला और उसी दौरान उस मुहिम को तेज करने के लिए इनका जो इनिशिएटिव था सेल्फी विद डॉटर, उसने उस अभियान को गति देने में बहुत काम किया। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसका नोटिस लिया और मन की बात में इसका उल्लेख भी उन्होंने कई बार किया।
0: श्री मनोहर लाल ने कहा कि समाज के बुराइयों को खत्म करने के लिए नए और सकारात्मक प्रयास बेहद जरूरी हैं। उन्होंने सुनील जागलान द्वारा चलाए जा रहे गाली बंद घर अभियान की भी सराहना करते हुए कहा कि किसी भी सामाजिक समस्या का समाधान तभी संभव है जब उसका सही विश्लेषण और जागरूकता हो। उल्लेखनीय है कि सुनील जागलान ने अपने सरपंच कार्यकाल में बीबीपुर गांव को देश की पहली हाईटेक पंचायतों में शामिल कराया था। उनके कार्यकाल में महिलाओं की पहली महापंचायत का आयोजन भी बीबीपुर में हुआ था। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पंचकुला सेक्टर 3 ताऊ देवीलाल स्टेडियम में पुलिस भर्ती शुरू हो गई है। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्टेडियम में पहुंचकर व्यवस्था का जायजा लिया और उम्मीदवारों से संवाद किया।
2: नाम दीपक है मेरा, कैथल डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ मैं और यहाँ पे पीएमटी चल रही है हरियाणा पुलिस की। अभी सीएम साहब आए थे यहाँ पे, देख के गए हैं कि भाई व्यवस्था वगैरह कैसी है और कुछ बच्चों से बातें भी की। उन्होंने पूछा था भाई सब ठीक ठाक चल रहा है, नहीं सेल्फी वगैरह ली है बच्चों के साथ, हाथ भी मिलाया है, अच्छा है। अगर वो आगे पूछ रहे हैं तो
0: मुख्यमंत्री ने प्रशासन द्वारा बनाए गए आराम क्षेत्र में भर्ती के लिए चल रही शारीरिक जांच के लिए पहुंचे उम्मीदवारों के अभिभावकों से भी बातचीत की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान कटा है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। CBSE के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी, कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि उचित शुल्क वाले सभी आवेदनों के मामले में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने अम्बाला में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत आयोजित जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे विकास वैचारिक मूल्यों से अवगत कराया। इस दौरान वरिष्ठ नेताओं और वक्ताओं ने राष्ट्र के समक्ष चुनौतियां, चुनाव प्रबंधन, वैचारिक अधिष्ठान, केंद्र सरकार की गरीब कल्याण योजनाएं, सोशल मीडिया और आईटी मीडिया की भूमिका जैसे विषयों पर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने कहा कि भाजपा परिवारवाद नहीं बल्कि विचारवाद के आधार पर चलने वाली पार्टी है। भिवानी जिले के कालूवास गांव के रहने वाले 19 वर्षीय पहलवान साहिल पंघाल ने 74 किलोग्राम भार वर्ग में हिंद केसरी का खिताब अपने नाम कर क्षेत्र का नाम पूरे देश में रोशन किया है। इस ऐतिहासिक और गौरवमय उपलब्धि के बाद कल भिवानी के बड़ चौक स्थित किसान युवा क्लब के मुख्यालय पहुंचने पर साहिल पंघाल का जोरदार स्वागत किया गया। भिवानी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 30 मई को विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसके लिए 10 पीठ गठित की गई है जो मामलों की सुनवाई करेगी। ये लोक अदालत परिक्रमा में लिखित अधिनियम की धारा 138 यानी चेक बाउंस से जुड़े मामलों के समाधान के लिए लगाई जाएगी। भिवानी के जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष DR चालिया ने बताया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकुला के निर्देशों पर विशेष लोक अदालत का आयोजन होगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार।

0: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। हमारे अगले कार्यक्रम
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में विशिष्ट

0: योगदान देने वाले राजस्थान के स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं जितेंद्र शर्मा।
1: श्रोताओं नमस्कार, आकाशवाणी के इस विशेष साक्षात्कार में आपका स्वागत है। इस अंक में हम आपकी मुलाकात स्वामी ब्रह्मदेव महाराज से करवा रहे हैं, जिन्हें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वर्ष 2026 के लिए देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक अलंकरण पद्मश्री देने की घोषणा की गई है। स्वामी जी के प्रयासों से हजारों दिव्यांगों का जीवन रोशन हुआ है। आप पिछले लगभग 5 दशकों से श्रीगंगानगर में जगदम्बा आनंद विद्यालय का संचालन कर रहे हैं। श्रोताओं जानते हैं समाज सेवा को समर्पित स्वामी जी की जीवन यात्रा के बारे में। स्वामी जी, सबसे पहले पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने की घोषणा के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। स्वामी जी, सबसे पहले हम आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। आपका बचपन, आपकी शिक्षा दीक्षा और अध्यात्म की ओर आपका झुकाव कैसे हुआ?
2: मैं 6ठी क्लास तक तो गाँव में ही पढ़ा हूँ, ग्रामीण हमारा जीवन का प्रारंभ है। उसके बाद हमारा गुरुजी से संबंध जुड़ा, उनके सत्संग के माध्यम से हम अपने गुरुजी से प्रभावित होकर के संतों के शरण में चले गए। उसके बाद गुरुजी ने हमें पढ़ने लगा दिया, तो हमारी शिक्षा सारी अमृतसर की है। वहाँ अखाड़ा संगलवाला है, जहाँ रह करके हमने दुर्गयाड़ा मंदिर में जो संस्कृत विद्यालय है वहाँ हमारी शिक्षा दीक्षा हुई। वहीं बैठ करके हमने प्रभाकर की संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की, वहीं हमने ग्रेजुएशन की। उसके बाद फिर हम गुरुजी के पास आ गए, उन्होंने फिर हमें गांव में सत्संग करने के लिए लगा दिया कि नशे के खिलाफ हर गांव में जाइए, तो हम इस अभियान में जुट गए। 1960 में मैं गुरुजी के चरणों में चला गया था। 1972 तक पढ़ने के बाद गुरुजी के पास सेवा की। 72 में गुरुजी ने हमें आज्ञा दे दी, तो हम पटियाला चले गए। पटियाला सत्संग के माध्यम से वहाँ एक आश्रम बढ़ गया। तो जब मैं अमृतसर में पढ़ता था, वहाँ हमारे संस्कृत विद्यालय के साथ एक छोटा सा अंध विद्यालय भी था, तो मैं अक्सर उसमें जाया करता था। तो मेरे मन में कई बार आता था, ये सबसे बड़ी तो ये सेवा है, बाकी तो सबको लोग पढ़ा लेते हैं, तो जिसको दिखते ही नहीं उसको पढ़ाना, उनको किताबें ऐसे पढ़ते देख करके मेरे बड़ी उत्सुकता थी कि प्रभु ने कभी कृपा की तो अपने अंध विद्यालय में। वो मन में विचार हमारे बैठा हुआ, तो चलते चलते गुरुजी की आज्ञा से पटियाला चले गए, वहाँ भी आश्रम बन गया। तो 73 में हरिद्वार में भी आश्रम बन गया। उसके बाद हम इधर आए तो समाणा, पटियाला, धूरी, खन्ना, इधर सत्संग करते रहे, तो अचानक हमें गंगानगर के दो व्यक्ति हरिद्वार में मिले। वो हमें यहाँ ले 76 में, तो हनुमान जी का मंदिर है वो भी निर्माणाधीन था, वहाँ 2 दिन सत्संग करके हम चले गए। उसके बाद फिर उन्होंने हमें अगले साल बुलाया, तो 8-10 दिन जगह सत्संग हुआ, तो वो कहने लगे जी हमारा बंदर पूरा करवाओ। 78 तक वो बंदर कंप्लीट हो, प्राण प्रतिष्ठा करवाने के बाद, एक यज्ञ करने के बाद हम चले गए। जब दोबारा फिर आए अगले साल 1 दिन के लिए, तब ये जो नया चक है जिसके बाद करचैल चौक कहते हैं, ये नया चक था। हम यहाँ 78 में आ गए। ये नए चक के एक पुरजाराम जी कुलचाणिया जो थे, उनकी ये जमीन है, 1 बीघा जमीन है। उन्होंने माता का मंदिर बढ़ाया हुआ था, उसका नाम था जगदम्बा माता मंदिर, छोटा सा मंदिर, 1 बीघा उसके नाम जमीन। तो ये हमारे पास हनुमान मंदिर में चले गए जी। हमारा मंदिर तो बन गया, वहाँ पूजा तो होती नहीं, तो हमें लगता है कि पूजा ना हो तो अपराध है, आप उसमें कुछ बनाना चाहते तो बनाओ। वहां से फिर पैदल चल करके गाँव के बाद जब इस जगह को देखा, सड़क के किनारे वहाँ नीम के पेड़ लगे हुए, छोटा सा मंदिर है, तो एकदम माता के दर्शन करते मन में विचार आया कि जो अपने अंध विद्यालय है ना, वो यहाँ पूरा हो सकता। शहर से दूर है, चारों तरफ खेत है, कल को जगह की जरूरत हो तो जगह भी मिल सकती है। तो 13 दिसंबर 1980 को अंध विद्यालय की नींव हमारे गुरुदेव संत बाबा कर्णदयाल दास जी महाराज जी के कर कमलों से रख दी गई। 81 में 6 कमरे हमने तैयार कर लिए थे, 1 बच्चे से जिसका नाम राजकुमार था और 1 हमारे थे अध्यापक जिनका नाम था अमरनाथ गर्ग, दोनों से स्कूल शुरू कर दिया। धीरे धीरे बच्चे बढ़ते चले गए, हम भी संघर्ष करते गए, सत्संग होता रहा, लोगों की भी रुचि बढ़ती गई। फिर गांव से जहां पता चलता था ब्लाइंड बच्चा लेने के लिए जाते थे, बड़ी समस्या आती थी उनको समझाने की, उनको समझा बुझा के गर्ग साहब को साथ लेके जाना, पढ़ के दिखाना, फिर बच्चे धीरे धीरे बढ़ते चले गए।
1: स्वामी जी, इस विद्यालय में दिव्यांग बच्चों के प्रशिक्षण और स्वावलंबन बनाने के लिए किस प्रकार सिखाते हैं ताकि वो खुद स्वावलंबी बन जाए?
2: ये विद्यालय जब शुरू हो गया, इनको तो हम बनाने सिखाते थे, कुर्सियां बनाना, बैग बनाना, बाकी खेल कूद, संगीत में एमए की शिक्षा, ये तो इन बच्चों के जीवन यापन के लिए थे, आगे इनको सर्विस भी मिल सके। और साथ ही फिर 83 में डेफ बच्चों के लिए शुरू हो गया। अब उसमें बच्चे आने लगे, उन बच्चों के लिए शिक्षा तो थी ही साइन लैंग्वेज से, साथ के साथ लड़कियों के लिए सिलाई कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी ब्यूटी पार्लर ये काम सिखाना, बच्चों को सर्टिफिकेट वगैरह दिलवाना, फिर बच्चों को धीरे धीरे कंप्यूटर आ गया, पहले हम टाइप सिखाते थे फिर कंप्यूटर सिखाने लग गए, तो बच्चों के लिए फिर प्रेस लगाई दूसरी कंपोजिंग वाली, फिर हमने ऑटोमेटिक प्रेस लगाई ताकि बच्चे आगे पढ़ लिख करके कहीं रोजगार प्राप्त कर सके। ये दोनों का डेफ के लिए अलग और ब्लाइंड बच्चों के लिए अलग दोनों तरफ चलता रहा।
1: स्वामी जी, अब तक की यात्रा में कितने बच्चे लाभान्वित हो सके हैं और भविष्य में क्या कुछ योजनाएं हैं?
2: इसके बाद फिर हमने शुरू किया था नेत्र चिकित्सालय के, जो ब्लाइंड बच्चे ब्लाइंड हो चुके हैं उनको तो शिक्षित करो, जो ब्लाइंडनेस बढ़ रही है वृद्धों में भी और कई जन्मजात बच्चों के भी कैटरेक्ट होता है सफेद मोतिया, उससे भी बच्चा ब्लाइंड हो जाता अगर इलाज ना हो, तो फिर आई हॉस्पिटल की स्थापना की, लोगों के सहयोग से आई हॉस्पिटल बढ़ गया। उस आई हॉस्पिटल में जिसका पढ़ाना तो पढ़ाए, जिसका इलाज नहीं तो उसको वहाँ हॉस्पिटल में इलाज करते, ताकि जो वृद्ध अवस्था में ब्लाइंडनेस आती है वो ब्लाइंडनेस का कंट्रोल होता रहे।
1: स्वामी जी, भविष्य में क्या कुछ योजनाएं हैं?
2: बच्चों के लिए हमने जो यहाँ प्रयास किए, कुछ बच्चे तो हमने डेफ बच्चे पहलवान बनाए, ब्लाइंड बच्चों को क्रिकेट में जूडो में खेलों में दे करके नेशनल लेवल तक ये भी बच्चे जाते रहे। फिर हमारे पास मिलिट्री के लोग भी आने लगे, उसके बाद दयालु जनरल साहब आए थे, उन्होंने जो मिलिट्री का एमएस डिपार्टमेंट है उसमें हमारे डेफ बच्चे उन्होंने रख ली, फिर तो दयालु बच्चों की सर्विस की कोई चिंता नहीं रही। रेलवे में ब्लाइंड बच्चे हैं, एजुकेशन में ब्लाइंड बच्चे चले गए, स्कूल टीचर बन गए, अब तो उसके बाद हमारे पास डीएड का और बीएड का कॉलेज भी है, जो बच्चे प्लस टू कर लेते हैं वो डिप्लोमा करेंगे, जो बीए कर लेते हैं वो बीएड कर लेते हैं। अब तो हजारों की तादाद में जो टीचर हैं सरकारी स्कूलों में लगे हुए, पंजाब में भी यहाँ राजस्थान में भी, सर्विस की कोई अभी तक तो इन बच्चों को कोई चिंता नहीं, कई बच्चों का अपना पर्सनल बिजनेस भी है।
1: श्रोताओं, हम बता दें देश का पहला ब्रेल एटीएम शुरू कराने में श्रेय श्री स्वामी जी को जाता है। स्वामी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके मन में यह विचार कैसे आया?
2: पहले तो राजस्थान में ब्रेल बुक छापने का कोई व्यवस्था नहीं थी, तो हमने केबीसी के माध्यम से पता करके स्वीडन से 20 लाख की गवर्नमेंट की माध्यम से ब्रेल प्रेस मंगवाई, ताकि राजस्थान के बच्चों को फिर हम फ्री राजस्थान के कोर्स की किताबें जहां जहां भी ब्रेल स्कूल था वहां वहां भेजते रहे। दूसरा ये था कि बैंकों का काफी विस्तार होने लगा, एटीएम लगने लगे, तो हमारा ब्लाइंड बच्चा एटीएम से पैसे कैसे निकालेगा। फिर हमने बैंक से संपर्क किया, इन्होंने फिर एक ऐसा बनाया एटीएम जिसके ऊपर लिखा हुआ था ब्रेल प्रेस के शब्दों से, तब हमारे बच्चे जाकर के एटीएम में इससे अपने पैसे निकाल लेते थे। पहला एटीएम जो ब्रेल लिपि में था वो गंगानगर से शुरू हुआ, पहली जो कंप्यूटराइज्ड ब्रेल प्रेस है राजस्थान में पहली अपने लगाई थी।
1: स्वामी जी, दिव्यांगों को मुख्य धारा में लाने के लिए समाज की धारणा में किस तरह बदलाव लाया जा सकता है और कैसे लाया जा सकता है और यह बदलाव क्यों जरूरी है?
2: जो यंग होता है ना यूथ, जिसको आजकल जेन जी बोलते हैं, उसके अंदर बहुत बड़ी एनर्जी होती है, उस एनर्जी को दिशा देनी है। जैसे हमें गुरुदेव ने दिशा दे दी जवानी में, बढ़ते बढ़ते इधर लागे, तो ये दिशा मिलती है कॉलेजों में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में, अगर वहाँ भी इसी प्रकार के आयोजन होते रहें विकलांगों के प्रति, ब्लाइंड बच्चा कैसे पढ़ सकता है, यूनिवर्सिटी में ऐसी कॉन्फ्रेंस हो, डेफ की भी कॉन्फ्रेंस जगह जगह रखी जाए, ताकि लोगों में बहुत बड़ी भावना है, दयालु कहीं भी बात करो यंग ब्लड सब कुछ करने के लिए, समाज सब कुछ करने के लिए तैयार है, हमारे को समाज ने बहुत सहयोग दिया, जगह जगह समाज सहयोग दे रहा है, सहयोग लेने वाला चाहिए, इसलिए अगर ऐसे आयोजन हो जगह जगह यूनिवर्सिटियों में कॉलेजों में के ब्लाइंड कैसे पढ़ता है, जैसे अब हमारे पास ना कॉलेजों के बसें भर के आती है, वो उनका एजुकेशनल टूर भी हो जाता है और ब्लाइंड बच्चों को पढ़ते भी देख लेते हैं, डेफ बच्चों को पढ़ते भी देख लेते हैं, और किस प्रकार कई लोग आते हैं, किस प्रकार हमारा आई हॉस्पिटल बड़ा है, उसमें आजकल 6 सर्जन है, 70-80 ऑपरेशन प्रतिदिन होते हैं, हर हफ्ते इन दिनों में जगह जगह फ्री कैंप लगते हैं, बस जाती है फ्री चेकअप करेंगे, लोगों की कमेटियां बड़ी हुई हैं, उनसे जो डिटेक्ट होता है मरीज उनको फ्री लाते हैं, फ्री ऑपरेशन होता है, भोजन पानी की दवाई की व्यवस्था बिल्कुल फ्री है, फ्री ही उसको बस से वहाँ छोड़ के आएंगे उसके डेस्टिनेशन पे जहाँ से उसको लेकर के आए हैं। और ये व्यवस्था भी सरकार के सहयोग से, जनता के सहयोग से और जो कमेटियां बनी हुई है उनके सहयोग से ये व्यवस्था भी बहुत सुंदर चल रही है और आज तक 5 लाख से ऊपर आई कैटरेक्ट के ऑपरेशन हो चुके हैं।
1: स्वामी जी, युवाओं को मौलिकता के इस युग में समाज सेवा से जोड़ने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए?
2: एक पहले धारणा बनी थी कि कॉलेजों में कोई धार्मिक टीचर भी हो तो उनके माध्यम से हो सकता है। बाकी ये जो आजकल मैंने बताया ना कि कॉलेजों के स्टूडेंट जो हैं, जहाँ प्लस टू के जो स्टूडेंट हैं, जो बीएड कर रहे हैं या नर्सिंग कर रहे हैं, वो लोग बसे लेकर के अगर ऐसी संस्थाएं बच्चों को दिखाएं जहाँ वृद्धों के लिए काम हो रहा है, जहाँ डेफ बच्चों के लिए काम हो रहा है, ब्लाइंड के लिए काम हो रहा है, MR बच्चों के लिए काम हो रहा है, हमारे यहाँ निशुल्क अंग भी लगाए जाते हैं आर्टिफिशियल अंग, बिल्कुल निशुल्क, यहाँ कैंप लगता है उसमें बिल्कुल निशुल्क, जो भी कोई आएगा चाहे रिपेयर करवाए चाहे अंग लगाए वो भी निशुल्क काम यहाँ होता है। तो इस प्रकार अगर संस्था दिखाई जाए विद्यार्थियों को, कॉलेज तक के विद्यार्थियों को, क्योंकि तब तक बच्चा समझने लग जाता है तो वो ना जाने कहाँ जाकर के कौन सा काम क्या कर दे। कई स्टूडेंट हमारे गए हैं यहाँ से, उन्होंने अपने गांव में 5-4 बच्चे लेकर के स्कूल खोल रखे हैं, वो भी सेवा बावला में लगे हुए हैं, कईयों ने डेफ बच्चों के लिए ट्यूशन का काम कर रखा है। तो ये काम हो सकता है अगर इस प्रकार ये संस्था दिखाई जाए, तो मेरे को भी देखने से प्रेरणा मिली। या तो दयालु किसी चीज को देखता है तब वो देखता है कि मुझे भी ये करना चाहिए, जहाँ जो किसी चीज के बारे में सुनता है कि ये फलानी जगह संस्था चल रही है जी बहुत अच्छी है, तो उसका भी मन करता है कि मैं भी करूँ। इस प्रकार कई लोग हमें यहाँ संपर्क करते हैं, नाना प्रकार की जो संस्थाएं हैं कि आप कैसे डेफ को चला रहे हो, मूकबधिर विद्यालय कैसे चला रहे हो, इससे प्रेरणा लेकर के आप देखिए बठिंडा में बहुत बड़ा स्कूल बन गया, हमारे संप्रदाय के संत ने 10 एकड़ जमीन दी वहाँ, उसको अब DC साहब जो है रेड क्रॉस वो चला रही। इसी प्रकार ये अबोर में हमारे पास में वहाँ भी मूकबधिर विद्यालय शुरू किया गया, फरीदकोट में भी है। इस प्रकार छोटे छोटे विद्यालय भी शुरू हो जाए तब भी बच्चा नजदीक ही अपनी शिक्षा प्राप्त करके, एक मैं आपको गारंटी देता हूँ दयालु, बच्चा अगर वो शिक्षित हो गया ना वो मुख्य धारा के साथ जुड़ जाता है, वो समाज को समझने लग जाता है, क्योंकि बुक्स पढ़ता है, बातें सुनता है, तो जो नौकरी लगे हुए हैं उनको भी मिलता है, उनके मिलने से वो भी प्रयास करते। इसलिए ब्लाइंड बच्चे रेलवे में भी जा रहे हैं, ब्लाइंड बच्चे बैंकों में भी जा रहे हैं, डेफ भी जा रहे हैं, बस बच्चों को लेना है, स्कूल में लाना है, उसको किसी ढंग से प्रशिक्षित करो। एक बार वो प्रशिक्षित हो गया समझ लो बच्चा मुख्य धारा में जुड़ गया, अब वो समाज पे परिवार पे बोझ नहीं रहेगा, सपोर्टर बन जाएगा।
1: स्वामी जी, आपकी तपस्या को 50 साल पूरे हो रहे हैं, आने वाले समय में आप कौन से ऐसे सपने हैं जिन्हें साकार होते हुए देखना चाहते हैं?
2: चलो, मुझे ऐसा लगता है जो आजकल सरकार का जो वातावरण बन रहा है जैसे, और इनको नाम दे दिया दिव्यांग बच्चों के प्रति जो सरकार की योजनाएं चल रही है नाना प्रकार की, उनको ऋण देना, उनको अपने पांव पे खड़ा करने की योजना देना, उनको सर्विस देना, रिजर्वेशन देना, ऐसी योजना जो सरकार चला रही है, तो ये योजना बच्चों के भविष्य के लिए बहुत अच्छी है। तो मैं अपनी तरफ से सरकार का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इन बच्चों के लिए योजनाएं शुरू की है, और समाज सरकार की योजनाओं से प्रेरित होकर के कई जो दानवीर हैं, जहाँ जो इसमें समाज में कुछ काम करना चाहते हैं समाज सेवी, उनको भी उत्साह मिलता है। तो मैं एक और भी सरकार का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि सरकार ने इस गंगानगर जिले की सेवा को मान्यता दी है, ये पद्मश्री दे करके इनकी सेवा को स्वीकार किया है कि यहाँ कुछ हो रहा है, इसके लिए मैं जिले की ओर से भी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
1: स्वामी जी, मुझे जितेंद्र शर्मा को अनुमति दीजिए।
0: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले राजस्थान के स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे जितेंद्र शर्मा। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और YouTube चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

ये आपने सुना अपराध फिल्म का गीत, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें थी। गीत लिखा था इंदिवर ने। अगला गीत आपको सुनवाते हैं हमारा संसार फिल्म से, हेमलता और यशुदास की आवाजें आप सुनेंगे। गीतकार संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

ये था हमारा संसार फिल्म का गीत, हेमलता और यशोदास ने इसे गाया। गीतकार संगीतकार थे रविंद्र जैन। अगला गीत आइए सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में गाया हुआ। दीवार फिल्म का नाम है। गीत लिखा है साहिर ने और संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने।

ये गीत आपने दीवार फिल्म से सुना, किशोर कुमार और आशा भोसले ने गाया, साहिर लुथियानवी ने रचा और संगीतबद्ध किया राहुल देव बर्मन ने। फिल्मी गाने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। अगला गीत जो हमने आपके लिए चुना है वो है शोर फिल्म से, मुकेश, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ें आप इस गीत में सुनेंगे। इसे लिखा है संतोष आनंद ने, संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

ये था शोर फिल्म का गीत। मुकेश, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ें आपने सुनी, संतोष आनंद के बोल थे। संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। अगला गीत आपको सुनवाते हैं रोटी कपड़ा और मकान फिल्म से। मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ें ही आप सुनेंगे। गीत लिखा है संतोष आनंद ने।

मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया। संतोष आनंद के बोल थे, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फिल्मी गाने आप तक पहुंच रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। अगला गीत सौदागर फिल्म से आपको सुनवाते हैं। लता मंगेशकर की आवाज़ आप सुनेंगे, गीतकार संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

ये था अर्चना फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज़ थी, नीरज के बोल थे, संगीत था शंकर जयकिशन का। श्रोताओं, कुछ गीत ऐसी खासियत रखते हैं कि हर सुनने वाले को ये लगता है कि ये गीत तो खास मेरे लिए लिखा गया है, ऐसा ही है ये गीत भी। और इससे पहले आपने सौदागर फिल्म का गीत सुना था, लता मंगेशकर की आवाज़ थी, गीतकार संगीतकार थे रविंद्र जैन। और अब फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से खत्म होता है। 2 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों के बाद आप सुनेंगे समाचार, पहले अंग्रेजी में, इसके बाद हिंदी में, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
1: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म और आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि ये खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा। एक रिपोर्ट।
2: न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में पुणे निवासी भौतिकी विषय के लेक्चरर मनीषा संजय हवलदार को 6 दिन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। असम सरकार ने आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण करना अनिवार्य है। विधेयक में ये प्रावधान है कि ये असम में रहने वाली किसी भी अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा। विवाह के लिए विधेयक में पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है और बहुविवाह पर रोक लगाई गई है। कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए विधेयक में विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव है, जो जीवन साथियों के लिए भरण पोषण, विरासत और अन्य कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा की ओर से सदन में समान नागरिक संहिता असम विधेयक 2026 पेश किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सरकार स्थिर और मजबूत है। उन्होंने कहा कि ऐसे वैश्विक संकट के बीच, जब कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं कमजोर पड़ गई हैं, देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस वैश्विक चुनौती का मजबूती से सामना कर रहा है। बीजू जनता दल बीजेडी के नेता और राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक को लिखे अपने इस्तीफे में देवाशीष सामंतराय ने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर उन्हें जानबूझकर नीचा दिखाया जा रहा था। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम रखना है। भारत इस गठबंधन के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। वर्ष 2024 में अमेरिका के विल्मिंगटन में आयोजित पिछले क्वाड शिखर सम्मेलन में इस समूह के शीर्ष नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए कई बड़े कदमों की घोषणा की थी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। मुंबई में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के 37वीं वर्षगांठ समारोह के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के उत्पाद शुल्क में कटौती से राजस्व पर 1,00,000 करोड़ रुपये का असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सोने की अधिक कीमत बाहरी मोर्चे पर कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं। उन्होंने कहा कि देश के नीतिगत प्रतिक्रिया को घरेलू विकास को बनाए रखने के हिसाब से तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परोपकार संबंधी अपीलों के बाद एक संशयपूर्ण और निराशावादी माहौल बनाने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत डर फैलाने का जोखिम नहीं उठा सकता। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा भ्रामक है। इकाई ने कहा कि रक्षा मंत्री और सरकार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विकल्पों पर विचार करने से पहले कूटनीति को हर मौका देंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य से विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। इस वर्ष की शुरुआत से ईरान पर अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य बाधित हुआ है। विदेश मंत्री रूबियो भारतीय नेताओं के साथ बैठक करने के लिए इस समय भारत में हैं। वे नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन का लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले 2 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। आज पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। इस बीच आज पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर आज बिजली चमकने और आंधी तूफान आने की संभावना है। भीषण गर्मी नौतपा की आज से शुरुआत हो गई है। ये अगले महीने की 2 तारीख तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
4: मध्य प्रदेश में आज से नौतपा शुरू हो गया है। ये सिलसिला 2 जून तक चलेगा। नौतपा यानी साल के वो 9 दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 44 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में हालात सबसे गंभीर हैं। इसीलिए इन 5 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 से 28 मई के बीच गर्मी और भी बढ़ेगी और 31 मई तक किसी भी तरह की राहत की उम्मीद नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 944 अंक की वृद्धि के साथ 76,360 जबकि निफ्टी 270 अंक बढ़कर 23,989 पर था। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2026 का शुभारंभ आज नॉर्वे के ओस्लो शहर में हो रहा है। टूर्नामेंट भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। 13 वर्ष के इतिहास में पहली बार ये प्रतियोगिता स्टावांगर के बजाय ओस्लो में आयोजित की गई है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के ओपन और महिला दोनों वर्गों में शामिल खिलाड़ियों में मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश और आर प्रज्ञानानंद जैसे विश्व के दिग्गज ग्रैंड मास्टर भी हैं। भारत ने जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनर्स एसोसिएशन IAU एशिया तथा ओशिनिया चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। भारत ने कुल 5 पदक जीते और पुरुषों की श्रेणी में दबदबा कायम रखा। अमर सिंह देवंदा ने स्वर्ण पदक जीता। यीनो एंटनी ने रजत पदक हासिल किया जबकि कांस्य पदक भी भारत के खाते में गया। महिलाओं की श्रेणी में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। तेंजिन डोलमा शीर्ष भारतीय खिलाड़ी रहीं और व्यक्तिगत रूप से 4th स्थान पर रहीं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। वार्षिक हज यात्रा के लिए भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के मीना में इकट्ठा हो रहे हैं। हज सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से भारतीय जायरीनों को जानकारी और शिकायत दर्ज कराने की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट UG परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र NTA और CBI से जवाब मांगा। कहा पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा गया। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में लू की स्थिति बनी रहेगी। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप खेत खलिहान कार्यक्रम सुनेंगे।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: फंसी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: कार्यक्रम सुनने वाले सारे वन भाइयों ने अशोक भाई की राम राम। भाई वो भी परंपरागत खेती करा हाँ, लगातार करते आ रहे हैं भाई, रबी के बाद खरीफ, खरीफ के बाद रबी, इस तरह ही लगते रहे। तो उसमें अपनी जो ज़मीन के पोषक तत्व हमने वो सारे के सारे खींच लिए। इसमें पहले तो इच्छा था कि हम उसमें गोबर की अच्छी गली सड़ी खाद डाल लिया कर दें, या हरी खाद भी का भी प्रयोग कर दें उसमें, या जो अपने फसल अवशेष वाद जो अब बताने पड़े हैं कि भाई इनको जलाना नहीं, इनको अपनी उसमें ज़मीन में ही गड़ा देना है, वो चीज़ें किया करते अपने बड़े बुजुर्ग किया करते। लेकिन ईव हमने क्या हुआ उसको छोड़ दिया है। और उसका भाई सबसे बड़ा कारण यही हुआ कि जो ज़मीन में पोषक तत्वों की कमी हुई, क्योंकि लगातार उसमें फसल दिन तो अब तो उगा रहे हैं और पोषक तत्व तो उसको दे नहीं रहे, तो उसमें समस्या हमारे लिए ये होगी भाई कि जो पोषक तत्व हो वो हमारी फसलों में नहीं रहे और इसी वजह से वो कमजोरी आने लगी। तो बढ़िया ये रहा कि हमें एक तो देसी खाद का प्रयोग कर लिया, ज़्यादा से ज़्यादा अपने गोबर की गली सड़ी खाद है वो लेकर ने अपने उसमें पहले तो बनावा, गड्ढा खोद कर उसमें गोबर डालें और फिर सही वो तैयार हो जाए, फिर अपने खेत में डालें ना, तो देखो उसमें खरपतवार होंगे फिर, और ऐसा बढ़िया तैयार हो जाए कि हर तरह का जो पोषक तत्व तो किसी भी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है फिर उसमें करनी। देखो जिस तरह ये बताया जाए कि मिट्टी पानी की जांच करवानी, मिट्टी जांच करवानी हो जाए उस टाइम पर, ये बताया जाए कि वह जहाँ आपने खाद डाल रखा हो ना, गोबर की खाद डाल वहाँ से मिट्टी नहीं लेनी। उसका कारण यही है भाइयों कि उसमें उस जगह पर सारे जो पोषक तत्व उनकी पूर्ति हो ही पाओगी। तो इसलिए हमारा ये फर्ज बने हैं भाई इस अपनी ज़मीन की जो सेहत संवारने के लिए सदियों तक ये चलती रहे जैसे अब तक चलती आई है, तो उसमें हमने जो देसी खाद है उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। और ये भी नहीं जिस तरह बार बार जिक्र भी करा कि भाई कि गोबर डाल दिया उसका गोबर के देसी खाद नहीं है, उसको गड़ा छड़ा कर ने और जब उसमें डाला खेत में तो बढ़िया काम करे, नहीं तो गोबर सीधा डाला तो उसमें डिमक हो जाएगी और खेत मरा फायदे की वजह उसमें ख़राब हो जाएगा, उसमें नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हमने ये ध्यान रखना है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो देसी खाद है उनका प्रयोग करा, केंचुआ खाद है, हरी खाद है, या फसल अवशेष है, जो भी चीज़ें सारी की सारी हैं उसके अंदर हमने वो कर देनी चाहिए, ज़मीन में मिला देनी चाहिए ताकि उसके पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाए। एक ये चलो इतना नहीं हुआ, जो हरी खाद है हरी खादों का भी प्रयोग हमने बंद कर दिया, जैसे अब हमारी ज़मीन खाली पड़ी है और उनमें हमें हरी खाद का प्रयोग कर सका, जैसे वह शनि का है या ढेचा है या वैसा कि मूंग की है बात है, ग्रीष्मकालीन मूंग का वो भी अगर हमने बिजाई कर रखी है तो उसमें देखो इस मूंग का तो और भी ज़्यादा फायदा भाई हमने कि भाई एक तो हमारे उसका दाल वाली जो दाना है वो हो जाए फसल में हो जाए, और दूसरी बात फिर जो इसके पत्ते जो इसके पौधे हैं सारे के सारे यूँ हमने ज़मीन में मिला देने हैं और वो हरी खाद का भी काम करें, यानी दोहरा फायदा इससे हमने वो हम उनके उससे। लेकिन कई भाई की करें इसमें ये देखें, देखो उसमें यूनिवर्सिटी द्वारा आपको बीज भी दिया जाता है जब ये मेले लगे हैं अपने, तो उस टाइम पर अपना लिया जा सके और बीज उसकी बिजाई करी जा सके, और दोहरा फायदा जिस तरह ये बता दिया कि हमने दाना के रूप में ही मिल जाए और फिर हरी खाद के तौर पर ही मिल जाए। साथ ही इसमें ये देखो जैसे ढेचा का ढेचा की भी बिजाई कर ली और उसे जो ही अच्छा हो जाओ, देखो इसमें बीज तो ज़्यादा हमने लेना है, कारण उसका यूँ है कि वो गणका हो जाएगा और ज़्यादा मोटे ना बने पतला पतला अगर, और फिर उसके बाद उसकी बाई कर दी जाए, बाई करके अंदर पानी दे दिया जाए, उसमें मिला दिया जाए, ज़मीन वो मिल जाए, तो ज़मीन में बहुत सारे जो पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति हो जाए। वो अब तो ये है भाइयों कि मिट्टी की जाँच करवानी पड़े, जाँच में फिर ये पता चला हमने अलग अलग खाद डालने पड़ेंगे उसमें, उसकी बजाय एक ही है कि वह सब जो बीमारियों की एक ही दवा जो देसी खाद है हरी खाद है उनका प्रयोग कर लिया तो सबसे बढ़िया रहे भाई। एक तो फसल भी हमारी अलग से पाओगी, इसमें चमक है अलग तो होगी क्योंकि सारे पोषक तत्व तो उसके अंदर होंगे, तो हमें सारी चीज़ उसमें मिलेंगी वो बढ़िया मिलेंगी, उसके भाव भी बढ़िया मिलेंगे, उसमें वजन भी होगा और लंबे समय तक उसका जिस तरह भंडारण करना है सारी फसलों के लिए वो चीज़ें उसमें हो जाएंगी। लेकिन इसमें किसान भाई ने अपना ये ज़रूर ध्यान रखना है कि भाई हाँ हम इस को काम को करेंगे और अपना एक संकल्प बना लें कि भाई हमने देसी खादों का प्रयोग तो ज़्यादा से ज़्यादा करना ही करना, चाहे उसमें गोबर की गलीसड़ी खाद है, चाहे केंचुआ खाद है, और चाहे हरी खाद है, और चाहे फसल अवशेष है, यानी ज़मीन की सेहत हमने संवारनी है चाहे किसी भी तरीके से। और जिस तरह हरी खाद की बात करा तो इसमें डेचा है भाई और मूंग की है, जो ग्रीष्मकालीन मूंग है उसकी भाई ने बिजाई कर भी रखी होगी, अपने उसमें कर दें तो समय रहते, तो इसका दोहरा फायदा, एक तो हमने बीज मिल गया यानी दाने के रूप में मिल जाए, और दूसरी बात हमने उसका फिर उसके पत्तों को और उसके पौधों को उसमें ज़मीन में मिलाकर उसको हम हरी खाद का प्रयोग कर सकें। तो आज इस विषय पर अपनी बातचीत रहेगी भाई, ग्रीष्मकालीन मूंग की काश्त। लेकिन उससे पहले आपने रागनी सुनवा दिया, गायक कलाकार रहेंगे आजाद सिंह खंडा खेड़ी और उनके साथी।

ঘরত জডে মতেরি জডে মতেরি গেল থরা ওর গাম।

ਜਾਨ ਲੱਗਾ ਕੇ ਸੁਣ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਾਨ ਲੱਗਾ।

भाइया ने रागनी सुनी, गायक कलाकार थे आजाद सिंह खांडा खेड़ी और उनके साथी, जिक्र कर रहे थे ग्रीष्मकालीन मूंग की काश्त में। भाई उसमें दो किस्में हैं जो कि बहुत बढ़िया अच्छी पैदावार देने वाली हैं। एक किस्म है बसंते, इसकी सारा क्षेत्र में अपना हरियाणा किस्म की बिजाई की करी जा, सिफारिश करी जा, और इसकी पैदावार भी अच्छी 6-7 क्विंटल 1 एकड़ में हमने मिल जाए। अच्छी लंबी बढ़ने वाली है और 65 दिन में यह पक्कन तैयार हो जाए, यानी बिजाई से पकाई तक इसके 65 दिन लग गए। किस्म है बसंती। एक और किस्म है MH 421, यह भी बहुत बढ़िया किस्म है और इसने खरीफ में भी, बसंत में भी और ग्रीष्मकालीन यानी तीनों मौसमों में उसकी डाल दी, इसका बसंती डाल दी इसका, और यह 60 दिन में पक्कन तैयार हो जाए, यानी बिजाई से लेकर पकाई तक 60 दिन इसमें लग गए हैं। हाँ, इसकी पैदावार हमने जो है 4 से 5 क्विंटल के लगभग 1 एकड़ में मिल रहे हैं। भाई ये तो है किस्में अपनी, इसमें बिजाई करी जा इसके। हाँ, बीज इसमें हमने लेना है 10 से 12 किलो 1 एकड़ का हिसाब, और लाइन तो लाइन का फासला हमने 20 से 25 सेंटीमीटर रखना है। और सिंचाई की बात इसमें ये भाई, अगर मान लिया हम अच्छा पड़ेवा कर दिया है, खूब अच्छी नमी में इसकी बिजाई करा है, तो बिजाई के 20-22 दिन बाद में हमने इसमें क्या करा कि वो देख रहे, एक सिंचाई कर दिया और उसके बाद 10-15 दिन पर सिंचाई कर देंगे तो हमारी यह फसल है बहुत बढ़िया हो जाएगी मूँग की। भाई साथ में इसमें हमने ये ध्यान रखना भाइयों कि भाई जो एक तो इनकी खासियत ये है कि सारी की सारी फलियाँ इनकी एक साथ पकती हैं, और एक साथ पकेंगे तो फिर हमने उसमें तोड़ने में भी और कोई वो दिक्कत नहीं होगी, अच्छी सुविधा रहेगी। और साथ में हमने ये देख लेना है इसमें कि भाई जब हमने उसकी सारी फलियाँ तोड़ ली, उसके बाद यूँ का यूँ हमने उसमें खेत में बा देना है इसका। उससे देखो जिस तरह ये बताया था, एक तो हमने दाने तौर पर दाल मिल जाएगी, दूसरा बात हमने ये है जो हरी खाद है उसका प्रयोग हो जाएगा हमने, सबसे बढ़िया ये तरीका इसका ये है। और भाई इसमें एक और भी बात है, अगर हमें राइजोबियम का टीका लगवा लें तो और भी सबसे बढ़िया हो जाए, एक तो पैदावार उसमें बढ़िया होगी। इसमें एक टीका है यू राइजोबियम का टीका, इसके नाम तो ले लिया हमें, मूँग का नाम तो ले लिया, तो उसकी हमने इसके लगाकर टीका इसमें जो करे, एक टीका 50 मिलीलीटर का हो और 1 एकड़ के बीज के हिसाब में इसमें सही रहे। इसमें खाली बाल्टी में जो कर लें मैं 2 कप जिसमें 200 मिलीलीटर हो जाए पानी में 50 ग्राम गुड़ घोल लें और 1 एकड़ के बीज ने उस गुड़ में दाऊ सन मिलाकर और फिर उसके ऊपर जो यूराइजोबीम कहा है ये उसको बखेर दे और अपने हाथों से उसको मिला दे उसमें आराम से। और एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें, उसको छाया में सुखाएं, जब सही फरकाला हो जाए उसके बाद इसकी बिजाई हम कर लेंगे तो मतलब हमने अच्छी पैदावार दे देगी। और जिस तरह ये भाई इसमें खास कर हमें देखा कि भाई अगर इसमें खाद का प्रयोग करा, खाद का क्योंकि एक तो दलहनी फसल है, इतने ज़्यादा खादों का हमने इसमें प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी भाई कई बार ईशा करें कि भाई जो खाद की है बात आओ तो खाद का उसमें ज़रूर प्रयोग कर दें हमें। तो इसमें हमने कम से कम 15 किलो यूरिया है वो ले रहे हैं और 100 किलोग्राम इसमें सिंगल सुपर फास्फेट्स, ये हमने बिजाई के टाइम पर उसमें खेत में डाल देने हैं और उसके बाद हमने बिजाई कर देनी है। और उसके बाद ज़्यादा खाद इसमें प्रयोग ना करें, खास करें उसमें ये देखा गया कई भाई करें कि भाई यूरिया का ज़्यादा प्रयोग कर लें, नाइट्रोजन का ना उतना उसमें ना करें, क्योंकि एक तो दलहनी फसल है या दलहनी फसल में जितना हो उसके उतना कम से कम करें, बल्कि ये तो इस तरह हुआ कि ज़मीन में अपनी नाइट्रोजन छोड़ जाए अगली फसल के लिए भी ज़रूरत नहीं होती। हाँ, इसमें एक जरूर कर लें बात कर लें कि वह 8 किलो इसमें पोटाश या 14 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश है वो ज़रूर डाल दें इसमें, तो उससे पैदावार में हमने और भी ज़्यादा इजाफा होगा, फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ी बात ये है भाई इसमें अगर देखा जाए तो एक तो जो कीड़े हैं ना, कीड़े बीमारी हैं वो ज़्यादा आ जाए इसमें, एक तो ये है कि जो इसकी जब 70-80% जो फलियाँ पाक जाए ना उस टाइम पर इसकी कटाई कर लें, और फिर ये देखें इसमें जो एक तो हरा तेला है और एक सफ़ेद मक्खी है इसका बहुत ज़्यादा प्रकोप हो जाए हमें, वैसे तो उसमें चाहे खरीफ की में और चाहे इसमें वाली फसल में ज़्यादा प्रकोप हो जाए हरा तेला और सफ़ेद मक्खी का। तो इसकी रोकथाम के लिए हमने क्या करना है कि 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50% ताकत की दवाई है, या फिर हमें 250 मिलीलीटर डाइमोथिएट ले लिया, ये 30% ताकत की दवाई रहेगी, और 250 लीटर पानी में इसका घोल बनाकर छिड़काव कर देंगे तो जो हरा तेला है और सफ़ेद मक्खी है इससे हमारा जो फसल ने है छुटकारा मिल जाएगा और बढ़िया फसल हो जाएगी इसमें।
तो इसमें ये ध्यान रखें। और दवाई का भाइयों ज़रूर ध्यान रखें कि कई बार के हो कि एक तो या तो दुकानदार कह देंगे ले या ले जा ये कर दिया, नहीं वो उन्हीं को जो बताई जा सिफारिश शुदा दवाई है वो ही करें। जिस तरह ये हरा तेल और सफ़ेद मक्खी इसमें 400 मिलीलीटर या तो मेलाथियन ले लें 50% तक की, या फिर आप 250 मिलीलीटर डाइथोमेट ले लें, ये 30% तक की दवाई है। और 250 लीटर पानी में इसका घोल बनाकर हमने छिड़काव कर देना है तो अरिया तेला और सफ़ेद मक्खी इसमें हमारी फसल में नहीं लगेंगे और बढ़िया फसल होगी। बात इसमें और भी कराएंगे समय रह गया तो, और रागनी की एक और की बात करी तो एक रागनी और सुनवा दें। गायक कलाकार एक बार फिर आजाद सिंह खंडा खेड़ी और उनके साथी।

भजन ने रागनी सुनी, गायक कलाकार थे आज़ाद सिंह खंडा खेड़ी और उनके साथी, और जिक्र कर रहे थे भाई बसंतकालीन मूंग की काश्त पे। तो भाई इसमें एक चीज़ आपने ये देखा कि भाई जो गर्मी के लिए हम कर रहे हैं ग्रीष्मकालीन के लिए, तो इसमें बात हमने ये रखनी है, एक तो दो किस्में हैं, एक तो बसंती है और दूसरी है MH 421, इनमें से कौन सी एक किस्म ले ले। हाँ, बसंती तो 65 दिन लेती है पकने में और ये MH 421 है ये 60 दिन लेती है पकड़ में। और हाँ, इसकी पैदावार थोड़ी कम है, 4 से 5 क्विंटल और उसकी 5 से 6 क्विंटल है बसंती की, और 10 से 12 किलो इसमें बीज लगेगा, हम नो कर देना। हाँ, इसमें देख चीज़ तो ज़रूर है कि जो एक दो कीड़ा आ सके उस कीड़े से हमने बचाव करना है। जैसे भाई इसमें अरेत तेला है और सफ़ेद मक्खी है, ये आ जाए और फिर काफ़ी नुकसान कर दे। भाई इसमें हमने लेना है 400 मिलीलीटर मेलाथियन है 50% ताकत की दवाई ले लें, और या फिर हमें 250 मिलीलीटर डाइमोथेट है ये 30% ताकत की दवाई है, और 250 लीटर पानी में इसका घोल बनाकर छिड़काव कर देना है। और भाई ये दोहरा काम कर रहा है, देखो एक तो हमने दाना भी मिल गया है और दूसरा ये हरी खाद का काम कर दिया है, यानी हमने इसका बहुत ज़्यादा फायदा है। भाई इसका प्रयोग कर लें तो एक ज़मीन में इसमें पैदावार में असर भी खूब ज़्यादा पड़ेगा। और भाइयों ईव घड़ी के ना देख लो, कार्यक्रम का समय हो रहा है समाप्त। अशोक भाई ने जजदो, सारे बन भाइयों ने राम राम।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया आरोप फिल्म का ये गीत आपने सुना। लिखा था माया गोविंद ने, संगीत से संवारा था भूपेन हजारिका ने। अगला गीत आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में गाया हुआ, स्वर्ग नर्क फिल्म का नाम है। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीतकार हैं राजेश रोशन।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत कार्यक्रम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें, इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:12 हुए हैं। अब हमारी आज की विशेष सभा आरंभ होती है। लीजिए सुनिए माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में पद्म पुरस्कार वितरण व संबोधन का सीधा प्रसारण, जिसे दिल्ली केंद्र से लिया किया जा रहा है।
1: नमस्कार, राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप से मैं महेंद्र सिंह लालस अपनी साथी कमेंटेटर लालिमा अनेजा डैंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज यहां 66 विभूतियों को पद्म अलंकरण प्रदान करेंगी, जिनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री शामिल हैं। नागरिक अलंकरण समारोहों का ये पहला चरण है और दूसरे चरण में शेष रहे पद्म अलंकरण प्रदान किए जाएंगे। अभी हमारे बीच माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, लोकसभा अध्यक्ष, माननीय गृह मंत्री जी, ये तमाम अतिथि आ चुके हैं और कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पधारेंगी। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू।
2: नमस्कार एंड अ वार्म वेलकम टू पार्ट 1 ऑफ द सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी as we broadcast from the Ganatantra Bhavan at Rashtrapati Bhavan in the august presence of dignitaries and the proud recipients of the prestigious awards and their family members. And friends, today is the day when Padma Awards, the highest civilian awards of the country, shall be presented by the first citizen of the country, Honorable President Srimati Draupadi Murmuji. The awards are given in various disciplines like art, social work, public affairs, science and engineering, trade and industry, medicine, literature and education, sports, civil services, etc. Padma Vibhushan is awarded for exceptional and distinguished service, and Padma Shri and Padma Bhushan is for distinguished service of high order, and Padma Shri is for distinguished service in any field. Friends, the awards are announced on Republic Day every year.
1: इस वक्त राष्ट्रपति जी का यहाँ पर इंतजार। हम ये बता दें कि राष्ट्रपति भवन का ये ऐतिहासिक गणतंत्र मंडप, जहाँ पर 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट ने शपथ ली थी, ठीक यहाँ पर राष्ट्रपति जी के आसन के ठीक पीछे 5वीं शताब्दी की मथुरा की ऐतिहासिक बुद्ध की प्रतिमा, जो कि गंधार शैली में बनी है, और ठीक बीच में यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर शैंडिलियर और इसके ठीक ऊपर सांची के स्तूप से प्रेरित गुंबद और 12 बहुत ही सुंदर जैसलमेरी पत्थर के बने स्तंभ। और अब पधार रही हैं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र मंडप में।

0: राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान प्रस्तुत किया था महार रेजिमेंट सेंटर सागर के बैंड ने। सुबेदार पीवी गुरुंग इसका कर रहे थे।
1: माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो पद्म पुरस्कार 2026 के अलंकरण समारोह की कार्रवाई आरंभ की जाए।
0: राष्ट्रपति जी ने कार्यक्रम शुरू करने की स्वीकृति दी। उन्होंने सुनहरे रंग की फिरोजी रंग के बॉर्डर वाली साड़ी पहनी है और मंच पर आसीन। अब कुछ ही पलों में प्रस्तुतीकरण शुरू होने वाला है।
1: श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय, उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: सबसे पहले महान अभिनेता हीमन के नाम से मशहूर, जिन्होंने 6 दशक तक कैरियर रखा है, 300 से भी ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। 86 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी पद्म विभूषण प्राप्त करने जाती हुई।
2: श्री धर्मेंद्र सर्व्ड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द 14th लोकसभा रिप्रेजेंटिंग द बीकानेर कॉन्स्टिट्यूएंसी इन राजस्थान फ्रॉम 2004 to 2009। And he was known for his emotional bond with his constituents.
1: Dr. Shrimati N. Rajam, Kala Violin.
0: 87 वर्षीय Dr. Shrimati N. Rajam भारतीय शास्त्रीय संगीत की पहचान है और वायलिन के क्षेत्र में एक अनूठा नाम है। आप एर्नाकुलम में जन्मी थी और पंडित ओंकारनाथ ठाकुर से आपने वायलिन की शिक्षा प्राप्त की।
2: Beyond her illustrious performing career, Dr. Rajam served with distinction as a professor in the Faculty of Performing Arts at the Banaras Hindu University for nearly 4 decades and rose to become the head of department and subsequently dean of faculty, earning the prestigious title of Emeritus Professor by BHU.
1: Padma Bhushan, Shatavdhani Dr. R. Ganesh, Kala Avdhan.
0: अवधान के विशेषज्ञ 64 वर्षीय शतावधानी डॉक्टर आर गणेश कलम और कागज की किसी भी सहायता से, उसकी सहायता के बिना छंद लिखते हैं और इन्होंने 1300 से ज्यादा अष्टावधान और 5 शतावधान लिखे हैं और 70 से ज्यादा पुस्तकें भी।
2: डॉक्टर आर गणेश इज आल्सो अ प्रोलिफिक ऑथर हैविंग मोर देन 70 बुक्स टू हिज क्रेडिट।
1: भगत सिंह कोश्यारी लोक कार्य।
0: भगत सिंह कोश्यारी, जिन्हें भगत दा के नाम से जाना जाता है, आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं 74 वर्षीय और लोक सेवा का अनूठा काम किया है, राष्ट्रवादी नेता हैं।
2: श्री कोश्यारी स्टार्टेड टीचिंग एट सरस्वती शिशु मंदिर कासगंज उत्तर प्रदेश, वेयर ही वर्क्स टू इम्पार्ट भारतीय वैल्यूज अलोंग विद मॉडर्न एजुकेशन टू यंग चिल्ड्रन।
1: श्री उदय सुरेश कुमार कोटक, व्यापार एवं उद्योग।
0: 67 वर्षीय कोटक, आपने कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड से शुरुआत की और आज कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड जैसा एक बड़ा आयोजन इन्होंने किया है।
2: श्री कोटक हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिफाइनिंग एंड डेवलपिंग इंडियाज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर ओवर 4 decades एंड ही लीड्स सेवरल की बॉडीज सर्विंग एज को चेयरमैन ऑफ द इंडो-यूके फाइनेंशियल पार्टनरशिप।
1: कुमार मल्होत्रा मरणोपरांत लोक कार्य, उनके पुत्र श्री अजय कुमार मल्होत्रा।
0: बीते 30 सितंबर 2025 को श्री मल्होत्रा का निधन जरूर हो गया था, लेकिन आप एक खेल प्रशासक थे और एक राजनीतिज्ञ और अकादमिक भी थे। उनके बिहाफ पर अजय कुमार मल्होत्रा पद्म भूषण प्राप्त करते।
2: A pioneer in sports, Professor Malhotra served over 40 years as the president of Archery Association of India.
1: Ramaswamy Palniswamy, चिकित्सा गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी।
0: 77 वर्षीय डॉक्टर पलनी स्वामी देश के प्रतिष्ठित गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं। आपने 2007 में पद्मश्री सम्मान भी प्राप्त किया था।
2: He also served as president of the Society for Gastrointestinal Endoscopy of India, where he initiated a task force to form guidelines.
1: श्री पीयूष पांडे मरणोपरांत कला विज्ञापन, उनकी पत्नी श्रीमती नीता जोशी।
0: पीयूष पांडे, कौन नहीं जानता उन्हें, विज्ञापन की दुनिया में एक अनूठा नाम। 70 वर्ष की उम्र में 24 अक्टूबर 2025 को इनका निधन हो गया। नीता जोशी उनके बिहाफ पर ये पुरस्कार प्राप्त करती हैं।
2: श्री पांडे वाज नेम्ड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एडवर्टाइजिंग मैन इन इंडिया बाय द इकोनॉमिक टाइम्स।
1: श्री

0: विश्व बंधु मरणोपरांत कला लोक नृत्य, उनकी पत्नी श्रीमती इंदु देवी।
1: विश्व बंधु जी लोक कला के एक बड़े अनूठे हस्ताक्षर थे और बिहार में लोक कलाओं की, खास तौर पर लोक नृत्यों की बहुत सेवा की। 95 वर्ष की उम्र में आपका निधन जरूर हो गया, लेकिन राष्ट्र आज कर रहा है उनका सम्मान पद्मश्री देकर मरणोपरांत।
2: Shri Vishwabandhu was the founder of Surangan, one of Bihar's most respected cultural institutions, and remained so over 6 decades.
0: Shri Bharat Singh Bharti, Kala Lok Gayan.
1: Bharat Singh Bharti, 90 वर्ष की उम्र में भी आप सांस्कृतिक विरासत और खास तौर पर भोजपुरी गायन और भोजपुरी लोक शैलियों का अभी भी संरक्षण कर रहे हैं। आपने गुलाबी रंग का जैकेट पहना हुआ है, सबका अभिवादन करते हुए और राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए गुरुजी का इन्हें संबोधन दिया जाता है।
2: श्री भरत सिंह भारती रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द सागर फेस्टिवल इन मॉरिशस इन 1987 व्हेयर हिज एल्बम पुरबियातान वाज रिलीज्ड। He has also guided a new generation of artists as a judge and mentor.
0: Shri Tagaram Bhil Kala Algoza Vadan.
1: Jaisalmer ki Tagaram Bhil Algoza bajate hain, kitna sundar saaz jo ki sheesham aur kair ki sukhi lakdi se bana hota hai. Inhone Jaisalmeri pattu pehna hai aur upar Jaisalmeri safa chundri ka.
2: Shri Tagaram is the recipient of numerous awards and honors and appreciation certificates. He has received a Maharawal Girdhar Award in 2013 by Maharawal Girdhar Trust Jaisalmer and many, many other awards. He got many opportunities.
0: Harmanpreet Kaur Bhullar, Khel Cricket.
1: Kaun nahi janta Harmanpreet Kaur ko, jinhone राष्ट्र के लिए विश्व कप की ट्रॉफी उठाई थी। 37 वर्षीय हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान, सुनहरे रंग का परिधान पहना हुआ राष्ट्रपति जी के सामने जाकर अपना पद्मश्री स्वीकार करती हुई।
2: Her achievements have not only strengthened India's presence in international cricket but have also contributed significantly to the growth.
0: श्री रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर, साहित्य एवं शिक्षा।
1: 88 साल के हैं रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर और गुजरात में कितने ही बच्चों के चेहरों पर इन्होंने मुस्कान पैदा की है, क्योंकि ये कॉमिक्स और हास्य लेखन के लिए मशहूर हैं।
2: Yes, he has received many awards and honors, and after 36 years his students have established a foundation in 2011 for literary and educational activities. He's also written a biography, Raman Bhai Neelkant.
0: Shri Kumar Bose Kala Tabla.
1: Kumar Bose तबले में एक बहुत बड़ा नाम है। आप 4 अप्रैल 1954 को जन्मे थे और पिता विश्वनाथ बोस से सीखा, लेकिन बाद में ये पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज के भी शागिर्द रहे।
2: Shri Bose's quiet dignity, ethical integrity and unwavering commitment to classical values have earned him top grade status in All India Radio, the Sangeet Natak Academy Puraskar and Pandit Dinanath Mangeshkar Award, along with immense respect within the artistic community.
0: Shri Janardhan Bapurao Bothe, Samaj Seva.
1: Mashhoor samajik karyakarta hain Bothe ji, 77 saal ke hain. और पूज्य राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज द्वारा स्थापित पवित्र गुरुकुंज आश्रम में आप सेवा दे रहे हैं।
2: श्री बोथे कंपनीड राष्ट्र संत श्री टुकड़ो जी महाराज ऑन सिग्निफिकेंट विजिट्स अक्रॉस इंडिया, इंक्लूडिंग गोवा, राष्ट्रपति भवन, मेजर कुंभ मेलास, साधु सम्मेलन एंड द फाउंडिंग मीटिंग ऑफ संस्था ऑफ द विश्व हिंदू परिषद इन मुंबई। He has also served as full-time personal secretary
0: Swami
2: to Brahmadev
0: Samaj Seva.
1: Swami Brahmadev, 82 साल के हैं आप, श्रद्धे हैं, राजस्थान के श्री गंगानगर से आते हैं और आपने राष्ट्र के कई अंचलों में आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी दिया है और समाज की सेवा भी की है।
2: And during spiritual practice while completing bachelor degree at college in Amritsar, which was adjacent to a blind school, being compassionate with blind children, he decided to dedicate his life for upliftment of specially abled children. Swami Brahmadev.
1: केसरिया रंग का आपने साफा पहना है और केसरिया ही परिधान है। राष्ट्रपति जी के सामने उन्हें अभिवादन करते हुए ये संत पद्मश्री से सम्मानित होता हुआ।
0: श्री प्रोसेनजीत चैटर्जी, कला फिल्म अभिनय।
1: प्रोसेनजीत चैटर्जी इन्हें बूम्बा दा नाम से ज्यादा जानते हैं और भारतीय सिनेमा की एक अनूठी पहचान इन्होंने बनाई है और ख़ास तौर पर बंगाली सिनेमा में आपने बहुत काम किया है और दूसर के लिए आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला है।
2: In the digital era, Shri Chatterjee successfully reinvented himself through Hindi streaming projects like Jubilee, Scoop and Khaki,
0: श्रीमती देवकी अम्मा जी, समाज सेवा।
1: वन उत्पादक हैं आप, 82 साल की हैं लेकिन रुकी नहीं है, वन दादी नाम से जानी जाती हैं। 3,000 से ज़्यादा पेड़ों और स्वदेशी औषधियों और दुर्लभ पौधों की प्रजातियों को बचाने का काम आपने किया है और केरल के अल्लपुआ से आती हैं।
2: श्रीमती देवकी अम्मा relied on traditional knowledge and close observation of soil and climate conditions for growing plant saplings and used mulching, organic manuring from home cattle, careful retention of leaf litter and thoughtful water management. She was also conferred the Nari Shakti Puraskar in 2018.
0: Dr. Ramchand Godbole evam Shrimati Sunita Godbole, Chikitsa.
1: डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और उनके साथ सुनीता गोडबोले, आप एक
0: डॉक्टर
1: सामाजिक कार्यकर्ता हैं, 66 साल के हैं और आदिवासी समुदायों के लिए खास तौर पर छत्तीसगढ़ में आपने बहुत काम किया है।
2: In 1990, soon after their marriage, Dr. Godbole and his wife, Shrimati Sunita Godbole, decided to move to Bastar to serve tribal communities medically.
0: Shrimati Sunita Godbole.
1: ये भी कितना गौरव का क्षण है, उनके साथ आ रही हैं सुनीता गोडबोले। एक साथ दोनों को पद्मश्री मिलता हुआ, आपने भी समाज के लिए बहुत कार्य किया है और ख़ास तौर पर अपने पति डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले के साथ महाराष्ट्र में 12 साल और छत्तीसगढ़ में 30 सालों से आपने सेवा की है।
0: श्री तेची गुबिन, समाज सेवा।
1: अरुणाचल प्रदेश से आते हैं और वास्तुकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपने बहुत ही कार्य किए वहाँ पर और पारंपरिक अरुणाचली परिधान पहनकर जिसमें सिर पर पंख भी है हॉर्नबिल का नमस्कार करते हुए तेची गुबिन 62 वर्षीय पद्मश्री प्राप्त करते हुए।
2: श्री गुबिन ऑर्गेनाइज्ड एंड लेड द सीमांत दर्शन यात्रा इन 2010 एंड 2021 विजिटिंग रिमोट विलेजेस बॉर्डरिंग चाइना, म्यांमार एंड भूटान। He also led a team of delegations to meet the Vice President to report on the security needs.
0: Dr. H.V. Hande, Chikitsa.
1: 99 साल के हैं आप और ध्यान रखिए 99 वर्षों से इस शख्स ने भारत की सेवा की है। मशहूर चिकित्सक हैं और साथ में राजनीतिज्ञ भी हैं, लेकिन इन सब के अलावा डॉक्टर हंडे ने संपूर्ण कंब रामायण जो कि तमिल में है मूल रूप से, उसका अंग्रेजी गद्य में अनुवाद भी किया है। राष्ट्रपति जी के ADC उनका हाथ पकड़ कर ले जाते हुए उन्होंने हल्के हरे रंग का जैकेट पहना है और राष्ट्रपति जी का अभिवादन करते हुए आगे अपना पद्मश्री प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे जाते हुए।
2: While Dr. Hande was the health minister of Tamil Nadu between 1980 and 1986, he brought the state into the first slot consecutively for 3 years in reducing infant mortality rate and maternal mortality rate, in drastically reducing the incidence of leprosy and other communicable diseases. Thereafter, he received the prestigious Dr. B.C. Roy Award.
0: Shri Ghafruddin Mewati Jogi, Kala, Bhapang Vadan.
1: राजस्थान में अलवर से गफरुद्दीन जी आते हैं, इन्होंने राजस्थानी साफा पहना है, नमस्कार करते हुए जाते हुए जोगी परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं और भपंग बजाते हैं, जिसे महादेव का वाद्य कहते हैं, और ख़ास तौर पर महाभारत और कृष्ण लीला अली बख्शी परंपरा जैसी कथाओं का वाचन करते हैं।
2: वेल, थ्रू हिज सस्टेन्ड आर्टिस्टिक प्रैक्टिस, श्री गफरुद्दीन हैज कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द प्रिजर्वेशन ऑफ नियरली 20 इंडेंजर्ड फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड ओरल नैरेटिव ट्रेडिशंस। His work has supported academic research including PhD level studies.
0: Shri Mir Hazi Qasim, Kala Dholak.
1: 75 साल के मीर हाजी कासम, इन्हें हाजी रामकडू नाम से बुलाते हैं, आप जूनागढ़ के एक महान और मशहूर लोक संगीतकार हैं। 75 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन इन्होंने पूरा जीवन गुजरात के पारंपरिक संगीत को समर्पित किया है और ख़ास तौर पर बहुत अच्छी ढोलक बजाते हैं।
2: श्री कासम हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन कैरिंग गुजराती फोक म्यूजिक टू ग्लोबल ऑडियंसेस, परफॉर्मिंग अक्रॉस कंट्रीज सच एज द यूएसए, यूके, साउथ अफ्रीका, कनाडा, यूएई, ओमान एंड सेवरल अदर्स। He has also received many state-level honors, including the Gujarat Gaurav Puraskar, Gujarat Rajya Sangeet Natak Academy Award, Gujarat Lokala Rashtriya
0: Puraskar. Shri Raghuveer Khedkar, Kala Theatre.
1: रघुवीर खेड़कर को महाराष्ट्र के लोग अच्छी तरह जानते हैं। आप एक मशहूर तमाशा कलाकार हैं और तमाशा की एक मंडली भी चलाते हैं और लोक कला और खास तौर पर मराठी लोक कला को संरक्षित करने के लिए कटिबद्ध हैं।
2: ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक व्हेन पब्लिक परफॉर्मेंसेस हॉल्टेड एंड मेनी आर्टिस्ट फेस्ड हंगर एंड अनएम्प्लॉयमेंट, श्री खेड़कर स्टूड अप एज अ स्टॉन्च एडवोकेट। He led appeals for financial support and leveraged solace and solidarity for folk artists.
0: Shri R. Krishnan Kitna, Marnoprant, Kala Kurumba Tribal Painting, Unki Patni Srimati Sushila Krishnan.
1: R. Krishnan Kitna, जिनका 20 मार्च 2025 को निधन हो गया था, आप तमिलनाडु से आते हैं और बचपन से ही चित्रकारी करते आए थे और दीवारों पर इन्होंने बहुत चित्र बनाए। सुशीला कृष्णन, उनकी पत्नी, पद्मश्री प्राप्त करती हुई।
2: श्री आर कृष्णन कितना इज नोन फॉर यूजिंग नेचुरल पिगमेंट्स इन हिज आर्ट फॉर्म एंड हिज स्किल्स एज अ स्टोरी टेलर। ही इज आल्सो
0: प्रोफेसर डॉक्टर लार्स क्रिश्चियन कोच, कला म्यूजिकोलॉजी।
1: एथनोम्यूजिकोलॉजिस्ट हैं आप, बंगाल से प्रेम करते हैं और ख़ास तौर पर गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ इनका एक आत्मिक संबंध है। बॉन में टैगोर इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाई की और शांति निकेतन पश्चिम बंगाल से भी जुड़े रहे।
2: प्रोफेसर कोच इज डायरेक्टर ऑफ द स्टेट एथनोग्राफिक कलेक्शंस इन द स्टेट आर्ट कलेक्शंस सैक्सोनिया इन ड्रेसडन जर्मनी सिंस अक्टूबर 2025।
0: प्रोफेसर मामीडाला जगदीश कुमार, साहित्य एवं शिक्षा।
1: 66 वर्षीय जगदीश कुमार, आपने एनसीईआरटी में बहुत काम किया है, सुप्रसिद्ध शिक्षाविद है और राष्ट्र की जो शिक्षा नीति है उसमें भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
2: वेल, प्रोफेसर मामीडाला जगदीश कुमार फ्रेम्ड एंड ऑपरेशनलाइज्ड मॉडल्स अंडर एनईपी 2020 एंड द 4-year अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम विद फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर and the academic bank of credits.
0: Shri
2: as well.
0: Praveen Kumar, Khel Athletics Divyang.
1: Aur ab bari is 23 varshiya khiladi ki T44 unchi kood mein vishv mein aap number 1 hain aur para olympic padak jeetne wale sabse kam umr ke bharatiya para athlete hain Praveen Kumar.
2: Shri Praveen Kumar went on to claim gold at the world para athletics grand Grand Prix with a leap of 2.05 meters, setting an Asian record. At Tokyo Paralympics, he won a silver medal.
0: Shri K. Vijay Kumar, Civil Seva.
1: Vijay Kumar ji, CRPF के पूर्व महानिदेशक रहे हैं और संकटपूर्ण मिशनों में आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
2: As Commissioner of Chennai, Shri K. Vijay Kumar reformed crime control practices, cracked down on organized gangs and enhanced public safety and reduced road fatalities by 40%. As additional DG Law and Order, he strengthened public safety
0: strategies. Shri Devba Lad, Dada Lad, Krishi.
1: देवा लाड किसानी खेती करते हैं और ग्रामीण विकास और स्थायी कृषि और सामाजिक कार्यों में बहुत योगदान दिया है। परभणी जिले के मालसोना गांव में आप जन्म हैं, 79 वर्ष के हैं।
2: श्री रंग देवालार इन्वेंटेड न्यू टेक्नोलॉजी इन कॉटन कल्टीवेशन व्हिच वाज यूज्ड बाय फार्मर्स इन ऑल कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। ही हैड डन रिसर्च वर्क इन जवार एंड तूर एज वेल।
0: श्री अंके गौड़ा एम, समाज सेवा।
1: 77 साल के अंके गौड़ा अब माननीय राष्ट्रपति जी से अपना पद्मश्री प्राप्त करने के लिए जाते हुए आपने अपना पूरा जीवन पुस्तकों के संरक्षण, संग्रह और उसे लोगों तक पहुंचाने में दे दिया है।
2: श्री अंके गौड़ा जी हैज पर्सनली कलेक्टेड मोर देन 20 लाख बुक्स ओवर द लास्ट 50 इयर्स यूजिंग हिज एंटायर पर्सनल अर्निंग्स फॉर दिस पर्पस एंड हिज कलेक्शन इंक्लूड्स बुक्स इन कन्नड़ा, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु एंड सेवरल अदर इंडियन लैंग्वेजेस एंड diverse subjects such as literature, history, art, culture and philosophy.
0: Professor Dr. Saroj Mandal, Chikitsa Cardiology.
1: 69 वर्षीय Dr. Mandal, interventional cardiologist हैं। आपने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश की खूब सेवा की है।
2: Professor Dr. Mandal has served over 6 lakh patients in OPD over 35 years and independently performed and supervised 50,000 coronary angiograms and 50,000 angioplasties.
0: Professor Buddha Rashmi Mani, Puratattva Vigyan.
1: Bharatiya Puratattva Vigyan ke ek mahatvapurna hastakshar Professor Buddha Rashmi Mani, Rashtriya Sangrahalaya ke महानिदेशक भी आप रहे हैं और कहां कहां उत्खनन इन्होंने नहीं किया हमारी सभ्यता के अवशेष खोजने में।
2: While working in the Archaeological Survey of India, Professor Mani conserved about 150 centrally protected monuments in Maharashtra, Goa, Delhi and Jammu and Kashmir and discovered 200 archaeological sites and he directed 20 excavations.
0: Shri Nilesh Vinod Chandra Mandlewala, Samaj Seva.
1: ऑर्गन मैन के रूप में जाने जाते हैं और डोनेट लाइफ संस्थान के रूप में इन्होंने बहुत कार्य किया है, खास तौर पर गुजरात और भारत में शव अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाई है।
2: श्री मांडलेवाला, he has a long term vision that by 2047 no citizen should lose life because of the non availability of organs. For that he has traveled extensively across India.
0: डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र, साहित्य एवं शिक्षा।
1: लुप्त प्राय जनजातीय आवाज़ों को आधुनिक शिक्षा शास्त्र में आपने शामिल किया है और आवाज़ों को संरक्षण करने में 4 दशक से अधिक का समय दिया है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र ने।
2: Internationally, Dr. Mishra has advised Nepal's MLE policy, lectured at China's CAS, Hanyang University, South Korea, Thailand's Mahidol University and Russia's Academy of Sciences.
0: Shrimati Tripti Mukherjee, Kala, कंथा एम्ब्रॉयडरी।
1: कंथा ऐसी कढ़ाई है जो पूरे विश्व में भारत की पहचान है और उसे आगे बढ़ाने में, उसे नए स्वरूप देने में तृप्ति मुखर्जी का बहुत योगदान रहा है।
2: श्रीमती मुखर्जी इज द रेसिपिएंट ऑफ न्यूमरस अवार्ड्स सच एज द नेशनल अवार्ड सर्टिफिकेट इन 2010 एंड शिल्प गुरु अवार्ड इन 2016 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। शी इज आल्सो बीन एक्नॉलेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल by conferring on her the Bangashri Award.
0: Hari Madhav Mukhopadhyay, Kala Theatre, unke putra Shri Krishnendu Mukhopadhyay.
1: आप मशहूर थिएटर निर्देशक, नाटककार और अभिनेता थे। 85 वर्ष की उम्र में 17 मार्च 2025 को आपका निधन हो गया। उनकी बिहाव पर पद्मश्री प्राप्त करने जाती हुई कृष्णेंदु उपाध्याय मुखोपाध्याय।
2: श्री
0: सत्य नारायण नंदलाल नुवाल, व्यापार एवं उद्योग।
1: 74 वर्षीय नुवाल सोलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। आज इन्हें सम्मानित किया जा रहा है पद्मश्री से।
2: Under Shri Nawal's leadership, Solar became the first Indian company to design, develop and manufacture fully weaponized variants of the Nagastra loiter munition, which has
0: Shri
2: been supplied to the Indian
0: Army. Shri K. Pajanivel, Khel, Silambam.
1: Silambam, 5000 साल पुरानी भारतीय मार्शल आर्ट है और युद्ध शस्त्र आधारित पद्धति है। इसे आगे बढ़ा रहे हैं के पजानिवेल।
2: Well, Shri Pajanivel was conferred the Academy Puraskar Award of Sangeet Natak Academy presented by the Honorable President of India in 2023. And he also founded the Mammalan Silambam and Folk Arts Development Club in Pondicherry. He has also trained youths who were interested in Silambam.
0: Shri Dharmik Lal Chunilal Pandya, Kala Man Akhyan. 94

0: स्पर्श के हैं आप, धार्मिक लालचुनीलाल पंड्या, और गुजरात की प्राचीन मान भट्ट मान आख्यान परंपरा के सर्वश्रेष्ठ उस्ताद हैं। आपने पगड़ी पहनी है और व्हील चेयर पर जाते राष्ट्रपति जी खुद अपने आसपास आकर श्री पंड्या का सम्मान।
1: In addition to preserving classical repertoire, Shri Pandya has composed new akhyans on contemporary social themes like water conservation.
2: Shri Kailash Chandra Pant, Sahitya Evam Shiksha.
0: प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक हैं कैलाश चंद्र पंत, मध्य प्रदेश से आते हैं और शुरू से ही पत्रकारिता और खास तौर पर निष्पक्ष पत्रकारिता में आपने अपना अनूठा नाम बनाया है।
1: In 1977, Shri Kailash Chandra Pant launched weekly Jan Dharam from November 1980s as secretary of Madhya Pradesh Rashtra Bhasha Prachar Samiti. He revitalized Hindi Bhavan and upgraded the quarterly literary magazine Akshara.
0: Rashtrapati ji swayam ek seedhi utar kar niche aati hui aur Pant ji jo ki 90 saal ke hain unka samman karti hui aur ye kartal dhwani is baat ka prateek ki rashtra ऐसे सेवकों का ऋणी है।
1: His work earned him the विश्व हिंदी सम्मान।
2: श्री गरी मेला बाल कृष्ण प्रसाद मरणोपरांत कला गायन, उनके पुत्र श्री गरी मेला अनिला कुमार।
0: अनिला कुमार उनके ब्याह पर लेगी ये पुरस्कार। गली मेला बाल कृष्ण प्रसाद 78 वर्ष की उम्र में ये देह तो छोड़ गए, लेकिन अपने महत्वपूर्ण कार्यों को राष्ट्र के लिए सौंप गए। प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय और भक्ति संगीत गायक थे आप।
1: Over a career spanning six decades, Shri Prasad presented more than 6,000 concerts across India and internationally.
2: Professor Dr. Rajendra Prasad, चिकित्सा ट्यूबरकुलोसिस।
0: 76 वर्षीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक सुप्रसिद्ध चेस्ट फिजिशियन है और क्षय रोग और खास तौर पर क्षय रोगियों की देखभाल और उनकी चिकित्सा में आपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है।
1: प्रोफेसर डॉक्टर प्रसाद वाज द फर्स्ट इन इंडिया टू एस्टैब्लिश द एसोसिएशन ऑफ बीडी स्मोकिंग एंड द यूज ऑफ बायोमास फ्यूल स्मोक विद क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज ट्यूबरकुलोसिस एंड लंग कैंसर। He has worked on 35 research projects and supervised 185 MD, MS and DM.
2: Dr.
1: students.
2: Gunduru Venkat Rao, Chikitsa Gastroenterology.
0: अब एक और चिकित्सक का सम्मान होता हुआ 66 वर्षीय वेंकट राव एक प्रमुख सर्जरी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं और आपने अपनी सर्जरी के जरिए कई लोगों की जान बचाई है।
1: Well, he has performed more than 12,000 complex gastrointestinal surgeries and nearly 16,000 advanced endoscopic procedures. He has also held several important leadership positions.
2: Reddy, कला नृत्य।
0: 60 वर्षीय दीपिका रेड्डी एक मशहूर कलाकार है, कोरियोग्राफर भी हैं और समर्पित गुरु और एक सांस्कृतिक राजदूत भी है। शास्त्रीय नर्तकों की तीन पीढ़ियों से आप ताल्लुक रखती हैं।
1: श्रीमती रेड्डी वाज द फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन ऑफ तेलंगाना संगीत नाटक अकादमी, गवर्निंग काउंसिल मेंबर संगीत नाटक अकादमी दिल्ली एंड हैज रिसीव्ड प्रेस्टिजियस अवार्ड्स लाइक संगीत नाटक अकादमी अवार्ड एंड मेनी मोर।
2: डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी, चिकित्सा ऑन्कोलॉजी।
0: अगले चिकित्सक पद्मश्री प्राप्त करने जा रहे हैं डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी। 67 साल के हैं और आप मशहूर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। इनकी यात्रा क्लिनिकल उत्कृष्टता से कहीं आगे जानी जाती है और हैदराबाद में आपने बहुत कार्य किया है।
1: Well, Dr. Reddy has delivered over 921 CME lectures, authored 112 plus publications and organized numerous international conferences to bring cutting edge technology to Indian practitioners. His advocacy efforts
2: श्री हरिचरण शाइकिया, कला सत्रिया नृत्य।
0: सत्रिया असम की एक सुप्रसिद्ध कला और हरिचरण शाइकिया जी जो कि 94 वर्ष के हैं व्हील चेयर पर जाते हुए आपने इस कला का न सिर्फ संरक्षण किया है बल्कि इसे लोगों तक भी पहुंचाया है और बहुत सारे लोगों को सत्रिय कला का प्रशिक्षण भी दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी उनको नमस्कार करते हुए आगे जाते हुए राष्ट्रपति जी आकर उन्हें पद्मश्री प्रदान करती हुई।
1: श्री हरिचरण साइकिया परफॉर्म सत्रिया डांस बिफोर इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर second president, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, also. He performed the Bhargeet with Maniram Gayan Mokhtar at All India Radio in 1948.
2: Professor Vempati Kutumb Shastri.
0: 86 साल के शास्त्री जी
2: साहित्य एवं शिक्षा
0: विद्वानों में से हैं आपने अद्वैत वेदांत दर्शन और संस्कृत काव्य शास्त्र में बहुत सारे कार्य किए हैं नमस्कार करते हुए अभिवादन करते हुए अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का और अब मुड़कर अभिवादन करते हुए राष्ट्रपति जी का पद्मश्री प्राप्त करने जाते हुए
1: प्रोफेसर वेम्पटी कुटुंब शास्त्री हैज ऑथर्ड एंड एडिटेड 15 बुक्स एंड मोर देन 50 रिसर्च पेपर्स He has also guided numerous doctoral scholars and delivered hundreds of lectures.
2: Professor Shafi Shauk, Sahitya Evam Shiksha.
0: 100 से ज्यादा किताबें आपने लिखी हैं और कश्मीर से आते हैं और कश्मीरी अंग्रेजी हिंदी और उर्दू सब भाषाओं में आपने खूब लिखा है प्रोफेसर शफी शौक
1: His translations include his series of books under the title The Best of Kashmiri Literature. He has also written scripts for numerous TV serials and films.
2: Shri Baldev Singh Khel, hockey coach.
0: Baldev Singh ji ne bahut sare hockey khiladi is rashtra ko diye hain. Ek anubhavi coach hai aur aaj inhe milta hua Padma Shri aur ye taaliyan is baat ka praman ki unka kitna bada contribution raha hai.
1: Shri Baldev Singh ji is widely recognized for developing the Shahbad Markanda Hockey Nursery into one of India's most productive centers for hockey talent.
2: Shri Yumnam Jatra Singh Marnopran Kala Nat Sankirtan unke putra Shri Yumnam Bishan Bhor Singh
0: aap Manipur ke paramparik Vaishnav nritya aur sangeet ke pratishthit pratipadak the aur बीते वर्ष 11 अक्टूबर को हमारे बीच नहीं रहे सम्मानित होते हुए युमनाम जात्रा सिंह मरणोपरांत
1: His contributions to Nata Sankirtan are timeless. His efforts played a significant role in UNESCO's recognition of Sankirtan as an intangible cultural heritage in 2013.
2: Dr. Ashok Kumar Singh, Vigyan Evam Engineering.
0: Ashok ji ne भारत में बासमती चावल की खेती का कायाकल्प करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है और इस कंट्रीब्यूशन के लिए आज राष्ट्र उन्हें सम्मान दे रहा है पद्मश्री का
1: Dr. Singh has guided 34 PhD and 5 MSc students, making substantial contributions to human resource development and mentoring numerous young professionals.
2: Shrimati Shiv Shankari साहित्य एवं शिक्षा
0: अबारी श्रीमती शिवशंकरी जी की आप 1942 में जन्मी हैं और चेन्नई में इन्होंने बहुत कार्य किया और खास तौर पर लेखन में सभी भाषाओं में खासतौर तमिल में बहुत सारा इन्होंने लिखा है 30 से ज्यादा उपन्यास 40 से ज्यादा लघु उपन्यास 100 से ज्यादा लघु कथाएं 16 यात्रा वृत्तांत बहुत लिखा है इन्होंने
1: Shrimati Shivshankari completed her Bachelor of Science degree as a university rank holder, reflecting her early academic excellence. She was also selected as the Woman of the Year 2000 by the International Women's Association. She was also one of the four writers who were recorded in her own voice for the archives of the U.S. Library of Congress.
2: Dr. R. Sridhar, Community Radio.
0: श्रीधर जी आकाशवाणी के उप महानिदेशक रहे और विज्ञान का एक लंबा सीरियल इन्होंने बनाया जो किसी भी देश में बना हुआ सबसे ज्यादा बड़ा सीरियल था विज्ञान सीरियल
1: डॉक्टर श्रीधर इज इन एसोसिएशन विद द नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप द लॉन्गेस्ट रेडियो साइंस सीरियल फॉर चिल्ड्रन टाइटल्ड द ह्यूमन एवोल्यूशन Manav Ka Vikas, broadcast in 18 Indian languages simultaneously through 200 radio stations. He has also played a central role in launching Gyan Darshan group of channels, the first 24-hour educational television channel.
2: Professor Shyam Sundar, Chikitsa Kalazar.
0: Aap Kashi Hindu Vishwavidyalay ke Institute of Medical Sciences mein medicine ke manak professor hain. संक्रामक रोगों खास तौर पर विसरल लिशमैनियासिस काला आजार में आपने बहुत कार्य किया है।
1: प्रोफेसर सुंदर इज रैंक्ड एट द टॉप इन द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ लिशमैनियासिस एंड काला आजार फ्रॉम द ईयर 2013 टू डेट। He has published extensively in academic journals, including NEJM and
2: Dr.
1: The Lancet, etc.
2: Dr. S. G. Sushil Amma, Samaj Seva.
0: 24 मई 1939 को आप कर्नाटक में जन्मी हैं और प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता और ख़ास तौर पर अपने सेवा आश्रम के जरिए बहुत समाज सेवा का आपने कार्य किया है। 5 दशक कोई कम समय नहीं होता लालिमा जी, 5 दशक से ज़्यादा इन्होंने समाज सेवा की है और अब हाथ पकड़कर आगे जाती हुई और सफ़ेद साड़ी इन्होंने पहनी है और झुककर अभिवादन करती हुई माननीय गृह मंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का और अब माननीय राष्ट्रपति जी का अभिवादन करती हुई।
1: Dr. Sushil Amma has also implemented extensive rural development and women empowerment programs across Karnataka, including adult literacy campaigns, formation of self-help groups and Mahila Mandals, and vocational and entrepreneurship training, microcredit initiatives, and panchayat leadership development. She has also worked closely with tribal communities through sustainable agriculture and livelihood projects.
2: श्री एन स्वामीनाथन कला भक्ति संगीत।
0: तंजावूर से आते हैं और तमिल संगीत के क्षेत्र के प्रतिष्ठित कलाकार हैं और आपने तमिल भाषा में भगवान शिव के भजनों का पारंपरिक एक प्रामाणिक भजन संग्रह भी निकाला है।
1: He became a master of the art and served as Othuvar in many temples of Tamil Nadu and later worked at Thiruthani Lord Murugan Temple for nearly 26 years. He has served as a teacher in VS Trust, a charitable trust to Lord Nataraja Temple in Chidambaram.
2: Dr. Keval Krishna Thakral, Chikitsa Ayurveda.
0: Dr. Thakral, Ayurvedic Paddhati ke Shalya Chikitsak hain aur Bharat mein ek Kshar Sutra Chikitsa ke madhyam se कई रोगों के उपचार और खासकर ब्रोंकियल अस्थमा के उपचार के लिए इन्होंने एक लघु शल्य प्रक्रिया कर्म वेदन भी आगे बढ़ाई है।
1: डॉक्टर केवल कृष्ण ठकराल मूव टू सैन फ्रांसिस्को यूएसए इन 1976 एज अ रिसर्च सर्जन। ही हैज बीन इनवाइटेड टू ओवर 80 सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस टू शेयर हिज नॉलेज एंड हिज प्रोफाइल हैज बीन पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस आल्सो।
2: डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी मरणोपरांत विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, उनके पुत्र श्री रमन कुमार त्रिवेदी।
0: ज्यादा दिन नहीं हुए, 12 मई को ही आपका निधन हो गया था। डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी एक कृषि वैज्ञानिक थे और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रह चुके हैं, पुरस्कार प्राप्त करते हुए इनके पुत्र रमन कुमार त्रिवेदी।
1: Dr. Trivedi, since the last 5 years, on the principle of Think Global, Act Local, initiated a program to increase the productivity of maize.
2: Shri Arvind Vaidya, Kala Theatre.
0: Varishth kalakar hain aur 6 dashakon se zyada samay se aapne Gujarati rangmanch, Hindi television aur filmon ke kshetr mein kaam kiya hai.
1: Shri Vaidya
0: kaale rang ka jodhpuri suit pehna hua.
1: Shri Vaidya founded the Natya Sampada, his own production company, through which he produced, directed and acted in more than 75 full-length plays. Each work carried the quiet weight of dedication, gathering recognition along the way. In 1993, Mumbai beckoned him and opened a wider horizon. He's multilingual and
2: Professor
1: very adaptable.
2: Juzar Vasi, Vigyan Evam Engineering.
0: Professor Juzar Vasi, IIT बॉम्बे में प्रोफेसर एमेरिटस हैं और आपने माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर और सोलर फोटोवोल्टिक्स क्षेत्रों में बहुत कार्य किया है।
1: प्रोफेसर वासी थ्रू आउट हिज करियर इन बोथ सेमीकंडक्टर्स एंड सोलर फोटोवोल्टिक्स ही स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेटिव एंड इंक्लूसिव रिसर्च व्हिच ही थॉट वाज नेसेसरी स्पेशली ऑन मेजर नेशनल मिशंस। He has published about 200 papers in leading journals
2: and conferences. Dr. Narayan Vyas, Puratattva Vigyan.
0: डॉक्टर नारायण व्यास विश्व के सुप्रसिद्ध पुरातत्वविदों में से एक है। खास तौर पर मध्य प्रदेश में भीमबेटका और सांची और गुजरात के रानी जीरी वाव सीढ़ी कुआं के योगदान में आपने बहुत ही योगदान दिया है।
1: Dr. Vyas was associated with the National Archives of Indian Historical Record Committee, domain expert member in National Screening and Evaluation Committee. He was awarded the prestigious Dr. Vishnu Sridhar Vakankar Award from the government of Madhya Pradesh in
2: 2019. Professor Gambhir Singh Yonzan, Sahitya Evam Shiksha.
0: Gambhir Singh Ji, Darjeeling पहाड़ियों के एक प्रतिष्ठित वनस्पति शास्त्री शिक्षाविद पर्यावरणविद और संस्थान के निर्माता हैं और खास तौर पर वनस्पति विज्ञान में आपने बहुत कार्य किया है।
1: प्रोफेसर योनजोन्स कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशनल एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट ऑफ दार्जिलिंग हिल रीजन आर पायनियरिंग एंड फार रीचिंग अ पैशनेट एडवोकेट ऑफ साइंटिफिक टेंपर एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस ही लेड अ सिक्स ईयर कंजर्वेशन मूवमेंट That was a huge, huge success.
2: Shri Halley War, Samaj Seva.
0: अब बारी हैली वार जी की। आप पर्यावरणविद और खासी लोगों के स्वदेशी ज्ञान के लिए एक प्रतिष्ठित नाम हैं।
1: Shri War has spent more than 50 years nurturing and building the iconic living route bridges of the East Khasi Hills. Since the age of 10, he has meticulously guided the aerial roots of the Ficus elastica tree to create durable living structures. His most celebrated work, the Omkar Living Root Bridge, stands as a testament to his patience and profound understanding of natural ecosystems.
0: और अब सचिव महोदय आते हुए, क्योंकि ये अंतिम सम्मान था आज का, और
2: राष्ट्रपति महोदय आपकी आज्ञा हो तो समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। धन्यवाद महोदय।

0: and we can see everybody's standing.
1: राष्ट्रपति जी इस वक्त धीरे धीरे दरबार इस गणतंत्र मंडप से प्रस्थान करती हुई सबका अभिवादन करती हुई उनके ठीक पीछे उपराष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी अभिवादन करते हुए ठीक पीछे अमित शाह जी और मनसुख मांडविया जी ये तमाम और अब आ रहे हैं ओम बिरला जी पीछे श्री वेंकैया नायडू जी तमाम गणमान्य अतिथि धीरे धीरे सबका अभिवादन करते हुए गणतंत्र मंडप से बाहर जाते हुए
0: And there is a palpable excitement in the hall, which was jam-packed with the awardees and their relatives who had come to receive the prestigious Padma Awards. It is indeed a moment of pride.
2: So please, may I have attention, please? I request all the award winners to move towards your right side. Second part of the ceremony.
1: Akashwani se uska aankhon dekha haal bhi sunna na bhoolein. तकनीकी टीम के सदस्य थे अशोक कुमार मिश्र कमल सिंह और हेमराज मीणा ओबी इंचार्ज हमारे साथ तुषार पराशर और इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर प्रमोद कुमार मैं महेंद्र सिंह लालस अपनी साथी कमेंटेटर लालिमा अनेजा डैंग के साथ अब आपको लिए चलता हूं आकाशवाणी के स्टूडियो वापस नमस्कार
3: अभी आप राष्ट्रपति भवन से भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित हुए नागरिक अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन रहे थे विवरण दे रहे थे महेंद्र सिंह लालस और लालिमा अनेजा ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया
4: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है लीजिए सुनिए ये गीत

0: फूल है खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो, हे हम सारे हैं भारतवासी, सब हैं भाई भाई में।
1: वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी शाम के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। ये समाचार दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कार सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद घरेलू विकास को सुरक्षित रखने के लिए भारत की नीतिगत प्रतिक्रिया को सावधानीपूर्वक संतुलित किया गया है। सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
3: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। LPG घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
2: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है। श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय खाड़ी क्षेत्र में बड़ी संख्या में मौजूद अपने नाविक समुदायों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को मनोरंजन और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े संस्थानों में बाल श्रम और ज्यादा सख्त रोक लगाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ऑर्केस्ट्रा, डांस बार, मसाज पार्लर, स्पा और सैलून में काम करने या परफॉर्म करने पर रोक लगाने के निर्देश दिए जाने की मांग की है। शीर्ष न्यायालय ने इस स्थिति को गंभीर मुद्दा बताते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को निर्देश दिया कि वह ऐसे संस्थानों में काम करने वाले बच्चों को बचाने और उनके पुनर्वास के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करें। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय खेल प्राधिकरण अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा समूह के अध्यक्ष डॉ. शिल्पी साहू के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने बताया कि उन्होंने आधारभूत शिक्षा को मजबूत करने, शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख बनाने और भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर चर्चा की। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में तुहिन सिन्हा के पुस्तक नक्सल आतंक पर विजय का विमोचन किया। इस अवसर पर श्री शेखावत ने नक्सली हिंसा के विरुद्ध लंबे संघर्ष पर प्रकाश डाला और इसे समाप्त करने में सुरक्षा बलों और सरकार की सराहना की। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता आज से नॉर्वे के ओस्लो में शुरू हो रही है। टूर्नामेंट भारतीय समयानुसार 8:30 से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मिणवीव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले आज के शेष कार्यक्रम पब्लिक स्पीक सुनेगा रात 9:30 बजे, जिसे चंडीगढ़ केंद्र से ले जिसे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। साप्ताहिक समीक्षा 6:30 बजे आप सुनेंगे, जिसे चंडीगढ़ केंद्र से रिले किया जाएगा। 6:20 पर कृषि जगत कार्यक्रम में डॉक्टर राजू शर्मा से बातचीत का विषय रहेगा गर्मी के मौसम में मुर्गी घरों की देखभाल। 7:00 बजे ग्रामीण संसार कार्यक्रम में आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम चौपाल। 10:00 बजे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आप सुनेंगे SG रॉय चौधरी का सरोद पर बजाया राग यमन। फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे 7:30 बजे और आपकी फरमाइशी मन चाहे गीतों का कार्यक्रम का समय रहेगा 10:30 बजे का। एक फिल्म से कार्यक्रम सुनेगा 9:15 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम का समय रहेगा 8:25 का। ये थे हमारे आज के शेष कार्यक्रम और अब कल के कुछ प्रमुख आकर्षण। कल सुबह 6:50 पर कृषि की बातों में जानकारी दी जाएगी बेल वाली सब्जी फसलों की देखभाल विषय पर। विविधा कार्यक्रम में कल सुबह 7:15 पर आप सुनेंगे खेल वार्ता, वार्ताकार होंगे अमित कपूर। कल सुबह 7:25 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुबह सवेरे। प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा कल दोपहर 12:30 और 5:45 पर। युवा संसार कार्यक्रम का समय रहेगा 5:30 का। कल 6:20 पर कृषि जगत कार्यक्रम में डॉक्टर कुलदीप से बातचीत का विषय रहेगा वर्षाकालीन भिंडी की काश्त। इसके अलावा 7:00 बजे ग्रामीण संसार कार्यक्रम में डॉक्टर पवन कुमार से बातचीत का विषय रहेगा बच्चों में टीकाकरण क्यों आवश्यक। थारी पसंद इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे कल 9:30 बजे। फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे कल सुबह 9:00 बजे और 7:30 बजे। आपकी फरमाइशों और पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मन चाहे गीतों का समय रहेगा 10:00 बजे का। चित्रपट संगीत आप सुनेंगे कल दोपहर 1:10 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा कल 8:25

0: अभी आप सुन रही थी गुमशुदा व्यक्ति के बारे में सूचना। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है।
1: हो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है?
3: लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
4: आरबीआई कहता है,
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
7: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
6: और लाइट बिल के,
7: अब 0 रुपए कैसे दूं?
6: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
7: पक्का।
8: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य
0: घर। आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। इस चुटकी घड़ी में शाम के 6:10 हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिन्हें चंडी।
9: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 66 पद्म पुरस्कार प्रदान किए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली दौरे के दौरान महिला पत्रकारों के साथ हरियाणा की नीतियों व मीडिया से जुड़े विभिन्न विषयों पर संवाद किए। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ईंधन बचत का आह्वान देश हित में है, इससे विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होगा। श्री मनोहर लाल ने भिवानी के गांव पुर में बहुउद्देशीय हॉल व पुस्तकालय का शिलान्यास किया। 104 बेटियों को निःशुल्क साइकिल प्रदान किए। देश में LPG का उत्पादन बढ़ाकर 50,000 टन प्रतिदिन किया गया। कुरुक्षेत्र के नागरिक अस्पताल में रोबोटिक तकनीक से घुटना प्रत्यारोपण सर्जरी शुरू हुई और पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में भीषण गर्मी के साथ लू का प्रकोप जारी। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में पहले नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है, जिन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। आज 2026 के पहले नागरिक अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति ने 66 पद्म पुरस्कार प्रदान किए, जिनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री शामिल हैं। शेष पद्म पुरस्कार बाद में आयोजित होने वाले नागरिक अलंकरण समारोह के दूसरे चरण में दिए जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज अपने दिल्ली दौरे के दौरान हरियाणा भवन में महिला पत्रकारों के कार्यक्रम में शिरकत की और राज्य की नीतियों और मीडिया से जुड़े विभिन्न विषयों पर संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कल्याणकारी कामों के लिए कई तरह की पहल करती है। जैसे जैसे समय बदल रहा है, लोग ज्यादा समझदार और आधुनिक होते जा रहे हैं। जब भी कहीं कोई घटना या विकास होता है तो वह तुरंत मोबाइल फोन पर दिखाई देने लगता है। दूसरी तरफ कुछ लोग जिनके मन में कोई गलत इरादा या अपना स्वार्थ होता है, वे अक्सर सोशल मीडिया पर झूठी बातें फैलाते हैं। इससे न सिर्फ नुकसान होता है बल्कि लोगों का भरोसा भी कम होता है। इससे कई तरह की समस्याएं और चुनौतियां सामने आती हैं। श्री राहुल गांधी के कथित तौर पर गुमराह करने वाले बयानों को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधान को खतरा बताकर लोगों को गुमराह करती है, पर देश का नागरिक अब सब समझता है।
10: विपक्ष की भूमिका है दुर्भाग्यपूर्ण है, देश समझ रहा। क्या वो अपना कार्यकाल भूल दे? 1975 में क्या संविधान को खतरा नहीं था? 1980 के अंदर जो कत्लेआम हुआ, क्या उसके अंदर संविधान को खतरा नहीं हुआ? इनके समय में क्या क्या हुआ? कितने बार अमेंडमेंट किया गया, अपने स्वार्थ के लिए किया गया। जब देश के अंदर जो सबसे पहला जीप घोटाला हुआ था, क्या उस वक्त संविधान खतरे में नहीं आया था? जब अगस्त हेलीकॉप्टर का घोटाला हुआ तो उस समय संविधान खतरे में नहीं था? ये मेरे ख्याल से कोई राहुल को
9: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ईंधन बचत का आह्वान देश हित में है। वे आज जींद जिले के गांव बीबीपुर में सेल्फी विद डॉटर अभियान के जनक एवं पूर्व सरपंच सुनील जागलान से परिवार से भेंट के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार

0: सरकार ने हर स्तर पर ईंधन बचाने के प्रयास शुरू किए हैं।
1: ये अभियान देश के हित में है, या आखिर हम तो एक ही गाड़ी पर चलना होता है। ये बात अलग है कि पुलिस का अपना दायित्व होता है, वो हमारे साथ एक गाड़ी आके लगा लेते हैं, वरना तो अगर अकेली गाड़ी में हम चले तो हमें दिक्कत नहीं है। कॉल है उस नाते से प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी गाड़ियों का काफिला कम कर दिया है, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री ने कम कर दिया है, सब लोग प्रेरणा ले रहे हैं और कुछ दिन बाद लोग भी इसको इस अपील का हल में करने लगेंगे तो बहुत बड़ा असर होगा। हमारी देश की मुद्रा वो बचेगी, देश की जो आर्थिक स्थिति है मजबूत होगी। उन्होंने न केवल तेल के लिए कहा है बल्कि उन्होंने कहा कि सोना भी कम मंगाओ, जो चीजें विदेशी मुद्रा को खपत करती है वो कम की जाए।
0: केंद्रीय मंत्री ने सुनील जागलान के सामाजिक अभियानों की खुलकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सुनील जागलान से उनका वर्षों पुराना संबंध है।
1: सुनील जागलान जी से हमारा बहुत पुराना संबंध है, जब से इन्होंने इस अभियान को चलाया था सेल्फी विद डॉटर, उस समय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान भी मोदी जी के प्रेरणा से देश भर में पहले हरियाणा में शुरू हुआ फिर देश भर में चला, और उसी दौरान उस मुहिम को तेज करने के लिए इनका जो इनिशिएटिव था सेल्फी विद डॉटर, उसने उस अभियान को गति देने में बहुत काम किया। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसका नोटिस लिया और मन की बात में इसका उल्लेख भी उन्होंने कई बार किया।
0: श्री मनोहर लाल ने कहा कि समाज की बुराइयों को खत्म करने के लिए नए और सकारात्मक प्रयास बेहद जरूरी हैं। उन्होंने सुनील जागलान द्वारा चलाए जा रहे गाली बंद घर अभियान की भी सराहना करते हुए कहा कि किसी भी सामाजिक समस्या का समाधान तभी संभव है जब उसका सही विश्लेषण और जागरूकता हो। उल्लेखनीय है कि सुनील जागलान ने अपने सरपंच कार्यकाल में बीबीपुर गांव को देश की पहली हाईटेक पंचायतों में शामिल कराया था। उनके कार्यकाल में महिलाओं की पहली महापंचायत का आयोजन भी बीबीपुर में हुआ था। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने आज कहा कि देश में बिजली की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 21 मई को देश में अधिकतम 271 गीगावाइट बिजली खर्च हुई जबकि उत्पादन 274 गीगावाइट था, इसीलिए बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए अगले वर्ष गर्मियों के सीजन में 300 गीगावाइट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय मंत्री भिवानी के गांव पुर में सर्व कल्याण मंच के कार्यक्रम में 33 गांवों की 104 बेटियों को निशुल्क साइकिल प्रदान करने के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पुर गांव से 90 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार होने वाले बहुउद्देशीय हॉल व पुस्तकालय का शिलान्यास भी किया। केंद्रीय मंत्री ने लोगों से आह्वान किया कि वे ईंधन बचाने के लिए सार्वजनिक वाहनों, रेल, मेट्रो और बसों का प्रयोग करें, गाड़ियों को पूल करके प्रयोग करें ताकि विदेशी तेल पर निर्भरता कम हो। उन्होंने लोगों से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का प्रयोग बढ़ाने और रसोई में भी गैस के बजाय इलेक्ट्रिक उपकरणों का प्रयोग बढ़ाने को कहा। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों के आयात में कमी आएगी तो विदेशी मुद्रा की बचत होगी जिससे देश को ताकत मिलेगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों के सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि देश में LPG का उत्पादन बढ़ाकर 50,000 टन प्रतिदिन कर दिया गया है।
2: रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। LPG घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 196,000 सेल हुए हैं।
0: सुशील शर्मा ने कहा कि इस महीने की शुरुआत से अब तक लगभग 156,000 टन व्यावसायिक LPG की बिक्री हुई है। कुरुक्षेत्र के नागरिक अस्पताल में रोबोटिक तकनीक से घुटना प्रत्यारोपण सर्जरी शुरू हो गई है। हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनु सोनी ने कहा कि नागरिक अस्पताल में रोबोटिक नी ट्रांसप्लांट सर्जरी की शुरुआत होना कुरुक्षेत्र ही नहीं पूरे हरियाणा के लिए बड़ी उपलब्धि है।
1: रोबोटिक नी ट्रांसप्लांट सर्जरी जिसके लिए जो हमें बड़े शहरों दिल्ली NCR में जाना पड़ता था वो आज सिविल हॉस्पिटल में शुरू हो चुकी है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत ही खुशी का दिन है कुरुक्षेत्र वासियों के लिए और सारे हरियाणा के लिए। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी की जा रही है, कोई खर्चा नहीं है, पेशेंट का आयुष्मान कार्ड लेके आना है। रोबोटिक नी ट्रांसप्लांट बहुत ही फायदेमंद सर्जरी रहने वाली है क्योंकि पेशेंट को जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ही छोटे चीरे द्वारा सर्जरी की जाती है, इसमें मिनिमल ब्लड लॉस होता है, पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है।
0: पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भीषण गर्मी के साथ लू का प्रकोप जारी है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन लाल खीचड़ ने कहा कि 29 मई को एक पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ों की तरफ बढ़ने और राजस्थान के ऊपर एक चक्रवात बनने से हरियाणा में ज्यादातर क्षेत्रों में आंशिक बादल छाने, धूल भरी हवाएं चलने और कहीं कहीं गरज चमक के साथ बूंदाबांदी या हल्की बारिश होने की संभावना है।
3: अगले 4 दिनों में मौसम आमतौर पर खुश्क रहने तथा दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने के कारण तापमान में बढ़ोतरी होने की लू चलने की संभावना है, परंतु 29 मई से पश्चिम विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण मौसम में फिर से बदलाव होने। 29 मई रात्रि से 1 जून के दौरान हरियाणा में हवाओं का गरज चमक के साथ कहीं कहीं बूंदाबांदी और हल्की बारिश की संभावना है।
0: और इसी के साथ अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 66 पद्म पुरस्कार प्रदान किए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली दौरे के दौरान महिला पत्रकारों के साथ हरियाणा की नीतियों और मीडिया से जुड़े विभिन्न विषयों पर संवाद किए और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ईंधन बचत का आह्वान देश हित में है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: मीडियन वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ही रोहतक केंद्र है। स्टूड की घड़ी में शाम के 6:20 और 52 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइया ने अशोक भाई जी राम राम भाई। वो गर्मी बहुत तेज़ पड़न लग रही है, बहुत ज़्यादा लू पड़न लग रही है, तो इसमें अपने आप का बचाव करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए जब भी ऐसा करें मैं 10 बजे के बाद या 9 बजे के बाद ये कैसे कहें कि वह धूप में ना निकले और शाम ने 5 या 6 बजे के बाद ही उसमें निकल के, यानी जो भी काम आपने करना अपने खेती से संबंधित है वो 9 बजे से पहले पहले कर लें या फिर शाम 5 बजे के बाद कर लें। और भाइयों आज सोमवार है तो साप्ताहिक समाचार समीक्षा भी आ गई, लेकिन आपका पहले मनोरंजन करवा दें। हाँ, पहले अपने के रागनी सुनवाएंगे गायक कलाकार हैं विक्रम सिंह फोगाट और उनके साथी।

तो भाई ये तो आपने रागनी सुनी, गायक कलाकार थे विक्रम सिंह फोगाट और उनके साथी। और भाइयों जिस तरह बता रहे थे भाई, आज सोमवार है, सोमवार ने आपको साप्ताहिक समाचार समीक्षा सुनवाई जाए, तो उसका बात है साप्ताहिक समाचार समीक्षा की, तो उसमें आपने ये देखना है और बाकी अपने खेत क्यार का काम है जो वो करते रहेंगे, बढ़िया रहेगा। और गर्मी तो जितना बच जाओगे उतना ही बढ़िया है, नहीं तो गर्मी में अगर जमा ले हो गया फिर भारी दिक्कत हो जाए। तो ये समय है वह साप्ताहिक समाचार समीक्षा का, जिसका प्रसारण कर रहे हैं आकाशवाणी चंडीगढ़ केंद्र से। तो सुनो ये साप्ताहिक समाचार समीक्षा।

रशिया में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव आज पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। मध्य एशिया क्षेत्र में अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। वर्तमान परिस्थितियों में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है और वैश्विक बाजार में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देशों में भी इस संकट का प्रभाव दिखाई देने लगा है। पेट्रोलियम उत्पादों के साथ साथ खाद्य वस्तुओं और परिवहन लागत में भी वृद्धि दर्ज की गई है। जब विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इस प्रकार के दबाव का सामना कर रही हैं, तो भारत जैसे विकासशील और विशाल जनसंख्या वाले देश पर इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। भारत के लगभग 140 करोड़ से अधिक आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस वैश्विक संकट के प्रभाव को महसूस कर रही है। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। इसमें भी एक बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। वर्तमान परिस्थितियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने स्थिति को नियंत्रित और संतुलित बनाए रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार लगातार वैश्विक हालात पर नजर बनाए हुए है और ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए बहुस्तरीय रणनीति पर कार्य कर रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है तथा आम जनता को घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी ऊर्जा नीति को अधिक मजबूत और व्यावहारिक बनाया है। पहले भारत मुख्य रूप से खाड़ी देशों पर निर्भर था, लेकिन अब रूस, अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका जैसे देशों से भी तेल आयात बढ़ाया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रियायती दरों पर रूसी कच्चे तेल का आयात बढ़ाकर अपनी ऊर्जा रणनीति को मजबूत किया। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमतों के प्रभाव को नियंत्रित करने में काफी मदद मिली। केंद्र सरकार ने देश के सामरिक पेट्रोलियम भंडार को भी मजबूत किया है। विभिन्न राज्यों में बड़े पैमाने पर तेल भंडारण की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में देश की जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसके अतिरिक्त सरकार लगातार सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के साथ समीक्षा बैठकें कर रही है ताकि आपूर्ति व्यवस्था बाधित न हो। प्रधानमंत्री मोदी ने ऊर्जा आत्मनिर्भरता के साथ साथ सरकारी खर्चों में मितव्ययिता और संसाधनों के संतुलित उपयोग पर भी जोर दिया है। हाल में प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या और अनावश्यक व्यवस्थाओं में कमी किए जाने को भी इसी सोच से जोड़कर देखा जा रहा है। इसका उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखते हुए ईंधन और सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है। ये संदेश भी दिया गया कि वैश्विक संकट और ऊर्जा चुनौतियों के समय सरकार स्वयं भी संयम और जिम्मेदारी का उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने एथेनॉल मिश्रण, ग्रीन हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। आत्मनिर्भर भारत और हरित ऊर्जा मिशन के माध्यम से भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भारत वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर तेजी से आगे बढ़ता है तो भविष्य में इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संकटों का प्रभाव काफी हद तक कम किया जा सकता है। केंद्रीय ऊर्जा एवं आवासन मंत्री मनोहर लाल खट्टर का मानना है कि पश्चिम एशिया के संकट और

0: तो भाई ये तो आपने साप्ताहिक समाचार समीक्षा सुनी, और जिस तरह बात कर रहे थे पहले कि भाई गर्मी बहुत पड़न लग रही है, गर्मी से बचाव करना बहुत ज़रूरी है भाइयों, अपने आप का भी, अपने फसलों का भी और अपने पशुओं का भी। क्योंकि गर्मी में जिस तरह पहले ही बताया था कि मान लिया कोई छोटी मोटी दिक्कत हो गई या लू लग गई गर्मी से दी, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, चाहे पशुओं में है, चाहे किसान भाई के खुद के है, और चाहे उसकी खेती में भी है। तो इससे बचना बहुत ज़रूरी है भाइयों। और जिस तरह बताया था कि भाई देखो सुबह थोड़ा 9 बजे से पहले पहले अपना काम कर आओ, और फिर शाम में 6 बजे के बाद से आओ खेत में, इतना क्यों कर लो, रोटी रोटी जो भी लानी है आपने वो ले आओ, उसके बाद में ले आओ या सुबह ले आओ। उसमें ज़्यादा धूप में रहोगे तो दिक्कत हो जाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना ये करें, कोशिश रखें कि वह अपना है ना जो पानी ज़्यादा पीते रहे, जितना पेय पदार्थ पीते रहेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। हाँ एक बात ये भी है, जिस तरह ये बच्चा है उसमें ध्यान रहे कि जो ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये है ये ना पिएगा, जो अपने देसी पेय पदार्थ हैं उनकी तरफ विशेष ध्यान रखेगा तो वो बढ़िया रहेगा। जैसे रबड़ी है, लस्सी है, ये चीज़ें पिए अर्ध अपने खूब उसमें कर दे, और बहुत बढ़िया अर्ध अपने किसान भाई खूब काम भी करें, ज़्यादा देर कोई किसी प्रकार की उन्हें गर्मी से अध्या भी नहीं कर दे। अपना खेत में जा रहे हैं तो साथ में पानी की हंडी उंडी रखे, ताकि इसमें छाया में जब भी थोड़ा मान लिया धूप लागे जा छाया में जाके बैठ जाए, और फिर उसमें पानी पूनी पिएगा ना, रेस्ट कर फिर अपना काम कर ले। और होश के तो 9 बजे के बाद तो उसमें खेत में काम करें ना, तो धूप इतनी पड़न लग रही, जब भी आपकी मान लिया कोई दूसरा कोई सा काम करना है तो उसमें ये देख लें कि वह जोर थोड़ा सुबह जल्दी चले जाए और शाम में 6 बजे के बाद चले जाए, ये इसमें अपना इस तरह करते रहेंगे तो बढ़िया रहे। क्योंकि भाई बात यह है, देखो बचाव अपना करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार अगर जब मान लिया कोई दिक्कत होगी, चाहे तीनों चीज़ों में से कौन सी है, किसान भाई के खुद के हैं, उसके पशुओं के हैं, खेती के हैं, तो फिर भारी मुश्किल हो जाए, क्योंकि जो घाटा हो जाए उसकी पूर्ति नहीं हो पाती फिर। इसलिए अपना बचाव करना बहुत ज़रूरी है। और पहले कह रहे कि भाई जो झगड़े तो अच्छा, तो बाढ़ अच्छी है, उसमें बाढ़ करना ज़रूरी है, यानी अपने आप की देखभाल करना बहुत ही ज़रूरी है, ये देख ले भाई। और फिर भाई जिस तरह आजकल हम देखा कि हमें जो खेती के साथ साथ अपने दूसरे व्यवसाय ले रहे हैं भाई, खूब भाई कर रहे हैं भाई, और उन व्यवसायों में भाई आमदनी भी कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि उसमें जो ट्रेनिंग भी ले रखी है आपने, सारी चीज़ कर रखी, कई बार छोटी मोटी चूक उसमें भी हो जाए तो दिक्कत हो जाए। तो जो उसके खेती के साथ जुड़े हुए धंधे हैं अपने सारे के सारे, उन धंधे की बात करें तो आज हम एक बातचीत कराएंगे गर्मियों में मुर्गी घरों की देखभाल पे। तो इसमें भी वह गर्मियों में हमने के देखभाल करनी है, किस तरह उनकी वो कर सका है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन इसका हो जाए। तो ये पूर्व प्रसारित बातचीत है, और डॉक्टर राजू शर्मा आए थे, उनने ये बताई थी, तो सुने ये बातचीत गर्मियों में मुर्गी घरों की देखभाल।
1: भाइयों, हमारी आज की बातचीत का विषय रहेगा इन दिनों मुर्गी घरों की देखभाल किस प्रकार करें, यानी कि गर्मियाँ का जो मौसम चल रहा है उसमें मुर्गी घरों की देखभाल के ऊपर करें, कि उनकी चारा दाना दें, किस प्रकार के उनके रख रखाव का ध्यान रखें। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच स्टूडियो मौजूद हैं, आप हैं डॉक्टर राजू शर्मा, आप वेटनरी सर्जन हैं GVS दड़ौली जींद के अंदर कार्यरत हैं। तो डॉक्टर साहब, स्टूडियो में पहुँचने पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद बलजीत भाई जी। तो आप जो फार्मर्स के लिए जो फायदेमंद हो, किसानों के लिए जो फायदेमंद हो, वो किसी भी इस विषय में आप मुझसे पूछ सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, हमारा काम पूछने का है, क्योंकि बैठे हैं तो पूछेंगे भाई, यहाँ जानकारी पहुँचेगी। और डॉक्टर साहब कैसे, ठीक ठाक?
2: बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया है, आप बताओ।
1: डॉक्टर साहब बात करें देखो मुर्गी घर की, तो एक तो थोड़ा ये बताए कि भाई कहाँ कहाँ मुर्गी घर लगाए जा सकते हैं।
2: वैसे जो मुर्गी घर लगाए जा सकते हैं, पहले तो कोई गाइडलाइन नहीं थी, अब कुछ गाइडलाइन आ गई हैं।
1: अच्छा,
2: तो मुर्गी घर एटलीस्ट जो वाटर सोर्स है, जो कुएं हैं, तालाब हैं, झोड़ है या नहर है, उससे कम से कम 1 किलोमीटर दूर, 500 मीटर से लेके 1 किलोमीटर तक दूरी होनी चाहिए उसकी।
1: अच्छा,
2: और वो लाल डोरे के अंदर नहीं होना चाहिए, गाँव में या शहर में हो तो म्यूनिसिपल कमेटी के अंदर अंदर नहीं होना चाहिए।
1: अच्छा,
2: तो ये हम खेतों में ही लगा सकते हैं।
1: जलवायु का कुछ प्रभाव इस पे डॉक्टर साहब?
2: जलवायु का प्रभाव ये है, यदि आप 25,000 से नीचे मुर्गी फार्म खोलते हैं, 25,000 बर्ड से नीचे,
1: जी,
2: चाहे वो ब्रैलर हो चाहे वो लेयर हो, तो वो पोल्यूशन कंट्रोल के अंडर नहीं आता। यदि 25,000 से ऊपर हम जाते हैं एक यूनिट खोलने के लिए, मुर्गियों के लिए या ब्रैलर्स के लिए, तो
1: हाँ,
2: वो पोल्यूशन कंट्रोल के अंडर जाएगा, आपको फिर उसकी NOC की जरूरत पड़ेगी,
1: यानी कि अपने कागज पत्र हमने तैयार करवाने पड़ेंगे
2: पड़ेंगे जी
1: खोलने के लिए।
2: हाँ जी।
1: अच्छा, शुरुआत कहाँ से होगी डॉक्टर साहब?
2: तो जैसे पहले तो हमें जिस पंचायत में या जिस पंचायत के अंडर हम जिस खेत में खोलना चाहते हैं तो हमें ग्राम पंचायत से लिखवा लेना चाहिए
1: जी
2: कि मैं ये करूँगा और यहाँ मुर्गी फार्म बनाऊंगा, इतनी इतने बर्ड्स का बनाऊंगा। यदि 5, 10, 15, 20 हज़ार तक का है तो उसके लिए आपको सरपंच लिख के दे देंगे,
1: जी
2: और इससे बड़ा है तो आपको पोल्यूशन कंट्रोल से उसकी NOC की जरूरत पड़ेगी।
1: जी
2: तो 10 हज़ार 15 हज़ार का ही लगाता है अपने ग्रामीण एरिया में, 5 से लेके 15 हज़ार तक के ही लगते हैं मुर्गी फार्म।
1: जी
2: तो उसके लिए ग्राम पंचायत आपको दे देगी, और उसमें ग्राम पंचायत आप पे कुछ वो रूल रेगुलेशंस लगा सकती हैं कि आप हर महीने मक्खियों की दवाई का प्रयोग करेंगे,
1: हाँ
2: या
1: हाँ
2: जो डेड बर्ड्स हैं वो इधर उधर मरे हुए पक्षी या मुर्गियां इधर उधर नहीं फेंकोगे, उसके लिए एक कुई होगी, कुई में उनका अच्छे तरीके से निस्तारण करना पड़ेगा।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, कई बार देखने को आवा है कि जिस गांव के नज़दीक वो लग जाए, गांव में मक्खी मच्छर ज़्यादा प्रकोप हो जाए है, और फिर एक जो आवारा कुत्ते हैं वो मरे हुए पक्षियाँ नहीं हुए फेंक दे हैं, वो कुत्ते भी मांसाहारी हो जाए हैं,
2: हाँ
1: और वो भी
2: वो
1: फिर गांव में बड़ी दिक्कत करे हैं। तो इसीलिए मैंने पूछा कि भाई क्या इसकी कोई प्रिकॉशन है या कुछ, मतलब इशारा
2: हाँ
1: है
2: यही
1: कि
2: गाइडलाइन है,
1: जी
2: और ये हमें अपने समय के सत्र पे भी, यदि मुझे मुर्गी फार्म खोलना है या बलजीत भाई जी आपको मुर्गी फार्म खोलना है, तो एनवायरनमेंट के प्रति हम भी वो रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए।
1: बिल्कुल
2: हमें उसके फीड में मक्खियों की दवाई और कुई, मरे हुए पक्षियों के लिए, मरी हुई मुर्गियों और पक्षियों के लिए कुई
1: हाँ
2: का प्रबंध हमें पहले करना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, बात करें इस मौसम की, क्योंकि गर्मी की शुरुआत होगी, तो ऐसे मौसम में हम के शुरुआत में एहतियात बरतें।
2: जैसे अब गर्मियों का एकदम टेम्परेचर का सडन राइज आया है जी, एकदम
1: जी
2: टेम्परेचर बढ़ा है, अब लू भी चलेंगी।
1: बिल्कुल
2: पहले तो मैं आपको लू से निस्तार बचाव का, पक्षियों का बता देता हूँ।
1: जी
2: तो अपने ना मोटे तौर पे ना तीन तरह के मुर्गियाँ पालते हैं अपन। एक तो ब्रायलर जो मीट
1: हाँ
2: के लिए यूज़ होती है, एक
1: जी
2: लेयर जो अंडे के लिए यूज़ होती है, और जो एक ब्रायलर पेरेंट होता है जिससे हमें चूजे अंडा लेके और उस अंडे से जो चूजा निकलता है उसको हम पशुपालक को, मुर्गी पालक को दे देते हैं, जिसको वो तैयार करके 30 से 35 दिन में मार्केट में मीट के लिए बेचता है।
1: जी यानी कि वो बीज ने तैयार कर लिया अपने।
2: हाँ, 30 से 35 दिन का
1: जी
2: वो तैयार हो जाता है।
1: हाँ
2: तो उसके लिए हमें इस मौसम में क्या ध्यान रखने चाहिए,
1: हाँ
2: क्योंकि एकदम गर्मी बढ़ी है, टेम्परेचर बढ़ा है,
1: बिल्कुल
2: तो जो लोकल शेड हैं जो अपने एरिया में हैं, वो जो हवा उसकी शेड की डायरेक्शन है, जो हम मुर्गी खाना बनाएंगे, मुर्गियों के लिए
1: जी
2: जो घर बनाएंगे उसकी डायरेक्शन पूर्व से पश्चिम होनी चाहिए।
1: पूर्व से पश्चिम जी, इसका
2: और
1: क्या खास मकसद है डॉक्टर साहब?
2: तो जैसे पूर्व से पश्चिम होने का ये मतलब है, अपने यहाँ नॉर्थ इंडिया में हवा
1: हाँ
2: पूर्व से चलती है या पश्चिम से चलती है, तो
1: जी
2: ना तो गर्म हवा एकदम शेड के अंदर जा पाएगी ना ठंडी हवा शेड के अंदर जा पाएगी,
1: जी
2: तो
1: बिल्कुल
2: उसके ये फायदेमंद है। और इस मौसम में जो छोटे किसान हैं, जो छोटे मुर्गी फार्म है 5 हज़ार का 10 हज़ार का है, उनको एक तो नीचे रेत,
1: हाँ
2: जो नीचे लीटर सिस्टम बोलते हैं इसमें मुर्गियों में, जो नीचे वैसे तो जो सर्दियों में तो भूसा डालते हैं वो,
1: हाँ
2: और नीचे अब ब्रूडिंग रेत रेत पे होगी, जो आते ही चूजे को रखेंगे तो
1: जी
2: वो बालू रेत पे चूजा रखा जा सकता है, वो जो नीचे से ठंडा रहेगा, और 10 दिन के बाद उस पर हल्का हल्का पानी मारना शुरू कर देंगे। फिर
1: जी
2: जब 15 दिन का बर्ड हो जाएगा, वो लगभग लगभग आधा KG का हो जाता है 15 दिन का,
1: हाँ
2: तो फिर आप ना उसके एक साइड पल्ली लटका दोगे, बोरी वाली पल्ली जो देसी भाषा में, और
1: हाँ
2: उसके
1: हाँ
2: ऊपर एक पाइप बांध दोगे जिससे वो पानी, और उसमें छेद कर दोगे पाइप में, पानी टपक टपक टपक के उन बोरियों पे पड़ता रहे, और अंदर फर्राटे लगा दोगे, वो फर्राटे उस हवा को खींच लेंगे,
1: देशी कूलर
2: देसी कूलर,
1: जी
2: जिससे अंदर का टेम्परेचर बना रहे।
1: बिल्कुल
2: एक है जो 10 हज़ार से ऊपर है या जिसके पास पैसे का जुगाड़
1: हाँ
2: है,
1: हाँ
2: उसमें हम बाहर जैसे कूलर की टाट लगाते हैं,
1: हाँ हाँ
2: पूर्व की तरफ पश्चिम की तरफ कूलर की टाट लगा देंगे,
1: हाँ
2: और
1: हाँ
2: जो पूर्व की तरफ बड़े बड़े पंखे लगा देंगे, फैन लगा देंगे
1: जी
2: वो, और अपने शेड को बिल्कुल कवर कर देंगे
1: हाँ
2: पॉलिथीन से या किसी भी चीज से, वो
1: हाँ
2: कवर हो जाएगा तो वो पंखे बाहर चलेंगे तो कूलर की तरह ठंडी हवा को अंदर से
1: बीच में
2: खैच
1: के हाँ बिल्कुल वो प्रवाहित होती
2: प्रवाहित
1: रहेगी।
2: होती रहेगी।
1: हाँ डॉक्टर
2: हाँ,
1: साहब, छत का कैसे हम इंतजाम करें?
2: छत का, जो छत पे ना अपने इंग्लिश का वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं, थैशिंग बोलते हैं उसको, छत पे सरकंडे या अपन जो पराल यूज करते हैं उन
1: हाँ
2: सरकंडे या पराल की अपन को छत बंधवा देनी है,
1: अच्छा
2: और छत पे अपन आजकल जैसे फुहारा सिस्टम है तो छत पे अपन एक पाइप से फुहारे लगा देंगे और वो
1: अच्छा,
2: ऊपर से पानी स्प्रिंकल करते रहेंगे जिससे छत अपनी ठंडी रहेगी।
1: यानी कि पक्की छत हो, उसमें
2: हाँ
1: कुछ और सफेदी वगैरह भी
2: हाँ
1: करें
2: जो
1: मतलब?
2: पक्की छत है, जो
1: हाँ
2: पक्की छत है उस पे भी ये कर लेते हैं हम, पक्की छत पे बड़ी
1: पराल
2: कामयाब
1: डाल
2: चीज है
1: डाल
2: पराल।
1: सकते हैं।
2: हाँ पराल डाल के और उस स्प्रिंकल लगा के और वो स्प्रिंकल से कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, इन दिनों में बात करें, हम मुर्गी घरों की बात करें, हम मुर्गियाँ ही करें, बच्चियाँ ही करें, कोई बीमारी बीमारी भी आने का अंदेशा हो जा रहा है।
2: जितना भी टेम्परेचर राइज होगा, हाँ। ये बड़ा फास्ट ग्रोइंग बर्ड है, बहुत जल्दी बड़ा होता है, तो उसमें स्ट्रेस भी ज्यादा होता है।
1: अच्छा।
2: तो स्ट्रेस ज्यादा होएगा तो कुछ ना कुछ बीमारियों का भी डर रहेगा। तो इन दिनों में एक बात बता देता हूँ मैं, अपना जो मुर्गी पालक भाई है वो इलेक्ट्रोलाइट्स, तो इलेक्ट्रोलाइट बाजार में विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स अवेलेबल है मुर्गियों के लिए, वो ले आए और वो सुबह 7 बजे के पानी में 1 ग्राम 1 लीटर पानी में,
1: अच्छा।
2: और शाम को 4 से 5 बजे तक चल लेते इलेक्ट्रोलाइट और एक विटामिन सी का पाउडर।
1: अच्छा।
2: हाँ, तो विटामिन सी का पाउडर यदि फीड में मिलाने में सक्षम हो तो फीड में मिला ले, और पानी में देना चाहिए तो 10 ml 10 ग्राम 100 वर्ड पे पानी में दे सकता है।
1: पानी का इंतजाम कैसे करें डॉक्टर साहब उनका?
2: तो पानी के पीने के इंतजाम दो तरीके के होते हैं बलजीत भाई साहब इसमें, तो एक तो होता है निप्पल सिस्टम।
1: अच्छा।
2: तो जो चैनल जैसे पाइप लगी और उसमें निप्पल लगे हैं वो बर्ड इतना जल्दी सीख लेता है, आपके पास एक दिन का बर्ड आता है ना तो उसमें उसको देख के चोंच मारनी शुरू कर देता है, रेड कलर के होते हैं वो, लाल रंग की तरफ आकर्षित होता है, चोंच मारने शुरू कर देता है, वो टपके टपके पानी पी लेगा।
1: अच्छा।
2: दूसरा है अपने लिए पानी के बर्तन होते हैं, जो पहले कुछ छोटे फार्म है तो ठंडा पानी रहे, घड़े की व्यवस्था की जा सकती है, एक प्लेट लेके घड़े को पानी से भर के उस प्लेट पे उल्टा कर दोगे तो जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा सा पानी, जैसे वो पानी उसमें मारेगा तो वो हिलेगा और पानी की व्यवस्था होती रहेगी। आजकल फीडर और ड्रिंकर्स भी आए हैं बलजीत भाई, तो प्लास्टिक के फीडर और जैसे अब घड़े की तो इतनी ज्यादा प्रोडक्शन नहीं रही, तो प्लास्टिक के फीडर और ड्रिंकर्स पाइप के थ्रू लटके हुए हैं, उनमें से पानी आपको लगातार मिलता रहेगा।
1: बिल्कुल, कई जगह मिट्टी के कुंडे भी
2: बने पाओगे
1: तो उसमें ठंडा पानी,
2: ठंडा पानी
1: तो उनमें भी हमें मिला के रख सके।
2: हाँ, उन्हीं में उसी पानी में हमें इलेक्ट्रोलाइट मिलाना है जी।
1: अच्छा।
2: जो मुर्गी के लिए पानी पीना है उसी में इलेक्ट्रोलाइट मिलाना है हमें। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ इसमें, जो फीडर और ड्रिंकर है ना ये प्रॉपर पोजीशंस में होनी चाहिए और प्रॉपर अनुपात में हो मुर्गियों के।
1: अच्छा।
2: ये कम और ज्यादा ना हो।
1: कैसे?
2: जैसे जो फीडर है वो 2% होनी चाहिए, 100 मुर्गियों पे 2% फीडर जरूरी होनी चाहिए और 4% ड्रिंकरों।
1: अच्छा। हाँ जी, तो इसमें जो मुर्गियों के रहने का स्थान,
2: 3% फीडर कर सकते हो आप,
1: मुर्गियों के रहने का स्थान है।
2: हाँ।
1: उसमें कुछ अलग अलग रखनी है हमने, कि भाई मुर्गियां ये हमने थोड़े अलग उसमें रखनी है, शेड में जो थोड़े चूजे हैं वो अलग रखने हैं। हाँ।
2: देखो वैसे तो ऑल इन ऑल आउट सिस्टम होता है।
1: हाँ।
2: एक उम्र की मुर्गियां एक शेड में रखोगे आप।
1: अच्छा।
2: तो अलग अलग उम्र की रखोगे तो जैसे बड़ी मुर्गी में बाई चांस बीमारी आ गई।
1: हाँ।
2: तो छोटी मुर्गी उसको ग्रहण कर लेगी।
1: अच्छा।
2: हाँ, तो ऑल इन ऑल आउट सिस्टम रखेंगे, अपना ब्रूडिंग अलग जगह होगी, ब्रूडिंग बोलते हैं उसको, ब्रूडिंग जो ब्रॉयलर के लिए तो एक ही शेड बहुत है आपका।
1: बिल्कुल।
2: पर जो आप लेयर अंडे देने वाली मुर्गी पालोगे उसका ब्रूडिंग शेड अलग होना चाहिए और आपका लेइंग शेड उससे कुछ दूर होना चाहिए
1: जी। उसमें इनकी संख्या कितनी रक्षा, जैसे कि हम देखें कि भाई एक मत घने हो गए हैं उसमें भीड़ भड़ाका या कुछ किस तरह का?
2: बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा बलजीत भाई किसानों के लिए। जो ब्रॉयलर अपन पालते हैं
1: जी,
2: तो मैं एक थोड़ा सा बता देता हूँ आपको।
1: हाँ।
2: जब पहले दिन का

0: रहता है, 1 फिट पे हम हमें 4 बच्चे रखने हैं।
1: 1 फुट, 1 वर्ग फुट पे।
0: हाँ, 1 वर्ग फुट पे 4 बच्चे रखने हैं।
1: अच्छा
0: जैसे 1000 वर्ग फुट की जगह है अपने पास,
1: हाँ हाँ
0: 30 फुट चौड़ा है और 40 फुट लंबा है, तो 1200 स्क्वायर फिट जगह होगी अपने पास।
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: उसमें अपन गर्मियों में 1000 ही बच्चे रखने हैं, एक
1: अच्छा
0: स्क्वायर फिट में 4 बच्चे रखेंगे, वो अपन नाप के कर लेंगे, वो बाड़े में डिवाइड कर देंगे उसको।
1: हाँ
0: फिर दूसरा सप्ताह शुरू होगा जब मुर्गियों का, जब 1 स्क्वायर फिट में 3 कर देने हैं, जब तीसरा सप्ताह शुरू होगा जब 1 स्क्वायर फिट में 2 बच्चे कर देने
1: जो
0: हैं,
1: जो उनकी आकार बढ़ता
0: आकार
1: रहेगा।
0: बढ़ता है। जब चौथा हफ्ता शुरू होगा, 4th वीक, जब 1 स्क्वायर फिट में 1 बच्चा, और गर्मियों में हमने 1.25 स्क्वायर फिट में 1 बच्चा रखना है,
1: अच्छा,
0: क्योंकि वेंटिलेशन उसको प्रॉपर मिलता रहे।
1: हवा, बीच में आवागमन जरूरी है। और डॉक्टर साहब, खाने का जैसे कि आपने बताया था कि भाई जो खाना देना है उसमें के कुछ और भी कुछ बढ़ोतरी करनी
0: हाँ,
1: मात्रा की।
0: जो खाना है मतलब इजी डाइजेस्टेबल प्रोटीन, जो आसानी से वो डाइजेस्ट कर ले, जैसे
1: अच्छा,
0: मक्का और
1: पचास के,
0: सोया,
1: बिल्कुल।
0: हाँ, जिसको आसानी से पका सके, मक्का और सोया का फीड, और उसमें विटामिन सी, इलेक्ट्रोलाइट, ट्रेस मिनरल्स जो भी है, वो अपने निकटतम पशु चिकित्सक के पास जाके उसकी फूड फीड की बैलेंसिंग करवा के आप वो उसको समय समय पे डाल सकते हैं।
1: ये बना बना आकर इनका।
0: हाँ, तकरीबन आजकल तो बहुत बड़ी बड़ी फीड मिल लगी हुई हैं, जो बना बनाया फीड आता है, वो 3 तरह का फीड बताते हैं आपको।
1: अच्छा।
0: आप बलजीत भाई जाओगे तो कहेंगे जी हमारे पास 3 तरह का फीड है, एक स्टार्टर बोलते हैं, एक ग्रोवर बोलते हैं, एक फिनिशर बोलते हैं।
1: घर पे ही बना जा सके डॉक्टर साहब
0: हाँ, घर
1: इनको,
0: पे भी बनाया जा सकता
1: घर
0: है।
1: पे कुछ थोड़ा आसान तरीका अपना
0: हाँ,
1: जैसे।
0: घर पे आपको चक्की, जैसे चक्की नहीं है सिंपल, चक्की टाइप आपको रखना पड़ता है, ग्राइंडर और मिक्सर।
1: अच्छा।
0: तो आप उसमें प्रॉपर अनुपात में अपने डॉक्टर से, वेटरनरी सर्जन से मिले, वो आपको लिख के दे देगा, इतना मक्का मिलाना, इतना सोया मिलाना है, इतनी दवाइयाँ मिलानी है, ट्रेस मिनरल्स, विटामिन प्रीमिक्स, लीवर टॉनिक, जो भी मिलाने हैं, तो वो आपके फीड को बैलेंस करके दे देगा, वो आप घर पर भी बना सकते हैं।
1: कितने दिन काम तैयार कर सकें एक बार में?
0: तो ये बहुत लंबा, बहुत ज़्यादा दिन का तैयार नहीं करना चाहिए, क्योंकि फफूंद
1: अच्छा।
0: लगने का डर रहता है। ये लगभग लगभग 10 से 12 दिन का ही अपने पास तैयार रखना चाहिए। और जो ये
1: अच्छा
0: बड़ी फीड मिल है, ये आपको पका के दाना देती हैं,
1: जी।
0: तो पेलेटाइजेशन बोलते हैं इसको, तो ये पका के देंगी, वो दाना आप 1 महीने तक स्टोर कर सकते हो।
1: रोशनी का कैसे प्रबंध है आके
0: हाँ,
1: रखना
0: रोशनी
1: रहे?
0: का जो प्रबंध करना है, जो छोटा बर्ड होगा उसमें आपको बल्ब लगाने पड़ेंगे दाना
1: अच्छा
0: देखने के लिए अंदर, क्योंकि
1: जी।
0: गर्मी का सीजन है, पर्दे हम बहुत ज़्यादा खोल नहीं सकते हैं, ऊपर से बस वेंटिलेशन के लिए थोड़ा थोड़ा पर्दा खुलेगा, तो
1: हाँ
0: उसके अंदर आप बल्ब लगा सकते हो।
1: जी, बल्ब भी मतलब किस तरह के? एक तो ये होशियार है अपने, CFL भी हैं, या जो
0: CFL के
1: गर्माश
0: जो
1: देने वाले
0: जो
1: हैं।
0: CFL के बल्ब हैं
1: हाँ
0: वही बढ़िया रहेंगे,
1: अच्छा।
0: और वो एक 10 लक्स लक्स मीटर होता है, जो लाइट को नापने का
1: हाँ
0: यंत्र
1: हाँ
0: होता है,
1: हाँ
0: तो लक्स मीटर के हिसाब से लाइट रखनी है,
1: हाँ
0: वो अपने निकटतम पशु चिकित्सक के पास, या 10 से लेके 20 लक्स ब्रॉयलर में रख सकते हो आप,
1: हाँ
0: और 10 से 20 लक्स ही लेयर में लाइट चाहिए आपको।
1: डॉक्टर साहब, जैसे अब की बात करें तो मौसम गर्मी का है, इसमें तो हम वैसे लगा सकते हैं, अगर सर्दियां का मौसम हो तो फिर वो गर्माश देने वाले बल्ब।
0: हाँ, सर्दियों मौसम होगा तो आपको बठिया लगानी पड़ेंगी जी,
1: हाँ
0: तो जिससे बाहर से गर्माइश मिले, क्योंकि जो पक्षी होता है ना, ये मुर्गी का
1: हाँ
0: मुर्गी है ये, जो
1: हाँ
0: अपनी ये पाइक्लोथर्मिक होती है, इनके
1: अच्छा।
0: अंदर ना टेम्परेचर को मेंटेन करने की ग्लैंड नहीं होती, तो इसके लिए शुरू में हमें इनका 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हर मौसम में टेम्परेचर रखना पड़ेगा। अब तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट वैसे ही है पहले
1: हाँ
0: हफ्ते में, दूसरे में
1: बिल्कुल।
0: 90, फिर ऐसे ऐसे घटाते हो, तीसरे में 85, चौथे में 80, तो ये टेम्परेचर रखना पड़ेगा। और मुर्गी का शेड का तापमान कभी भी 28-30 डिग्री से ऊपर नहीं जाने देना
1: नहीं
0: हमें,
1: जाने देना।
0: हाँ,
1: हाँ
0: वरना फिर वो मुर्गी का हमें लॉस होगा, या तो वो मोर्टेलिटी होगी मुर्गी में, या वो अपना अंडा घटा देगी, या कोई ना कोई बीमारी आ जाएगी।
1: डॉक्टर साहब, देखें कि वे कई बार गर्मी लाग जाए, जैसे अपना पशुओं ने भी लाग जाए,
0: हाँ,
1: मुर्गियों में अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो उनके क्या लक्षण दिखाई देंगे?
0: तो मुर्गियों में यदि ऐसी सिचुएशन हो जाती है, तो आपको सारी मुर्गी पेंटिंग करती और हाँफती हुई दिखाई देंगी मुंह खोल के, और वो पानी की तरफ ज्यादा जाएंगी, फीड आपका कंज्यूम नहीं करेंगी, जिससे, क्योंकि ये तो एक फसल की तरह पाला जाता है,
1: बिल्कुल।
0: तो आपकी फीड कन्वर्जन रेशियो जिससे घट जाएगी, और वो कोई ना कोई बीमारी पकड़ लेगी, जैसे CRD की बीमारी है,
1: हाँ
0: वायरल की बीमारी है,
1: हाँ
0: और कोई स्ट्रेस है, तो किसी ना किसी चीज की वो बीमारी पकड़ लेगी।
1: फिर उसमें तुरंत कोई अपना देशी इलाज करें या फिर पशु चिकित्सक को बुला के लेना पड़े?
0: नहीं, आप ना जैसे तकरीबन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी लेबोरेटरीज बनी हुई हैं हरियाणा में,
1: हाँ
0: तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की लेबोरेटरी पे आप जाके संपर्क करें, वहाँ
1: हाँ
0: पशु चिकित्सक आप मरे हुए अपने मुर्गियाँ ले जाएं, वो पशु चिकित्सक उनका पोस्टमार्टम करके आपको ट्रीटमेंट बता देगा वो वहाँ पर।
1: नहीं, जैसे गर्मी का है तो उसमें तुरंत क्या करना चाहिए
0: गर्मी
1: हमें?
0: का जो तुरंत करना चाहिए, गर्मी के तुरंत में आप इलेक्ट्रोलाइट और नींबू पानी और शक्कर, यदि आपके पास कुछ भी बाहर नहीं जा सकते, आप दुकान से नहीं खरीद सकते, तो आप नींबू पानी और शक्कर का घोल मिला के उसको बर्ड को पिला दो।
1: अच्छा, तो उसमें मतलब शांति पड़ जाएगी उनके डॉक्टर साहब अंदर। और
0: पानी
1: और
0: को समय समय पे बदलता रहना है।
1: हाँ।
0: क्योंकि पानी का टेम्परेचर हाई नहीं होने देना, क्योंकि ऊपर प्लास्टिक की टंकी लगी है, जब भी डालो ताजा पानी, ठंडा पानी डालना है कि मुर्गी तक ठंडा पानी पहुंचे।
1: बिल्कुल, वे जो पाइप आती है टंकी से वहां तक, उसमें भी बता देता है कि भाई कोई बोरी वगैरह टाट वगैरह लपेट दे ताकि गर्म पानी ना हो,
0: टंकी के ऊपर भी ठंडे बोरी लपेट दो।
1: डॉक्टर साहब आना जाना भी पड़े है मुर्गी घरों के अंदर, तो उसमें क्या एहतियात बरतें?
0: तो देखो बायोसिक्योरिटी एक वर्ड है।
1: हाँ।
0: तो मुर्गियों के लिए बायोसिक्योरिटी सबसे बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। यदि आपने मुर्गी पाल रखी है तो आप किसी दूसरे मुर्गी पालक भाई के पास जाके नहीं बैठेंगे।
1: अच्छा।
0: क्योंकि यदि उसके पास कोई बीमारी है तो वो उसके जुत्ती का यदि अपनी पंख भी लगका गया उसका, तो वैसे अपने शेड में भी बीमारी आ जाएगी। तो अपने बायोसिक्योरिटी मेंटेन रखनी है, तो आना जाना ज्यादा नहीं है, और जो अपना मुर्गी फार्म है उसके चारों तरफ अपन ने बाउंड्री बनानी है।
1: अच्छा।
0: और बाउंड्री जो एंट्रेंस है मुर्गी फार्म की, तो उसमें खड्डा बना देना है।
1: अच्छा।
0: और उसको पक्का कर देना है खड्डे को।
1: हाँ।
0: और उसमें लाल दवाई, फिनाइल या कुछ बने बनाए आजकल पाउडर भी आ रहे हैं, फिर कौन एस एंटीवायरल पाउडर्स आ रहे हैं।
1: हाँ।
0: वो उसमें डाल के रखने, कोई मोटरसाइकिल आओगी, और यदि आपके एंट्रेंस है जो आदमी आएगी वो थोड़ी भीड़ी कर देनी है, ऊपर आपको फुहारा लगा देना है, तो जो भी आदमी उससे प्रवेश करके होगा वो सारा गिल्ला होगा।
1: हाँ।
0: उसमें कोई कीटाणु विषाणु जीवाणु लेके आ रहा है तो वो मर जाएंगे।
1: अंदर जब हम जाएंगे मुर्गी घर के अंदर, क्योंकि उनका दाना देखने के लिए भी, पानी देखने के लिए भी, या कुछ जैसे अंडे दे रही है तो अंडे उठाने के लिए भी,
0: बिल्कुल,
1: तो उसमें क्या एहतियात बरते हैं? क्योंकि कोई सफेदी वगैरह का बता
0: कर। हाँ, हाँ, तो वो सफेदी का चुनना तो जो भी अपने शेड पैदल चलने के लिए बनाएंगे जो अंडे उठाने के लिए, वो तो सफेदी के चुनने से कवर होना चाहिए
1: जी।
0: और जैसे अपन ब्रॉयलर वाले शेड में अंदर जाएंगे तो वहाँ एंट्रेंस पे भी एक खड्डा डिप रखना पड़ेगा अपने को, उसमें जूते डुबो के, और अपने को फार्म की अपनी ड्रेस फार्म पे रखनी पड़ेगी, अलग से रखनी पड़ेगी, वो ड्रेस चेंज करके फिर हम अंदर जाएंगे उसको देखने के लिए
1: जी।
0: उसकी जो एक्टिविटी हमें नोट करनी है या कोई मॉडल टी है या

0: मुर्गी पालन घाटे का व्यवसाय नहीं है। बलजीत जी
1: जी डॉक्टर राजू शर्मा जी, आप स्टूडियो में आए, भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, और ये जानकारी देखो हर मौसम जब बदली होता है तो उस मौसम होनी भी चाहिए, ताकि जो नए भाई हैं उनको भी पता लग जाए कि हमने के आगे चाल का करना है। आप आए स्टूडियो में, आए, इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद बलजीत भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो ये तो आपने बातचीत सुनी, और ई कृषि जगत कार्यक्रम का तो समय समाप्त, और ई सुने कार्यक्रम ग्रामीण संसार, और ग्रामीण संसार में आज चौपाल है, फोन इन प्रोग्राम है, और उसके लिए एक बार आपने नंबर बता दिया है 255-446, 255-447 और 255-448, और रोहतक का एसटीडी कोड है 0-12-62। तो भाई करें अपना फ़ोन पर बात, और उसमें ज़्यादा

0: अगला फोन देखते हैं। हेलो हेलो हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी, राम राम जी,
1: राम राम साहब, राम राम।
0: नाम बता दो जी, कितने बोलो हो।
1: मैं जिला चरखी काम कल्याण मनोहर लाल बोल रहा जी। बस
0: हाँ जी, मनोहर लाल जी, कैसे हो?
1: दास, आपकी जी मौत हो रही है। हाँ
0: दया तो जी देखो, परले की भगवान की है, और सारे आपके अपने
1: जी,
0: जो काम कर रखे हैं, वो जो इतने बढ़िया काम कर रखे हैं आपने, सारी तो बोझ है जी। अच्छा,
1: बहुत
0: प्रोग्राम
1: बढ़िया
0: ही बता दो जी।
1: प्रोग्राम, बहुत बढ़िया हो जी।
0: अच्छा,
1: वो एक तो क्लास का बहुत
0: प्रोग्राम ही
1: बढ़िया
0: बता दो जी।
1: प्रोग्राम, प्रोग्राम बहुत बढ़िया हो जी।
0: अच्छा
1: वो एक तो क्लास का

0: काफी वो होशियार था, लेकिन अब
1: ठंडे
0: इतना
1: ना। हाँ जी
0: सतीश भाई, अब ये हो गया एक तो, ये मीडिया तो हो गया सारा का सारा, उसमें है ना मनोरंजन, इसमें हो गया है फोन वगैरह में हो गया है, ये इंटरनेट से इसी
1: हाँ
0: बात हो गई है, तो इसलिए इतना
1: हाँ
0: ऊंचा नहीं रहा। बाकी कराएं कोशिश, हम बड़े अधिकारी हो गया है, ये इंटरनेट से इसी
1: हाँ
0: बात हो गई है, तो इसलिए
1: हाँ
0: इतना
1: हाँ
0: ऊंचा नहीं रहा। बाकी कराएं कोशिश, हम बड़े अधिकारी।

0: राम राम भाई।
1: राम
0: हेलो हेलो,
1: राम साहब,
0: राम राम जी। जगह बता दो और नाम बता दो आप अपना जी। रमेश
1: कलोईता बोलूं जी, रमेश।
0: कलोई थे। हाँ रमेश जी बोलो जी, हमारे प्रोग्राम किसी अलग हैं।
1: प्रोग्राम जी सारे बढ़िया लगे हैं, कटी कोई
0: अच्छा
1: कमी नहीं, पर एक कमी है थोड़ी।
0: हाँ, वह कमी बताओ तो।
1: शुक्र जी, ये 8 से 7 कला कमी नहीं, पर एक कमी है थोड़ी।
0: हाँ वह कमी बताओ तो।
1: शुक्र जी, ये 8 से 7 कला।

0: रामेर सोरखी
1: हाँ
0: ते।
1: सोरखी।
0: हाँ रामेर जी, कैसे हो? ठीक से?
1: हाँ जी, हाँ ठीक
0: अच्छा,
1: ठाक है।
0: खेती बाड़ी ठीक से?
1: हाँ ठीक है जी, सारे।
0: परिवार भी राजी है?
1: हाँ जी, राजी है जी।
0: अच्छा, तो प्रोग्राम आई बता दी में।
1: प्रोग्राम तो ठीक है जी। दो
0: अच्छा
1: चार दिन पहले आज कोई वो देखा थे, हर दिन इसकी बड़वासनी ही था वो,
0: हाँ, रणबीर
1: जो
0: बड़वासनी है।
1: तड़के भी दो फार निशान। तो ये कलाकार तो रजमोहन डाटड़ा है, उसकी
0: अच्छा।
1: एक रागनी है ब्राह्मण के लड़के रहे घर, तो बताए के जाइए तो वह सुनाए देखो। हाँ
0: तो वह जरूर सुना दे। इसी के बाद
1: देखो
0: से कि बताया कौन सा
1: देखो
0: गायक है।

0: नमस्कार।
1: हेलो हेलो,
0: हेलो अशोक भाई जी, नमस्कार।
1: नमस्कार जी। नाम बता दो और जगह बता दो।
0: मैं गांव चौधरी वासे राजू।

0: का ढोर है रे नीलो जमाना है
1: ही चोर है। हाँ सतबीर जी देखो कोशिश यह रहे कि भाई श्रोताओं का मतलब जिस तरह आप ने मतलब गदगद हो रहे तो यूं सारे के सारे श्रोता गदगद हो, ये कोशिश हमारी यह रहे है जी।
0: हाँ जी हमारे

0: पर मैंने एक फरमाइश की थी आपसे 2 महीने पहले, वो
1: हाँ बताओ फिर की करिया था।
0: रागनी की फरमाइश थी जी, रामकुमार शर्मा की रागनी सुनवाए दो जी एक दिन।
1: राम कुमार शर्मा, बात यह है धर्मवीर जी, देखो जा हमारे पास होंगी तो जरूर सुना दे, ऐसी कोई बात नहीं
0: हैं जी आपके पास, ये हमारे गांव के कलाकार हैं जी।
1: है तो ठीक है जरूर सुना दे, आपके गांव के हैं तो चाहे क्या है जरूर सुना दे ना इसमें
0: मैं
1: तो।
0: रोज ध्यान से सुनता हूँ जी, ये रागनी नहीं सुनवाई, 2 महीने पहले फरमाइश की थी मैंने आपसे,
1: अच्छा, चलो ठीक है, ले
0: तो
1: ये
0: इनकी रागनी
1: देखिए
0: सुनवाई दे लोक संगीत में सुबह। हाँ
1: जरूर सुनाएंगे तो जी जी चलो ठीक है जी, थोड़ा सा मेरा
0: ठीक है जी।
1: एक और ले लेते हैं। हेलो
0: हाँ
1: हेलो,
0: हेलो भाई, राम राम जी।
1: राम राम जी, नाम बता दो जल्दी ही और जगह बता दो।
0: नाम है जी महिपाल गला जी, इनमें जी काम बताना
1: महीपाल बदाना से, हाँ जी प्रोग्राम बता दो हमारे किसे लागे जी।
0: प्रोग्राम जी, 2 हफ्ते में बहुत बढ़िया चल रहे हैं जी। हाँ
1: अच्छा जी
0: जो ये बराग नहीं सुनाई ने अशोक भाई पे बहुत
1: हाँ,
0: बढ़िया लग गया है, बिक्रम फोगाट की
1: अच्छा आती जाती पुलिस फौजी है या
0: है।
1: आती जाती पुलिस का ही है रागनी सुनाई
0: हाँ
1: दी,
0: जो
1: हकीकत
0: आप
1: रहेगा
0: बढ़िया
1: किसे
0: भाई
1: दे।
0: ने
1: अच्छा,
0: और आपने दानने शुरू कर दिए बलजीत भाई, और तो टाइम लाग रहे बातों में,
1: देखो आज वह साप्ताहिक समाचार समीक्षा आनी थी इसलिए वो
0: आप
1: कराया था
0: कहीं
1: जी मैं पाल
0: बातचीत
1: में।
0: करके लाग दे बलजीत भाई, और तो
1: चलो ठीक है तो भाई ठीक है तो
0: एक भाई जी अशोक भाई,
1: हाँ जी बताओ जल्दी बताओ।
0: ये इसमें विक्रम फोगाट आए थे मंगलवार में 8:30 बजे, बहुत तो बढ़िया गाए के, एक बार बार और सुनाइए उनका
1: जरूर सुनाएंगे तो चलो
0: मंगलवार ने पिछले न।
1: चलो ठीक है तो जी ठीक है जी। अच्छा जी महिपाल जी, चलो भाइयों ई वे घड़ी का ना देख लो कार्यक्रम का समय हो रहा समाप्त, सारे बाण भाइयों ने राम राम।

अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्रामीण संसार, मेरी भी 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हॉर्स पर आकाशवाणी का ही रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:30 और 52 सेकंड हुए हैं। वक्त हो चला है फिल्म संगीत का, तो ये सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया, आवाज़ है लता मंगेशकर की। सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

0: जोकर।
1: खलनायक सुनते हैं इस फिल्म का गीत, आवाजें हैं मनहर उदास और अलका याग्निक की, बोल हैं आनंद बख्शी की, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने एक ही सुना। फिल्म का नाम था दिल तुझको दिया। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से आप सुन रही हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म बेताब से है। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार ने। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार के स्वर में अभी आपने ये गीत सुना। इस गीत को हमने लिया था फिल्म बेताब से। गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था आर डी बर्मन ने। आइए सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला गीत, जो है फिल्म जुर्म से। इस गीत को गाया है कुमार सानू और साधना सरगम ने। बोल हैं इंद्रवर की और संगीत दिया है राजेश रोशन ने। तो ये सुनते हैं चुन फुन का ये खूबसूरत सा गीत।

कुमार सानू और साधना सरगम के स्वरों में अभी आपने सुना एक खूबसूरत सा गीत, फिल्म का नाम था चुर्म। और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। मन चाहे गीत हम आपको सुनाएंगे रात 10 बजे। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:25 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत और इस कार्यक्रम में आज के हमारे कलाकार हैं सुरेंद्र शर्मा। आइए सुनते हैं सुरेंद्र शर्मा की गाई हुई गजल।

0: और इसी गज़ल के साथ सुगम संगीत कार्यक्रम यही संपन्न होता है। सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने सुनी सुरेंद्र शर्मा की गाई गज़लें। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में समाचार। ये दोनों ही समाचार दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया। और एशियाई U23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धेरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया।
2: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
1: वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
2: पद्म विभूषण
3: डॉक्टर श्रीमती एन राजम कला वायलिन।
1: पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। एक रिपोर्ट।
4: पद्म भूषण श्रेणी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सार्वजनिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा को मरणोपरांत लोकसभा श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा शतपथधारी डॉक्टर आर गणेश को कला क्षेत्र में और विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला। उद्योगपति उदय सुरेश कुमार कोटक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर कलीपति रामास्वामी स्वामी को चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार मिला। पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर बुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल भूरी सागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार को मंजूरी दी है। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे चरण में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आनंद कुमार के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अतिरिक्त उर्वरक की कीमतें अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच गई हैं।
5: हाई इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस एंड
6: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
5: फ्यूल, फर्टिलाइजर एंड फॉरेन एक्सचेंज।
1: सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
7: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। LPG घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है।
8: Several key agreements were signed.
9: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से LPG की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
1: उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है।
10: अगेंस्ट दी असेसमेंट ऑफ
6: इस वर्ष के लिए निर्धारित 390.54 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में वर्तमान में उपलब्ध भंडार 200.12 लाख मीट्रिक टन है। ये कुल अनुमान का 51% से अधिक है, जो सामान्यतः रहने वाले 33% के स्तर से काफी अधिक माना जा रहा है। देश में अब तक लगभग 95 लाख मीट्रिक टन का घरेलू उत्पादन हुआ है, जबकि करीब 22.60 लाख मीट्रिक टन आयातित सामग्री भी देश में पहुंच चुकी है।
10: Like metric tons of imports have reached our shores.
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार में तकनीकी खराबी के बाद सेना और राज्य आपदा मोचन बल बचाव अभियान चला रहे हैं। बेस स्टेशन और पहले चरण के बीच सेवाएं आज अचानक बंद हो गईं और कई पर्यटक फंस गए। सेना ने कहा कि बुटापथरी बटालियन के जवानों ने मार्ग पर 3 सहायता दल तैनात किए हैं और दुर्गम इलाके में बचाव कार्य में सहायता के लिए एक ऑल टेरेन व्हीकल भी लगाया है। सेना के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण कुल 65 केबल कारें प्रभावित हुई हैं। बचाव दल अब तक 46 केबल कारों में 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल चुके हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को निकालने के लिए बचाव दल जुटे हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। एक रिपोर्ट।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। जापान के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 2 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। ईरान के शीर्ष वार्ताकार अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के लिए दोहा पहुंच गए हैं। संभावित समझौते को लेकर आशा का माहौल है। वार्ता होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार सहित प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित होगी। एक रिपोर्ट।
3: ईरान और अमेरिका के बीच जारी कूटनीतिक वार्ता में एक नया मोड़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कतर में लगभग 12 अरब डॉलर की अपनी जब्त संपत्तियों को तत्काल जारी करने की मांग की है। माना जा रहा है कि यही मुद्दा दोनों देशों के बीच संभावित समझौते की दिशा में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मध्यस्थों के जरिए हुई वार्ताओं में कई मुद्दों पर प्रगति हुई है, लेकिन अब भी दोनों पक्षों के बीच कई बड़े मतभेद बने हुए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत से जुड़ी नई शर्तें सामने रखी हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में अक्षय ने येलामन अमानगेल्डी को 4-2 से हराया। वहीं 97 किलोग्राम वर्ग में विक्की ने शेरजोत पोयोनोव को 7-5 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन अशतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादिका डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: किशोर कुमार और मन्ना डे के स्वर में अभी आपने गीत सुना। इसी गीत के साथ एक फिल्म से कार्यक्रम ही संपन्न होता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपने सुने शोले फिल्म के कुछ चुनिंदा गीत। इस फिल्म के गीत लिखी थी आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था आरडी परमन ने। मिडन वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हॉर्स पर आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी रात्रि के 9:30 होने को है। कुछ ही पलों में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे जिसे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका अरोड़ा आपके साथ। आज का ये दौर जहां हर इंसान अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में इतना व्यस्त हो चुका है कि अपनों, खासकर

0: अपने माता पिता के साथ बैठकर दो पल बात करने का समय भी मुश्किल से निकल पाता है। नौकरी की मजबूरियां, घर की जिम्मेदारियां और बेहतर भविष्य की तलाश में पलायन, इन सबके बीच सबसे ज्यादा अकेलेपन का सामना करते हैं हमारे बुजुर्ग। वो बुजुर्ग जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए समर्पित कर दी, लेकिन बदलते समय के साथ उनकी जरूरतों को समझना और उन्हें सही सहारा देना आज समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनता जा रहा है। 2011 में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 10 करोड़ थी, जो 2036 तक दोगुना होकर 23 करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। तो श्रोताओं, ऐसे में बुजुर्गों की सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और मानसिक सहारे को लेकर नई सोच और नई पहल की जरूरत महसूस की जा रही है। इसी सोच के साथ सरकार ने शुरू किए हैं जीवन ऐप और शतायु डैशबोर्ड। आज पब्लिक स्पीक में वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू हुए इन प्रयासों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाटे। आपका स्वागत है मोनाली जी।
1: धन्यवाद मैम।
0: और श्रोताओं, हमारी स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं, आप हमारे नंबर 011 जो दिल्ली का कोड है वो डायल करें और उसके बाद ये नंबर डायल कर सकते हैं 2331-0481 या 2371-1711-7 2371-7106 और 2331-4444 हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9289-0940-44। और श्रोताओं, आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर #AskAIR के जरिए भी अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध हैं। तो आगाज़ करते हैं आज के कार्यक्रम का। मोनाली जी, सबसे पहले ये बताएं कि जीवन ऐप और शतायु डैशबोर्ड क्या है और क्या उद्देश्य है इनका?
1: जीवन ऐप जॉइंट एल्डरली एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क है उसका फुल फॉर्म, और शतायु सीनियर्स होलिस्टिक केयर असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर योर यूटिलिटी। जीवन ऐप, जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि 2025 मई में माननीय राष्ट्रपति जी ने सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल को लोकार्पित किया था, उसी की सीरीज में आगे बढ़ते हुए हमने यह मोबाइल ऐप बनाया जिसका नाम है जीवन जॉइंट एल्डरली एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क। अभी आपने कहा कि जैसे हमारे वरिष्ठ जनों की पॉपुलेशन 2011 में टोटल जो 8.4% थी, अभी 2036 तक 15% की ओर बढ़ेगी। तो अगर देखा जाए तो इसके अलावा हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, 1947 में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी सीनियर इंडियन की, वो 30 से 32 सालों के बीच से आज बढ़ के हो गई है 70.3। इसको सबको नजर रखते हुए, जैसे शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक और सामाजिक जुड़ाव, आपातकालीन सहायता, इन सब चीज़ों पे विचार करते हुए हमारे मंत्रालय जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय हैं, इन्होंने जब सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल लॉन्च किया, इसी के सीरीज में यह ऐप एक वन टाइम स्टॉप सॉल्यूशन जो हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए फायदेमंद होगा, इसी को लॉन्च किया गया है। दूसरा है शतायु। शतायु एक डैशबोर्ड है जहाँ पे ट्रेंड, प्रोफेशनली ट्रेंड जेरियाट्रिक केयर गिवर, अभी तक हमारे मंत्रालय ने जितने ट्रेंड केरियाटिक केयर गिवर्स किए हैं, उन सब के बारे में वहाँ पे जानकारी है कि हमारे वरिष्ठ नागरिक अगर किसी को उनकी सेवा चाहिए तो वो वहाँ पे अपना ढूंढ सकते हैं।
0: ऐसे जेरियाट्रिक केयर गिवर्स की बात की, यानी जो बुजुर्ग देखभाल कर्मियों की जानकारी जो उपलब्ध है, तो इसी से जुड़ा एक हमारे व्हाट्सएप पे सवाल आया और सीनियर सिटीजन्स के बहुत सवाल आए आज मोनाली जी हमारे पास व्हाट्सएप पे। और पहला सवाल ये है कि हाउ कैन आई गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट जेरियाट्रिक केयर प्रोवाइडर्स अवेलेबल इन माई लोकल एरिया, डू आई नीड टू पे एनी चार्जेस फॉर सर्चिंग द केयर वर्कर्स? ये है नैना का सवाल मुंबई से।
1: जी थैंक यू नैना जी। जेरियाट्रिक केयर गिवर का जो अगर आप डैशबोर्ड खोलेंगे तो उसमें आपके लोकेलिटी पे जो आप रहते हैं वहाँ पे मुंबई में या महाराष्ट्र में, जैसे आपने मुझसे कहा जी, तो वहाँ पे कितने ट्रेंड जेरियाट्रिक केयर गिवर्स हैं उसके बारे में आपको तहत जानकारी मिलेगी। उसमें एक नंबर होगा जहाँ पे आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा जस्ट टू वेरीफाई कि आप एक जेन्युइन पर्सन है, एक ओटीपी आते ही आपका जेन्युइन चेक करके वहाँ के जितने प्रोफेशनल केयर गिवर्स है वहाँ पे एक मैसेज चला जाएगा उनको कि आप ये सेवा चाहती है, उसके हिसाब से जो भी फ्री होंगे या अभी कहीं काम नहीं कर रहे होंगे वो आपको कॉल बैक करेंगे आपके नंबर पे और फिर आप उनकी सुविधाएं यूज कर
0: पाएंगे। तो ये नंबर्स रजिस्टर्ड होंगे, जैसे अगर हमने हमें ओटीपी आएगा और अगर कोई बुजुर्ग है वो चाहता है कि है, तो ये इसको अगर हम वेरीफाई करने के लिए तो उनके पास कुछ रिकॉर्ड होगा या मेडिकल हिस्ट्री भी ऐसी कुछ भी देनी होगी उस समय?
1: नहीं, एक सीनियर सिटीजन या उसके घर के परिवार वाले अगर फोन करते हैं तो उनको वेरिफिकेशन के लिए उन्हीं के मोबाइल पे ओटीपी आएगा
0: जी,
1: कि हमारे जेरियाट्रिक केयर गिवर का वहां पे सिर्फ नाम होगा, वो किस जेंडर का है वो होगा और प्रोफेशनली क्वालिफाइड है ये होगा
0: जी,
1: इसके अलावा वहां पे कोई जानकारी नहीं होगी।
0: और एक और सवाल आया है हमारा,
1: इसका पार्ट टू भी,
0: ये डू आई नीड टू पे एनी चार्जेस, के लिए क्या पेड है, भुगतान देना पड़ेगा?
1: जी नहीं, किसी भी नागरिक को इस सेवा के लिए कोई भी भुगतान नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ एक ओटीपी से अपना जेन्युइनिटी वेरीफाई करना होगा। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी, जब आप इनकी सर्विसेज लोगे, आपने किसी की सर्विसेज हायर की है उस पे, तो इस हिसाब से आपका जो भी पेमेंट होगा वो आपके वहाँ के अवेलेबल चार्जेस पे आपको देना पड़ेगा, पर इसका पुलिस वेरिफिकेशन हो, कैरेक्टर वेरिफिकेशन हो, वो आप ही को करना पड़ेगा। हम सिर्फ प्रोफेशनली ट्रेंड केयर गिवर्स दे रहे हैं
0: जी, हम सब जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं और बाकी की जो प्रोसेस होगा वो अकॉर्डिंगली होगा
1: जी।
0: सबसे पहले हमारे श्रोता जुड़े हैं दिल्ली से, धर्मवीर जी। हेलो,
2: नमस्कार मैडम, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको आपको भी मालूम है कि सीनियर सिटीजन जब अपनी एज पे आ जाते हैं तो धीरे धीरे उनकी कान सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है
1: जी,
2: वो फोन चलाने लायक नहीं रह जाते और कोई स्मार्टफोन नहीं चलाना जाता हो, कई लोग ऐसे हैं जो मोबाइल ही चलाना नहीं जानते, बुजुर्ग सीनियर सिटीजन है, तो ऐसे लोगों की क्या एक अलग ही प्रॉब्लम होती है? कोई बर्थ दिव्यांग है, किसी के दोनों पैर खराब हैं, वो अपने घर से तो निकल भी नहीं सकते, उनको तो लैट्रिन बाथरूम बिठाने के लिए भी
0: जी मतलब आप ये जानना चाह रहे हैं कि जो स्मार्टफोन से या तकनीक से बहुत परिचित ना हो और जो ये एक्सेस ना कर सके तो उन्हें किस तरह से सहायता मिलेगी? जी धर्मवीर जी, और संजय सूरी जी का भी हमारे पास इसी से जुड़ा सवाल है व्हाट्सएप पे, कि जैसे जो कई बार सीनियर सिटीजन्स हैं जो वो बहुत सेवी नहीं है, जो मतलब टेक्निक्स और जो आजकल की जो नई सेवाएं आ रही हैं वो मोबाइल पे वो नहीं चाहते, तो उनके लिए ये कैसे हेल्प करेगी और कौन हेल्प कर सकता है इसको लेकर?
1: जी, इसमें एक हमारा एल्डर लाइन है 14567, ये नंबर हमारा एल्डर लाइन का है जो हमेशा इस ऐप से जुड़ा हुआ है। कोई भी वरिष्ठ नागरिक 14567 पे डायल करके जो भी सेवाएं हैं वो उसके बारे में तहत जानकारी ले सकते हैं। उसके लिए उस मोबाइल जानकारी होना या मोबाइल पे टेक सेवी होना ज़रूरत नहीं है
0: जी। थैंक यू मोनाली जी, क्योंकि बहुत बड़ा प्रश्न था जो हमारे एल्डरी के लिए। और एक और हमारा व्हाट्सएप पे प्रश्न है, ये है कमल कांत जी का हैदराबाद से, कि हाउ कैन सीनियर सिटीजन्स गेट हेल्प इन केस ऑफ इमरजेंसीज, अगर आपातकालीन कई बार होता है और बहुत इमरजेंसी कोई होता नहीं क्योंकि अकेलेपन में रहते अकेले रहते हैं, तो उस समय बुजुर्ग को जो बुजुर्ग है वरिष्ठ नागरिकों को किस तरह से सहायता सुलभ हो सकती है?
1: जी थैंक यू कमलकांत सर आपके क्वेश्चन के लिए। जैसे मैंने कहा कि हमारे जो जीवन ऐप में भी और सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल पे भी आपको पता होगा राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 14567, तो यही सुविधा इमरजेंसी में हमारे वरिष्ठ नागरिक यूज़ कर सकते हैं। जब आप जीवन ऐप करते हैं तो इसका हमने 112 और 108 के साथ भी उसी पे एक सुविधा प्रदान की हुई है, जिसके माध्यम से आप तीनों नंबर्स पे कहीं भी अपना हेल्प या इमरजेंसी पे आप कॉल कर सकते हैं।
0: और एक बहुत ही विशेष अनुरोध आया है हमारे पास व्हाट्सएप से, कि आप प्लीज जो क्वेश्चनों का जो आंसर है वो मराठी में चाहते हैं, और उनका प्रश्न ये है, अरुण पवार जी हैं, उनका प्रश्न ये है कि हाउ कैन आई फाइंड नियर बाय वॉक इन सेंटर फॉर सपोर्टिंग एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस फ्रॉम जीवन मोबाइल ऐप। अनुरोध किया है उन्होंने बहुत ही।
1: थैंक यू अरुण पवार जी, मी तुम्हाला मराठीमध्येच उत्तर देईल। आमच्या याच्यात राष्ट्रीय वयोश्री योजनेच्या तहत पुष्कळसे सेंटर्स ऑनलाईन अवेलेबल आहेत, तुम्ही तिथे नाव टाका आणि तुमच्या जागेत तुम्हाला मिळेल। अभी मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करके बोलना चाहूंगी कि राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत हम लोग जैसे कैंप्स लगाते हैं वो ऑनलाइन सेंटर्स के पूरी जानकारी 100 के करीब हमारे दिव्या वयोश्री केंद्र है वहाँ पे बुजुर्ग जाके अपने एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस की जरूरतें जो होंगी वो आधार कार्ड का देके परिचय पत्र देके ले सकते हैं। तो ये जानकारी ऑलरेडी हमारे जीवन ऐप पे भी अवेलेबल है
0: जी। और सवाल है गोपाल सोनी जी का राजस्थान के सीकर से और संजय सूरी जी का जो कई उनके जो प्रश्न हैं दोनों के वो समान हैं। उनका कहना है कि ये जानना चाहते हैं कि जो ऐप लॉन्च किए गए हैं उसमें जो वरिष्ठ नागरिकों को किस प्रकार से लाभ मिलेगा।
1: जी संजय सूरी जी और गोपाल सोनी जी आपके सवालों के लिए तो पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि जीवन ऐप के बारे में मैं अभी थोड़ा सा विस्तार से आपको जानकारी देना चाहूँगी। जीवन ऐप में वरिष्ठ नागरिकों के लिए आसपास के सीनियर सिटीजन होम जिसको हम वयो आश्रम बोलते हैं उसकी पूरी जानकारी जो हमारे मंत्रालय से ग्रांट्स पाते हैं उनकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी विद ज्योग्राफिकल लोकेशन नाम पता। दूसरा है एल्डर लाइन जैसे मैंने कहा 14567 उसका 112 और 108 के साथ। तीसरी है हमारे राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत जितने कैंप्स लगने वाले हैं और जितने वॉक इन सेंटर्स से हैं उसके बारे में। चौथी जानकारी आपको मिल सकती है जहाँ पे हमारे बहुत से सीनियर सिटीजन जो है अपने पेंशन योजना के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या स्कीम है कहाँ से लिया जाए या फिर आयुष्मान भारत कार्ड जो है जहाँ कहाँ से मिल सकता है क्या क्या सुविधाएं हैं कहाँ अप्लाई करना हो इन सब के बारे में इस प्रोग्राम पे हम लोगों ने एक इंटीग्रेशन शुरू किया हुआ है। इसके अलावा हमारे जितने भी समझौता ज्ञापन हुए हैं एमओयू हुए हैं वो आयुष डिपार्टमेंट ऑफ आयुष हो ब्रह्म कुमारीज हो वेव विकास हो या जिस भी संस्थाओं के साथ हमारा काम चल रहा है हमारे जितने भी स्कीम्स के बारे में जो हमारा ब्यौरा है हम लोग इंटर जनरेशनल बॉन्डिंग के प्रोग्राम कर रहे हैं हमारे जो भी नए पहल हैं इसकी गैलरी है मैसेजेस है अनुभव बोलता है जहाँ पे सीनियर सिटीजन्स आके भी बोलते हैं तो ये सब जानकारी आपको उस जीवन ऐप में भी उपलब्ध होगी।
0: और संजय सूरी जी का एक और दूसरा प्रश्न ये है क्योंकि जैसे आपने अभी मराठी में जवाब दिया तो ऐसे कई श्रोता जानना चाहते हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी जो सुविधा दी जा रही है तो उपलब्ध होगी।
1: जी इसका इसका प्रयास चल रहा है और तुरंत ये उपलब्ध हो जाएगी
0: ताकि लोगों को आसानी हो।
1: जी, और जो संजीवनी
0: संजय सूरी जी और सासाराम बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं अमित उपाध्याय जी।
3: जी नमस्कार मैं सासाराम बिहार से बोल ये इसमें मैडम ने अभी बताया बहुत अच्छा कि दूर दराज तक कैसे हम लोग इसको पहुंच बना सकते हैं। मेरा इसमें एक इसमें और ऐड करना था कि क्या जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो दूर दराज तक जो उसमें कुछ ऐसा रेशियो भी है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो चल नहीं सकते हैं तो उन तक हम लोग कैसे पहुँच सकते हैं। तो इसमें ये हो सकता है कि जैसे सेवा केंद्र के माध्यम से या कुछ ऐसा अपॉइंटमेंट हो जैसे अभी ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण बैंक की जो सेवाएं हैं वो लगातार पहुंच पर नहीं है उसके हिसाब से कुछ ऐसा प्रोग्राम करके ताकि वहां तक दूर बैठे लोगों तक भी वो पहुंच सके। जो मैडम ने बताया था बहुत अच्छा अच्छा है ये भी हो सकता है कि कुछ 10% 20% जो भी थोड़ा बहुत छूट दी जाए तो वहां तक हम लोग पहुँच बना सकते हैं। जी
0: सुझाव दे रहे हैं अमित जी की दूर दराज क्षेत्रों तक अगर पहुँच बढ़ानी हो तो।
1: जी अमित उपाध्याय जी सासाराम से थैंक यू आपके प्रश्न के लिए। हमारे बिहाफ पे हमारे स्टेट गवर्नमेंट जितने भी है वो भी हमारे तहत हमारा बहुत सा कार्यक्रम इस पे सुचारू रूप से चलाते हैं। तो यही नहीं है कि केंद्र में ही हम चला रहे हैं पर आप अपने डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर या सामाजिक न्याय मंत्रालय जो आपके स्टेट के हैं बिहार के जैसे तो आप वहाँ भी जाके उनसे ये मांग सकते हैं। वहाँ भी वो हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक वेलफेयर ऑफिसर होता है तो हमारी पहल ऑलरेडी स्टेट्स गवर्नमेंट के साथ पहल शुरू हो चुकी है कि आप तक हम पहुँचे।
0: जी हाँ तो सिर्फ ये शहरों तक सीमित नहीं है तो पूरे देश में हर कोने तक इस सुविधा को पहुंचाने का लक्ष्य है सरकार का। मोनाली जी अगर देखूं जैसे हमने शुरुआत में अकेलेपन की भी बात की तो जो वरिष्ठ नागरिकों के जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए अगर हम बात करें तो ये कितनी उपयोगी हो सकती है।
1: मैं इसमें एक आपको उदाहरण पेश करना चाहूँगी. हमारा जो 14567 है इस पे बहुत से हमारे सीनियर सिटीजन हैं 40-45 मिनट सिर्फ बोलते हैं क्योंकि अकेले रहते हैं तो उन्हें कोई बोलने वाला चाहिए. तो ऐसे हमारे पास बहुत से एग्जांपल्स हैं जहाँ पे बुजुर्ग हमसे बातें करते रहते हैं. तो इसके साथ साथ अभी हमारे मंत्रालय ने माननीय मंत्री जी ने भी इंटर जनरेशन बॉन्डिंग पे काफ़ी जोर दिया है. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन

0: एजुकेशन के साथ भी हमने ऐसे बहुत से प्रोग्राम साझा करने चाहे हैं, वॉकथॉन्स करते हैं, इंटरजनरेशन बॉन्डिंग के नाम पे बहुत से हमने सीरीज भी शुरू की है। तो हर तरह से प्रयास स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है कि हम ये जो सामाजिक इंक्लूसिव सोसाइटी हमारे बुजुर्गों के साथ एकजुट होके चले का प्रयास करते हैं कि वो अकेलापन महसूस ना करें।
1: जी हाँ, तो मतलब इसमें जो है कई समाजसेवी संस्थाएं भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकती हैं।
0: जी
1: ठीक है, मतलब ताकि जो ज़्यादा लोगों तक अगर हम हों तो पहुंच बना सके। तो अगर मैं एक संक्षेप में जाना चाहूँ, आपने जैसे कुछ कुछ योजनाएं बताई और जैसे आयुष्मान योजना है, तो क्या ये भी हमें उपलब्ध होगी? और जो बेसिक योजनाएं हैं वयोवृद्ध जो हमारे जन हैं उनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की, तो एक बेसिक जानना चाहती हूँ कि मुख्य तौर पर क्या क्या योजनाएं हैं, आप संक्षेप में बताएं।
0: अभी तो हमने जो जीवन पोर्टल जो लॉन्च किया है उसमें हमने आयुष्मान भारत जो हमारे सीनियर सिटीजन या सीनियर नागरिकों के लिए हैं आभा कार्ड, उसके लिए हमने प्रयास किया है। ओल्ड एज पेंशन जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट देता है उसके लिए प्रयास किया है। जीवन प्रमाण जो पोस्टल और बाकी मिनिस्ट्रीज देती है उसका भी इंटीग्रेशन चल रहा है। तो ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स हैं जो हमने अपने वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाते हैं भारत सरकार, उसका बैकएंड से इंटीग्रेशन हमने अभी धीरे धीरे शुरू किया हुआ है इस पोर्टल के माध्यम से कि हमारे बुजुर्ग वन स्टॉप सॉल्यूशन या वन प्लेटफॉर्म पे ही उन सबको ये मिल जाए।
1: अच्छा, मतलब एक ही जगह पे, क्योंकि कई योजनाएं हैं, कई जो उसके ऐप्स भी उपलब्ध हैं, लेकिन एक ही जगह पे सारी योजनाएं उपलब्ध है, तो उससे बहुत सहूलियत होगी जो हमारे वृद्ध जन हैं। पुणे से जुड़े हैं श्रीपद झाकड़े जी।
2: हेलो
1: हेलो
2: हेलो,
1: नमस्कार श्रीपद जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद। मैं श्रीपाद झाकड़े बोल रहा हूँ पुणे से। तो मेरा सवाल ये है कि मैं दृष्टिहीन हूँ और वृद्धाश्रम में रहते हैं, मतलब हम तो मतलब हम लोगों को किस प्रकार इन सेवाओं का लाभ मिल सकता है? कारण हमारे पास कोई स्मार्टफोन भी नहीं है और कोई हम ऑपरेट नहीं कर सकते, तो हमको कैसे मतलब इसका उपयोग हो सकता है मतलब हम लोगों को?
1: जी हाँ, दृष्टिहीन है और वृद्धाश्रम में रहते हैं, स्मार्टफोन नहीं है, तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए क्या उपाय है?
0: श्रीपाद जी, आप पुणे से बोल रहे हैं सीनियर सिटीजन होम से?
1: जी, अब डिस्कनेक्ट हो गया है, पर हाँ जी, हाँ, उन्होंने बताया वृद्धाश्रम
0: से रहे। तो हमने जो जीवन ऐप लॉन्च किया है इसमें तो हर जानकारी है। इसके अलावा जितने एनजीओ जो सीनियर सिटीजन होम्स को कार्यान्वित कर रहे हैं, जो मेंटेन कर रहे हैं, वो भी इस ऐप को देख के जो जो कार्यक्रम आसपास हो रहे हैं उसकी पूरी जानकारी उस पे है। आप अपने मैनेजमेंट स्टाफ को भी पूछ के ये जानकारी वहाँ से ले सकते हैं।
1: जी हाँ, तो बहुत इजी करने की कोशिश की गई है और आप तक पहुंच बढ़ाने की सरकार की कोशिश की गई है। अगर मैं विशेषता जानना चाहूँ इस ऐप की और इस डैशबोर्ड की, तो क्या है जो बुज़ुर्गों के लिए हो, क्योंकि जो टेक्निकल जो इतने सेवी नहीं है और स्मार्टफोन्स जिनको चलाने इतने ख़ास नहीं आते, तो ऐसे में उनके लिए क्या विशेषता है?
0: पहले बात करते हैं शतायु की। शतायु नाम ही इसलिए हमने दिया है कि आप 100 साल जिए, तो हम आपके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य या भावनात्मक सामाजिक जुड़ाव के लिए हमने शतायु ऐप नाम उसका किया है, जहाँ पे आपकी सुविधा के लिए जेरियाट्रिक केयर गिवर्स के मदद मिले कि आपको डेली कंपेनियनशिप हो, आपके वेलबीन के लिए हो, योगा हो, इन सब के लिए आपको मदद मिले। आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है, ऐप पे जाके आप सीधा आपके आसपास के जितने भी प्रोफेशनली ट्रेंड है उसके बारे में जानकारी करके उनकी सर्विसेस ले सकते हैं। अब आते हैं हम जीवन ऐप, जो दूसरा हमने पोर्टल लॉन्च किया है जीवन, उसके तहत ना ही जैसे मैंने कहा कि सीनियर सिटीजन होम्स, राष्ट्रीय वयोश्री कैंप और बाकी भी है, इसके अलावा बहुत से ऐसे भी हमारे पास कार्यक्रम होते हैं जिस पे आप डायरेक्टली लॉग करके आप इसके ऑनलाइन जुड़ के भी आप ले सकते हैं जानकारियाँ।
1: जी जी, तो मतलब आप जानकारी लेना भी आपके लिए आसान, और सबसे आसान तो ये है कि जो आपने एल्डरली जो हेल्पलाइन नंबर बताया हुआ है, तो 1-4-5-6-7-1-4-5-6-7, इस पर अगर आपको कोई भी शंका, कोई भी दुविधा है, तो आप इस नंबर पर डायल करके अपने सवाल के जवाब पा सकते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर से जुड़े हैं रशीद अहमद खान जी।
3: नमस्ते मैम।
1: नमस्कार।
3: आप सभी लोगों को आगामी पर्व जो है की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं।
1: जी धन्यवाद
3: जी। और हाँ जी, मतलब सवाल मेरा ये है कि क्या जितने वरिष्ठ नागरिक लोग रहते हैं या अकेले रहते हैं या किसी परिवार में भी है मान लें, क्या उनको कोई वैधानिक समस्या आ रही है, उनके परिवार के लोग उनको इग्नोर कर रहे हैं या मतलब टॉर्चर कर रहे हैं, कुछ कानूनी हेल्प मिलती है उनको?
0: जी रशीद जी, आपके सवाल के लिए धन्यवाद। और जैसे मैंने कहा कि 14567 ये जो हेल्पलाइन है, इसके तहत आपको ये सब जानकारी और मदद तो मिलेगी मिलेगी। इसके अलावा 112 जो आपका ERSS नंबर है, इस पे भी आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, जिस पे आपको बाकी मदद भी वहाँ के वहाँ पहुँचाई जाएगी।
1: जी हाँ, तो दो नंबर्स मैम ने बताए हैं, 14567 और जो कनेक्टेड हैं 112 के साथ भी। तो कोई भी आपात स्थिति हो, इमरजेंसी हो, तो आप इन नंबर्स पे डायल करके आप सेवा ले सकते हैं। अगर जैसे वरिष्ठ लोगों को जो इतने अगर नहीं सुन रहे हैं कार्यक्रम, या उन तक ये पहुंच नहीं हो पा रही है कि ये जो सुविधा सरकार ने शुरू की है, तो उन तक इस बारे में जागरूकता लाने के लिए, इन सेवाओं के बारे में उन्हें शिक्षित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?
0: एक तो मुझे आकाशवाणी का थैंक यू बोलना चाहिए, फिर पब्लिक लाइव हुए हैं तो सब पब्लिक जहां भी है वो सुन रहे हैं, तो एक तो ये पब्लिक डिसेमिनेशन है ही
1: जी,
0: प्रेस के तहत और स्टेट गवर्नमेंट, जैसे मैंने कहा कि हमारे बिहाफ पे वो भी बहुत से प्रोग्राम चलाते हैं, तो उनके तहत भी हम ये जीवन ऐप जो है वो भी इसके बारे में वहाँ पे इन्फॉर्मेशन देंगे, तो हर वरिष्ठ नागरिक तक पहुँचने की हम लोग ज़रूर प्रयास कर रहे हैं।
1: जी हाँ, जैसे हमने जेरेट्रिक केयर गिवर्स की बात की, और जैसे हमें तो खैर उस बारे में जानकारी उपलब्ध होगी, पर अगर हम हर क्षेत्र की बात करें तो वहाँ जब भुगतान करना है, तो अगर हम जाएँ दूर दराज के क्षेत्रों में और जो भुगतान सेवा है तो उधर भी उपलब्ध होगी, जो ये प्रोवाइडर्स होंगे, केयर गिवर्स जो होंगे, जो स्वास्थ्य देखभाल जो कर्मी होंगे, कि वहाँ पर भी उपलब्ध होंगे ये इतनी दूर दराज के क्षेत्रों में भी?
0: जी, अगर वहाँ पे जैसे दूर से कोई ट्रेंड है उस जगह से, जैसे बिहार से सासाराम से, अगर वहाँ पे कोई प्रोफेशनली ट्रेंड जेरेट्रिक केयर गिवर है, तो उसके आसपास के लोकेलिटी में जितने लोग हैं उस डिस्ट्रिक्ट में, वो उसकी पूरी जानकारी वहाँ मिल जाएगी।
1: जी, दिल्ली से जुड़े हैं राजकुमारी जी।
4: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते,
4: मैं राजकुमारी रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ और दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरी आयु 82 वर्ष है मैडम
1: जी।
4: आपके मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया जीवन ऐप क्या है, और सीनियर सिटीजन्स को इससे क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी मैडम?
1: जी राजकुमारी जी, एक बार आपसे गुजारिश है, फिर से बता दें ऐप के बारे में और क्या इससे लोगों को फायदा होगा।
0: नमस्कार मैम, जीवन जॉइंट एंडली एम्पावर एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क ऐप है, जो एक मोबाइल सॉल्यूशन है। जीवन ऐप में आपको आपके आसपास होने वाले सीनियर सिटीजन होम्स हो, राष्ट्रीय वयोशी कैंप्स हो, जो डिस्ट्रीब्यूशन या वॉक इन सेंटर जहाँ पे आप जाके अपने एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस ले सकते हैं, इसके अलावा एल्डर लाइन जो हेल्पलाइन है, और 112 इसके बारे में आप जानकारी, आपको किसी भी चीज़ की अगर कोई ज़रूरत हो तो इस वाले में 112 और 14567 पे डायल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जितने भी सीनियर सिटीजन्स है, उनकी जो जैसे आभा कार्ड है, या वयोश्री पेंशन योजना है, या जितने भी सीनियर सिटीजन के लिए स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऐप्स है, उसका इंटीग्रेशन के बारे में जो प्रयास चल रहा है, तो इसकी सब जानकारी जो हमारे वयोश्रेष्ठ नागरिक है उनको मिलने के लिए हमारा मंत्रालय का एक छोटा सा प्रयास है।
1: जी, तो इसमें जैसे आपने स्टेट गवर्नमेंट की भी बात की, तो राज्य सरकारों की क्या भूमिका रहेगी?
0: राज्य सरकार की भूमिका ये होती है, जैसे हम बड़े मेजर इस पे काम करते हैं, वो माइक्रो लेवल पे काम करते हैं, जहाँ पे वो हर व्यक्ति के आसपास के या उस स्टेट्स के रिलेटेड की ज़्यादा जानकारी उन्हें होती है। एक माइक्रो लेवल पॉलिसी हम बना लेते हैं, पर वो उसको इम्प्लीमेंट करने का काम मोस्टली राज्य सरकारों का होता है, क्योंकि वो एक आम नागरिक से जुड़ते हैं, हम लोग डायरेक्टली नहीं जुड़ पाते, तो हमारा माध्यम होता है थ्रू स्टेट गवर्नमेंट। तो वहाँ पे जितने मेडिकल कैंप्स लगने हैं, ऑपरेशंस कैटरेक्ट के होने हैं, या जो ट्रेनिंग करवानी है, या डिमेंशिया स्क्रीनिंग हो रही है, तो वो सब जानकारी जो भी कैंप्स करवाने या जो भी आईसी मटेरियल की जानकारी होती है, वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है।
1: जी, उत्तर प्रदेश के रायबरेली से जुड़े हैं रमा शंकर जी।
5: नमस्कार,
1: आपका सवाल।
5: हाँ जी, मैं ये पूछना चाहता था कि जैसा बहुत लोगों ने प्रश्न किया है कि जो वयोवृद्ध हैं,
6: वरिष्ठ नागरिक हैं जो स्मार्टफोन नहीं चलाते हैं, दूर दराज गांवों में रहते हैं, उनके लिए ऐप के अलावा और क्या व्यवस्था हो सकती है, यह व्यवस्था क्या की गई है, कृपया बताएं।
1: ऐप के अलावा और क्या व्यवस्था है कि उन तक ये जो फायदे हैं और ये जो योजनाएं हैं ये प्रयास है पहुंचे।
0: रामाशंकर जी आपको मोबाइल टेक सेवी होने की ज़रूरत नहीं है, आप 14567 डायल करते ही आपको पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि इस ऐप में क्या है, या फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए मंत्रालय का क्या दायित्व है और मंत्रालय के क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं।
1: अगर उन्हें का स्मार्टफोन भी नहीं है तो क्या करें।
0: 14567 अच्छा, में आपको स्मार्टफोन की भी जरूरत नहीं है, नॉर्मल इससे भी आपका वो टोल फ्री नंबर है, आप डायल कर सकते हैं।
1: जी हाँ, तो अब आपकी जो समस्या था उसका निजात कर दिया मोनाली जी ने। मध्य प्रदेश
0: मंत्रालय ने
1: जी राजेश नेमा जी जी राजेश जी आपका सवाल क्या है।
7: जी मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ
1: जी।
7: तो मेरा सवाल ये है कि वर्तमान की जो आपाधापी है उसमें घर में जो बुजुर्ग रहते हैं वो परिवार से तालमेल नहीं बिठा पाते, तो इस स्थिति में वह ऐप क्या मदद कर सकता है।
1: जी राजेश जी, अब अक्सर आप देखिए कि सवाल ये है कि आपस में अगर घर में थोड़ा सा मनमुटाव रहता है तो उस स्थिति में ऐप का, हालांकि मैम ने बताया कि नंबर ही है 14567, और इसके अलावा क्या उन तक सहायता हो सकती है। मोनाली जी
0: राजेश जी, जैसे हमने कहा कि परिवार के अंदर तो हम नहीं जाएंगे, परिवार का आपसी मनमुटाव तो अपना पारिवारिक जीवन ही होता है, पर इसके अलावा अगर एब्यूज़ हो रहा है, मारपीट हो रही है, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, तो आप 112 और 14567 पे ज़रूर आप इस पे रेस करिएगा, हम आपके लिए जस्ट वन कॉल अवे हैं।
1: जी, तो अगर हम युवा पीढ़ी की बात करूं इसमें, तो युवा पीढ़ी किस तरह से सहायता दे सकती है।
0: जी थैंक यू इस सवाल के लिए, हमारे आदरणीय मंत्री जी भी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी इसके लिए काफ़ी प्रयास करते रहते हैं कि हम इंटर जनरेशनल बॉन्डिंग और युवाओं को कैसे शामिल किया जाए कि हम बुज़ुर्गों के प्रति सम्मान बढ़ाए जाए, तो इसके साथ हमने बहुत से ऐसे कुछ कार्यक्रम चलाने की कोशिश की है, जैसे ग्रैंड पेरेंट टीचर मीट स्कूलों में हो जाए, वॉकथॉन्स हो जाए, प्लेज ऑनलाइन प्लेजेस लेने चाहिए, तो इवन जेरेट्रिक केयर गिवर जो है वो युवाओं के लिए ही है कि आज का युवा कल जाके जो बुजुर्ग हो तो उसके लिए वो अपने घर वालों की कैसे सेवा कर सकता है, तो इससे हम युवाओं को भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
1: तो अगर मैं भविष्य में देखूं, अगर आपने जैसे योजनाएं बताई, जो स्कीम्स बताई इसमें है, तो और आगे भविष्य में किस तरह की चीजें इसमें एड ऑन करने की आपकी वो है योजना है।
0: जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी वरिष्ठ नागरिकों के प्रति हमारा जो दायित्व है और दो पिलर्स है, एजिंग विद डिग्निटी और एजिंग एट प्लेस, हम ये चाहते हैं कि भाई हमारा बुजुर्ग जो है अपने घर में ही रहे और पूरे सम्मान के साथ अपना जीवन व्यापन करे
1: जी।
0: तो इसके जैसे मैंने कहा कि पहले भी हमने बहुत से ऐप्स को जोड़ने की कोशिश की है, हमसे यही रहेगी उम्मीद कि हम और इस पर जोड़ते जाएँ।
1: जी धन्यवाद मोनाली जी इस बारे में जानकारी देने के लिए। अगर देखें तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, जीवन ऐप और डैशबोर्ड, ये शतायु डैशबोर्ड है, तो तकनीक और संवेदनशीलता का ये बहुत ही अनोखा संगम है जो बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवाओं, सहायता, देखभाल और सरकारी सुविधाओं से जोड़ने का महत्वपूर्ण प्रयास है। तो ये पहल हमारे बुजुर्गों के जीवन में उम्मीद, सुरक्षा और सम्मान को नई रोशनी देगी, यही उम्मीद करते हैं। आप स्टूडियो में आई और विस्तार से चर्चा की इस बारे में धन्यवाद, और अपने श्रोताओं का भी धन्यवाद करते हैं जिनके व्हाट्सएप पे हमें प्रश्न मिले और जिनके हमें कॉल्स आए, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगले सप्ताह सोमवार को फिर मुलाकात होगी। प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।

मिनीवेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हॉर्स पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत और इस कार्यक्रम के अंतर्गत लीजिए सुनिए देवव्रत चौधरी का सितार पर बजाया राग मिश्क खमाज़।

शास्त्र संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने सुना देवव्रत चौधरी का सितार पर बजाया राग मिश्क माज। मिणदेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हॉर्स पर आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की गर्मी रात्रि के 10:30 होने को है। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम मन चाहे गीत।

मंच गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुमन मलिक का प्यार भरा नमस्कार। तो ये बिना देरी करे सुनाते हैं आपको आपकी पसंद के कुछ चुनिंदा गीत। पहले गीत के लिए हमारे पास फरमाइश आई है नया पारा भिराई से है हमारे श्रोतागण वसंत कुमार सूर्यवंशी, सरोज, ईश्वरराज, चंद्रकांत, प्राची, ट्यूशी सूर्यवंशी। बेमतरा से ही पूर्णिमा सारकी, पूजा आरती, भाव्या सारकी, सुषमा सारती। नवागढ़ कटरी से हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा। संबलपुर कांकेर से हैं फागुन यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, इशिका यादव, तेजल यादव। प्रमिलागंज मुलुट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजूभाई वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल ज्योति, अतुल पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा, ऋषि वर्मा। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हैं हरदेव मीका, बलविंदर विरक, प्रतीक विरक और मीका विरक। आइए आप सबकी फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म का एक खूबसूरत सा नगमा जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

निजी सुनी जगजीत सिंह का गाया गीत फिल्म का नाम है प्रेम की, बोल हैं इंद्रवर के, और इस गीत के लिए हमारे पास फरमाइश है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी सिंह, द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जविंद्र कुमार वर्मा, हरिद्वार से हैं लाताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही मेरा जहां, खुर्जा उत्तर प्रदेश से हैं तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा। इसी गीत के लिए हमारे पास फरमाइश आई है सोमनाथ जिला जालना से चलगांव से हैं जो कि डॉक्टर नामदेव भुतेकर, अभिषेक गणेश, कार्तिक अश्वनी, जलगांव वैष्णवी, हर्षुल सावंगी, वैभव गौरव, भाव सिंगापुरा और मेघराज के साथ हैं युवराज। डीएलएफ कॉलोनी रोहतक से हैं महेंद्र शाह, हरिंद्र शाह, जितेंद्र शाह, मानसी शाह, गांधी चौक राजस्थान से हैं बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष, और पेरड़ी से हैं कमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक, प्राची और तनु करमरकर।

यादगार है, ये सुनते हैं स्विम का एक खूबसूरत सा नगमा, आवाज़ है लता मंगेशकर की, और आप सबकी फरमाइश पर ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। चंडीगढ़ से हैं सतीश अनेजा बिमला अनेजा, औरंगाबाद से हैं प्रकाश वकानकर प्राजक्ता और उनके परिवार के सभी सदस्य, मेरठ कैंप से हैं यूपी से हैं दिग्दर्शन और कविता मास्टर खिल्लू परवेज इमराना नाज नवाजे शेख ताने शेख अमन आफिदी, यूपी से हैं अशोक वर्मा अर्चना वर्मा अनुज वर्मा आयुष वर्मा रमेश चंद्र वर्मा शेख राजकुमार बिड़ाना, आदलपुरा गुड़गांव से हैं संजीव बावनिया माया कान्हा और कृष्णा, पद्मा टाकेश नेपागढ़ से हैं सुदर्शन शाह पल्लवी शाह प्रकर्ष शाह कुशल शाह नीति सुरभि अश्वनी मंगला और राजेंद्र शाह, इसी गीत के लिए फरमाइश हैं केरल से हैं सागर और आम्रपाली, खुर्जा यूपी से हैं तिलक राज अरोड़ा, ताज मंजिल खंडवा से हैं मोहम्मद सलीम पवार मोहम्मद साकीम पवार और मोहम्मद हंसलिंग पवार। तो ये सुनते हैं लता मंगेशकर का काया गीत, फिल्म का नाम है यादगार।

आइए आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार का गाया गीत। फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर और फरमाइश है शेरकोट बिनोर से है मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और धीना कोसर। आदर्श नगर मुलोट से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा, निवान शर्मा। कनेरा मोहल्ला पटियाला से हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू निहारिका, वंश बत्ता। मलोट पंजाब से हैं राजकुमार इंदौरा, बिमला इंदौरा, गैरी इंदौरा, विकास, प्रियंका, रमन, रितु, भविष खन्ना, मिसेल खन्ना, किंशु खन्ना, दीपांशी। अनारकली बाजार जगराओं से हैं

कार्यक्रम का अगले गीत के लिए हमारे पास फरमाइश आई है, मलोट कैंप पंजाब से हैं सतीश मिकलानी, सीमा अनमोल धर्मपाल और वीर सिंह डाटी, लखविंदर संधू, महावीर संधू, गुरचरण ग्रोवर और रमेश मिकलानी की। इसी गीत को सुनना चाहते हैं आदर्श कौम बिल्याली जल अभिमानी सी दर्शन लाल बंसल, सुधीश रानी बंसल, प्रवीण कुमार बंसल, अमित कुमार बंसल, ममता रानी बंसल, कमल कुमार बंसल, करविश तमन्ना बंसल, पटेल नगर मलोट पंजाब से हैं रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीन जाजोरिया, आरजू जाजोरिया, डाबर तनाव लोनी से हैं रजा अहमद, आरिश हुसैन, ईशान हुसैन, मयम मिश्रा, फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से हैं गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर मनमीत, मनविंदर पांधा गांव नथाना से हैं, हरजिंदर सिंह चांदा, जसवीर, रेखा, गगन, सोनी, सीता और गीता। इसी गीत के लिए हमारे पास फरमाइश आई है परमिलागंज मध्य प्रदेश से हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजू बाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, इन्हीं के साथ हैं राहुल ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियंका और ऋषि वर्मा, रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। आइए आप सबकी फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं प्रोफेसर फिल्म का ये गीत। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने।

सुनी कार्यक्रम के अंत में मुकेश की आवाज़ में कि तुमका नाम है अनोखी रात और इस गीत के लिए फरमाइश है। महारासी उत्तम चमगाड़ी स्वराज स्वरीश पोपड़वाल संघर्षा संविधान बेमतरा सिंह सुरेश सारथी पूर्णिमा सारथी सारसे राजेंद्र सैनी राहुल सैनी गांधीबाग कवरोला सिंह रमेश कनरकर और विशाली कनरकर फतेहाबाद से बिट्टू गगन युवराज और युविक।

0: शास्त्रीय गीत के साथ आगे दीजिए सुमन को कार्यक्रम को यहीं समेटने की। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने को हम आप सुनेंगे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार, जिन्हें दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉ. एन. राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया।